सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमान

0: चिंता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

शिव भगवान सब जीवों को अपना मानते हैं क्योंकि सब उन्हीं के हैं, पर कठिनाई यह है कि हम कब उन्हें अपना मानेंगे। यदि हम उन्हें अपना मान लेंगे तो जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे।

यदि हम अपने इस जीवन को प्रभु भक्ति के लिए समर्पित कर दें और किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तो हम जीवन रूपी महाभारत के संग्राम में सुनिश्चित रूप से विजयी होंगे।

वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन ओम व्यास और हरिओम शरण की गाई भक्ति रचनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं समवेत स्वरों में ये तेज गान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है पर्युषण पर्व। आलेख और वाचन है नरेंद्र प्रकाश जैन का।
1: जैन समाज में पर्युषण सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और ये हर वर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमी से भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक 10 दिन तक मनाया जाता है। इस पर्व में लोग प्रायः 3 तरह के कार्य करते हैं। एक तो प्रातःकाल पूजा अर्चन करते हैं मंदिरों में, दूसरे प्रातःकाल मध्याह्न और सायंकाल शास्त्र सभाओं में नियमित बैठते हैं और तीसरे यथाशक्ति व्रत उपवास करते हैं। इन 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा वो अपने मालम मूल्यों का विकास करते हैं। पर्युषण पर्व व्यक्ति पूजा का पर्व नहीं है, गुण पूजा का पर्व है। इन 10 दिनों में वो किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं करते बल्कि अपने आत्मा में ही प्रच्छन्न गुणों को विकसित करने का अभ्यास करते हैं। ऐसे विकसित गुण महाभारत में भी और हमारे जैन पुराणों में भी 10 बताए गए हैं। प्रतिदिन एक एक गुण का विकास करते करते 10 गुणों के विकास से वो अपने आत्मा को इतना बलवान बना लेते हैं कि उनके जीवन में शांति का अनुभव उनको होने लगता है। न तो ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी पूजा का ये पर्व है और न किसी घटना विशेष से मनाए जाने वाले किसी उत्सव का ये कोई रूप है। ये तो आत्मा के जो सहज गुण हैं, सहनशीलता, कोमल व्यवहार, परिणामों की सरलता, निर्लोभता,

संयम, तप, त्याग और दान, इस तरह के गुणों को विकसित करने का अभ्यास दसों दिन तक वो लोग करते हैं। कहना चाहिए कि ये गुण पूजा का पर्व है, जीवन मूल्यों को विकसित करने का पर्व है। और मूल्य तीन तरह के हमारे यहाँ बताए गए हैं। एक तो होते हैं भौतिक मूल्य, एक होते हैं नैतिक मूल्य, एक होते हैं आध्यात्मिक मूल्य। भौतिक मूल्यों का संबंध केवल रोटी, कपड़ा और मकान से है। आदमी इतना कमा ले कि अपने जीवन की और शरीर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके, ये कार्य तो सभी करते हैं। पशु पक्षी भी भले ही धन से ये कार्य नहीं करते हों, लेकिन जीवन में शरीर को सुविधाएं देने वाली सारी सामग्री वो जीवन भर जुटाते रहते हैं, इनसे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास बहुत आवश्यक है, और इसके लिए इन दस दिनों में प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। एक मनीषी ने तो यहाँ तक कहा है कि जो मूल्य सहित जीवन है वो शिव के समान है, और जो मूल्य रहित जीवन है वो सबके समान है। मूल्य का अर्थ है जीवन को महत्वपूर्ण बनाना, और जीवन महत्वपूर्ण बनता है गुणों के विकास से, और गुणों का विकास धर्म से होता है। तो धर्म और गुणाराधन का ये पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ हर ऐसे स्थान पर मनाया जाता है जहाँ जैन धर्म के मानने वाले 10, 20, 25 से लेकर 50, 100 या 5000 घर भी रहते हैं। सभी जगह बाहर से विद्वानों को, संतों को बुलाकर उनके प्रवचन सुनना, सुबह पूजा आराधना करना, मंदिर में अधिक से अधिक समय बिताना, व्यापारादि कार्यों से थोड़ी विरति रखकर आत्म शांति की कोशिश करते रहना, ये सारा अभ्यास उनका होता है। गुण पूजा के संबंध में एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। हमारे यहाँ एक तैमूर लंग नाम का बादशाह हुआ, बड़ा क्रूर था, बड़ी जल्दी नाराज होता था, छोटी छोटी बातों पर लोगों को मृत्यु दंड देता था। एक बार दो गुलामों को मृत्यु दंड सुना दिया। वहीं नगर का एक कवि था, उससे पूछा इनका क्या मूल्य होगा, उसने कहा $25। बोले कि फिर मेरा क्या मूल्य होगा, बोला $1। तो नाराज हो गया, बोले $1 तो मेरे कपड़ों का मूल्य है। बोले कि साहब वही मूल्य बताया है, जो हिंसक होता है, दूसरों का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तो ऐसे जीवन को मूल्यवान बनाना यह पर्युषण पर्व का उद्देश्य है।

चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पर्युषण पर्व। इस विषय पर आलेख और वाचन था नरेंद्र प्रकाश जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री राम चरित मानस गान। स्वर है ए हरिहरन का और वाणी जयराम का, संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं डिगा सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है।

यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर थे ए हरिहरन और वाणी जयराम के, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। भूले बिसरे गीत सुनेगा सुबह 7 बजे से।

सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुनवाएंगे ब्रज वार्ता। ब्रज भाषा काव्य में नायिका भेद, वार्ताकार होंगे दाऊ दयाल गुप्ता। साथ ही आनंद लीजिएगा ब्रज लोक गीतों का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे कार्यक्रम कला में शायर, शायर होंगे डॉक्टर सईद अहमद सईद। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा जल और वायु प्रदूषण अधिनियम। आलेख और वाचन होगा डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का। सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे चंद गैर फिल्मी गजलें।

कलाकार होंगी मल्लिका पुखराज। फोन-इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन 11 बजे, मेरी पसंद 11:30 पर। मध्याह्न 12 बजे आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय होगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा।

दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम होगा ब्रज लोकगीत, कलाकार होंगे विजेंद्र गोला। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक दोपहर 1:15 पर। चर्चा के विषय होंगे विश्व समुद्री दिवस, दूसरा विषय होगा आहार में प्रोटीन को स्थान दें, साथ ही वार्ता सुनिएगा पहनावा, भारतीय महिला परिधान में साड़ी का महत्व, वार्ताकार होंगी पूजा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय 12:30 पर।

शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में बात होगी विश्व समुद्री दिवस पर और सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम इस विषय पर। मार्गदर्शन में भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। कानून के क्षेत्र में करियर विशेषज्ञ होंगे कपिल बंसल और इनसे भेंट करेंगे राजेश शर्मा।

ब्रज साहित्य कार्यक्रम शाम 6:15 पर। इसमें सुनिएगा देश हमारो, श्रद्धा और भक्ति को शक्ति स्थल, नगर कोट धाम देवी मंदिर। वाचन स्वर होगा रुद्र कृष्ण सिंह का। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:30 पर। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6:50 पर। शाम सुहानी आप सुन पाएंगे शाम 7:31 पर। रात 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा।

रात 10 बजे सुनिएगा रासलीला नित्य रास। लेखक होंगे रामनारायण अग्रवाल। प्रस्तुति होगी हरिबाबू कौशिक की। रात 10:30 पर उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे विदुषी परवीन सुल्ताना का ठुमरे गायन। साथ ही सुनेगा आरपी शास्त्री का वायलिन वादन और विदुषी राज लक्ष्मी आर आहूजा का गायन।

0: आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में पशुपालन के कार्य में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन मजदूरों द्वारा पशुपालन कर पूर्ण

0: किया जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण इनके द्वारा पाले गए पशु भी कुपोषण का शिकार होते हैं। पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध न होने के कारण इनका शारीरिक विकास मंद रहता है, इनकी प्रजनन क्षमता अधूरी रहती है, पशु देर से प्रजनन योग्य होता है, गर्मी के लक्षण भी प्रदर्शित नहीं होते, गर्भाधान के उपरांत पशु गर्भित नहीं होते हैं तथा ब्याने के बाद कम दूध उत्पादन होता है, काफ़ी समय तक गर्मी में नहीं आते और विभिन्न प्रजनन व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ये यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक यानी UMMB आखिर है क्या। यह यूरिया फीडिंग का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। इसके साथ ही इसमें भोजन के लिए अन्य आवश्यक तत्वों का मिश्रण भी इसे और उपयोगी बनाता है। यूरिया पशुओं के पेट में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, साथ ही इसमें मिनरल आदि भी पशु को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसकी फीडिंग से पशु स्वस्थ रहता है, दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पशुपालक कम संख्या में पशु पालते हैं तथा पशुओं में पोषण तत्वों की कमी होने पर UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक फीडिंग काफी लाभदायक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। यूरिया ब्रिक को पशु के बांधने के स्थान पर रख देते हैं तथा पशु को उसे चाटने देते हैं। इसकी फीडिंग से अनेक लाभ हैं। बछिया व पड़िया इसके प्रयोग से कम समय में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। गर्भित अवस्था में प्रसव के उपरांत इनके प्रयोग से दुग्ध उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है तथा पशु शीघ्र गर्मी में आता है। पशुओं को गर्मी में लाने में विशेष उपयोगी हैं। गर्मी में लाने के अन्य उपचारों के असर को भी यह बढ़ाता है। सामान्य उससे कम दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की खली की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम कर देता है तथा पशु प्रजनन संबंधी अन्य व्याधियों से भी पशु को मुक्त रखता है। अब बात आती है कि इसे बनाने की क्या विधि है। इसको बनाने की विधि अत्यंत सरल है। किसी बड़े उपकरण अथवा संयंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। पशुपालक एकल रूप से या समूह में सम्मिलित होकर इसको बना सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगार इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक की एक ब्रिक का आकार सामान्यतः एक ईंट के आकार का बनाया जाता है। इसके लिए ईंट बनाने के ढांचे में थोड़ा फेरबदल कर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका औसत वजन 3 किलोग्राम होता है। इसके लिए विभिन्न सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके निर्माण में जिन सामग्रियों को मिलाया जाता है वो इस प्रकार से है। मिनरल मिक्सचर लगभग 450 ग्राम, शीरा 900 ग्राम, नमक 200 ग्राम, यूरिया 300 ग्राम, सरसों या मूंगफली की खली 300 ग्राम, चावल की भूसी 300 ग्राम, आटा आप गेहूं का, मक्का का या बाजरे का कोई एक आटा ले सकते हैं 450 ग्राम, चूना 125 ग्राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। भारतेन रूस ईरानयोः विरुद्धं प्रतिबंध संबद्धाधिनियमस्य विषये स्वकीयाः हितचिन्ताः पुनः स्पष्टतया प्रतिपादिताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अधिवेशनावसरे ह्यः सायं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य विदेशमंत्रिणं मार्को रूबियो इत्येतं मिलितवान् तथा एतं अभिनियमं प्रति भारतस्य चिन्ताः तस्य समक्षं प्रस्तुतवान्। उभौ नेतारौ भारत संयुक्त राज्य अमेरिकया देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां, युक्रेनस्य च परिस्थितीनां विषये अपि चर्चां कृतवन्तौ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः गतसप्ताहे रूस ईरानयोः विरुद्धं प्रतिबन्ध सम्बद्धाधिनियमं विधिरूपेण प्रवर्तितवान्। अस्य अधिनियमस्य अन्तर्गतं रूसदेशात् तैलं वातेन्धनञ्च क्रयमाणेभ्यः देशेभ्यः अधिकतमं 100% पर्यन्तं शुल्कम् आरोपयितुं प्रावधानमस्ति। अस्य प्रत्युत्तरे नवदिल्ल्या उक्तं यत् भारतं स्वकीयानाम् आर्थिक

आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में, 12 o'clock फिल्म से। लिखा है साहिल लुधियानवी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं चोरी चोरी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: सीआईडी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज में। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद।

शकील बदायूनी का लिखा यह गीत अभी आप सुन रहे थे 20 साल बाद फिल्म से। स्वर और संगीत था हेमंत कुमार का। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी ये सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में कराएगा अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन। और प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, 27 सितंबर तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कल लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भी ये सेवा शुरू की गई है। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे भारत की टैक्सी है जो भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी।
5: जिन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था, टैक्सी ड्राइवर के बारे में, टू व्हीलर के बारे में, थ्री व्हीलर के बारे में, अब वह रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर वे भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और बदले में उनको सामाजिक सुरक्षा की कवरेज मिलेगी 5 लाख रुपए की।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल, सहकारिता विभाग के उर्वरक सेतु मोबाइल ऐप और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटा बेस सेंटर के मोबाइल ऐप UPCDC का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ग्रामीण बैंकों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सहकारिता मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 8 करोड़ रुपए

0: रुपए से ज्यादा की लागत से बने राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार साथ खड़ी है।
1: सरकार हर नारी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, हर युवा की अच्छी एजुकेशन के लिए और उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री कल ही गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ महाराज की 12वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही सड़क हादसे और कैंसर के कारण दिवंगत दो अलग अलग लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता का चेक भी प्रदान किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण में कल पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का आधार जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज, आरोपितों के बयान, बरामद रकम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बनाया गया है। आगामी दीपावली के अवसर पर अयोध्या धाम में दीपोत्सव के दौरान 26,50,101 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राम की पैड़ी, लक्ष्मण किला घाट, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल घाट पर सहित कुल 56 घाटों पर दीप प्रज्वलित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को कल समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि दीपोत्सव 2026 का आयोजन भव्य और अलौकिक ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दीप जलाने का काम 35,000 वॉलेंटियर्स द्वारा किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नमक, चीनी या वसा की अधिक मात्रा वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के लिए फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग को एक ही चरण में लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
2: उच्चतम न्यायालय में दायर एक हलफनामे में खाद्य नियामक ने ऐसे उत्पादों के सामने के हिस्से पर एक रेड हेक्सागन चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो है स्पष्ट रूप से बताएगा कि कौन सा पोषक तत्व निर्धारित सीमा से अधिक है। प्राधिकरण ने कहा है कि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले जनता और उद्योग जगत के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। नियामक का अनुमान है कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 4 महीनों के भीतर इन मसौदा नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। उन्होंने अभ्यर्थियों को अपने बायोमेट्रिक डेटा और आधार कार्ड को अपडेट कराने की सलाह दी है। प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने कल लखनऊ स्थित राज्य लोड डिस्पैच सेंटर SLDC का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के आवश्यक आधुनिकीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने SLDC के कामकाज, वास्तविक समय ग्रिड निगरानी, SCADA प्रणाली और लोड प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि आने वाला महीना गर्मी और बढ़ती मांग के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऐसे में लोड वितरण अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि कहीं भी अनावश्यक ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग न हो, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है अटल इनोवेशन मिशन को लेकर एक खास रिपोर्ट।
3: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया

0: गया था देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
1: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
0: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लखनऊ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के साथ ही एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गोरखपुर और जौनपुर सहित कई पूर्वी जिलों में कल शाम से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश में आज से लेकर 27 सितंबर के बीच तेज झोंकेदार सतही हवाएं चलने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी ये सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में कराएगा अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन। और प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, 27 सितंबर तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: यह कार्यक्रम में आज आपको सुनाए रहे हैं ब्रजवार्ता, ब्रज भाषा काव्य में नाई का भेद। वार्ताकार हैं दाऊदयाल गुप्ता।
1: ब्रज भाषा को सबरी भाषान को सिरमौर बनाएवे को श्रेय बाके सगरे भक्त और रीत कवीन को है, जिनने समय समय पे साहित्य रचके अतकी लोभावनी, जग भावनी, सुचिता और सरस भावनते भरी कविता करी। या में कछु संसो नाय के भक्त कवीन ने भक्ति पंथ की मर्यादा को धार कविता करी हती, तऊ बिन की भक्ति और श्रृंगार में कछु भेद नाय दीस परे। बिन ने आपनी कविता माए प्रेम की प्रधानता को परचो दियोय, जाको पतो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास जू के या कथनते चले, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आह सो सब गिरधर देव को निधरक वर्णो ताह। या तरिया इन भक्त कवीन के हृदय माह रूप प्रेम और आनंद की सरस भाव लहरी नाचवे लगी। जब इन भाव लहरीन मिस रीत कवीन ने अनेकन रूप मछरीन को जिनमें राधा प्रधान बनी दरस पायो, तो बिनने बिनकू औरव अनेक प्रकार ते सजाए संवार के बिनको अत को प्रचार और प्रसार करयो। इन कवीन ने संस्कृतन के आचार्यन की तरिया इन रूप मछरीन को नायका नाम दियो। बिनने संस्कृत के नाट्य साहित्य को गुण के और आपने अनुभव को पुट दे के नायका भेद के सैकड़न ग्रंथन की रचना करिए। बिनने नायका नाम बारमणी को धर्यो, जाके दरस मात्र ते देखवे बारे के चित्त माह सिंघार रस हिलोरे लेवे लगे। महाकवि मतिराम ने ऐसी नायिका को कैसो सांचो चित्तर उतारे हो, कुंदन को रंग फीको लगे झलके ऐसी अंगन चारु गोराई, आखिन में अलसान चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई, कोबिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हुए नैनन त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। नायिका की गुराई के आगे तो सोने जैसो रंग मठो पर जाए, आखन में आलस और दीठन में विलासन की छवि रस घोर घोर जाए। भला ऐसा कौन होएगो जो वा नायिका की मुस्कान रूपी मिठाई पे बिनमोल नाह बिक जाए। बाकी सुंदरता जेती नजीक हुए के निहारी जाए तेती बढ़ती दीस परे, दीखवे में तो सबई नायिका सुंदर दीस परे, पे बिनको आचार्य ने कछु भेद बतायो है। धर्म के आधार पे बिनके सुकिया परकिया और सामान्य भेद होए। सुकिया नायिका के विषय में ग्वाल कवि के या नीके कथन को सुनो, प्रात ही प्रीतम के पग छुए कर सास जिठानिन के परे पायन, छाहो न छुआवत है गुरु लोगन देखियो न आनन जाको लुगायन, त्यों कवि ग्वाल करे गृह कारज साजी रहे निज सील के भायन, है कुल रीत की सरसायन पीहर सासुर की सुखदायन।
2: वाह वाह,
1: है न सुशीला और लज्जावती नायिका को चित्तर जो गृहस्थ के काजन में चित्त लगामती भई, कुल रीत को पालन करे जाते पीहर और ससुराल दोनों पक्षन के लोग बाके गुणन को सराहना करें। सुकिया नायिका की महत्ता और गौरव सवन को मान्य होए, ऐसी पावन नायिका अपने सुख को भूल के आपने पति की सेवा करे, जो पति में कछु दोषव देखे तो बिन को छिपाएवे के काजे कछु कोर कसर ना उठाए रखे। आओ या दोहा मिस कविवर बिहारी की सुकिया नायकाते आपको परचो करा में, गुर्जन दूजे ब्याह को प्रतिदिन कहत रिसाय, पति की पति राखे बहु आपुन बांझ कहाय, ऐसो पतिव्रत धर्म निवाहे वो बहुत ही टेढ़ी खीर हो, वो बूढ़े और नपुंसक पति के दोषन को छिपामती भई नायका दूजे ब्याह के काजे अरुच दिखावे और निज को बांझ बतावे, ऐसी सुकिया।

0: नायिका के ब्रजभाषा कवीन ने आयु क्रम के अनुसार औरव तीन भेद मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा बताए। आचार्यन के मत ते जानारी के तन में नयो नयो यौवन आवे बा किशोरी को मुग्धा कहो जाए। ब्रजभाषा काव्य में मुग्धा नायिका को बखान बखानते भये ब्रजभाषा कवीन ने बाके बालकाल की विदाई और यौवन के आगमन को अत को लुभावनो वर्णन कियो है। धरकत चंद मुख मंद मुस्कान सुधा बाढ़ी रस आनंद की चोप चखियान में तंग हो तो आगी जो जो उरज उतंग हो तो प्रगटी अनंग काया कंज पखियान में अंग अंग फैलत तरंग नव जोवन की छकी सी निहारत नवेली सखियान में कट कृतताई और नितंब पीनताई छाई पाय थिरताई चंचलाई अखियान में।
1: वाह जी वाह।
0: इतकु तो ब्रजभाषा कवीन ने नायिका के एक एक अंग को अत को सुंदर और सहज वर्णन कियो है। बितकु बिन के भेदन को विस्तार करवे में हूं वे थोड़े ना चूके। बिन ने ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना, नबूढ़ा, विश्रब्ध आद अनेक भेद बताए जिनके नाम ते ही बिन के कामन को पतो चल जाए। बिन ने पर पुरुष ते प्रीत राखवे वारी नारी को परकिया नाम दियो। सुनवे में तो यह नाम ते कछु अनक सी लगे, पे गोपीन को कन्हैया के काजे प्रेम बिन के परकिया प्रेम को उदाहरण तो है। या परकिया को कथन महात्मा सूरदास के सुख में या तरिया हुए ब्याहो लाख धरो दस कुबरी अंतउ कान हमारो। ऐसे पावन भावन को धार के जो जो आचरण करें बातें बिन पे तनिको दोषारोपण ना करो जा सके। सांची बात तो जी है कि ऐसी नायिका लोक लज्जा और कुल कान की सीमा उलांघ के प्रेम पंथ पे इतेक आगे बढ़ जाए के भांते लौट वो फिर संभव ना है। तभी तो ठाकुर कवि की नायिका डंका बजाय बजाय के आपने प्रेम को प्रकटामती भई सगरे संसार को चुनौती दे रही है।
1: कैसे दे रही है?
0: कि हम एक कोराह चली तो चली हटको इन्हें ए न कोराह चले। यह तो बले आप न सूझती हैं प्रण पालिए सोई जो पाले पले। कवि ठाकुर प्रीत करी है गोपाल सो तेरे कहो सुनो ऊंचे गले। हमें नीकी लगी सो करी हमने तुम्हें नीकी लगो न लगो तो भले।
1: वाह खूब गई है।
0: परकिया नायिका के अनूढ़ा और ऊढ़ा भेदों ब्रजभाषा काव्य में मिले। अनव्याही नारी का पुरुष ते प्रीत करे तो वो अनूढ़ा कहावे। पे व्याही नारी अपने पति ते परे का और पुरुष ते प्रीत करे बाकू ऊढ़ा कहो जाए। ऊढ़ा के विषय में कविवर रहीम को रचो या बरवे सुनो। निस्दिन सास न नदिया मुह घर घेर सुनन न देत मुरलिया ना धुन टेर। यो तो ब्रजभाषा काव्य में परकिया नायिका के औरव अनेकन भेद किए जिनको वर्णन करवो या बिरिया संभव नाए। अचरज तो जिये के जितनो वर्णन बिन्ने सुकिया और परकिया नायिका को विस्तार दे के कियो बितनो सामान्या को नाए कियो। काऊ काऊ कवि ने तो सामान्या को नाम ही गिनाए दियो। जा नायिका को काम धन के लोभ ते प्रीत करवो हो बाकी प्रीत भला सांची कैसे कही जा सके।
1: ठीक बात।
0: हाँ ब्रजभाषा कवीन ने संस्कृत आचार्यन की तरिया नायकान के दशानुसार तीन भेद अन्य संभोग दुखिता, गर्विता और मानवती किए जिनको परचो इनके नाम ही ते ही है जाए। कवि रसलीन के या कथन को सुनो जा में ब्रजवान किशोरी आपने पिए ते मान किए बैठी है।
1: अच्छा।
0: लोचन लहे को फल सफल हमारो कर एरी प्राणपति को स्नेह रसलीन कर तेई पाई परम निकाई की अवध ब्रशभान की किशोरी तू तो एती अरवीन कर।
1: हाँ जी।
0: हा तू उघार मुख तार पट घूंघट को निज तन पाने पुमे पी को मन मीन कर कंज छव छीन कर शशि को मलीन कर सौतिन को दीन कर प्यारे को अधीन कर।
1: वाह।
0: मानवती नायिका को बाकी सखीन को यात्रियां बोधवो बहुत ही नीको और साँचो है।

0: मान कर बीते भला कहा मिलेगो, या ते लज्जा छोड़ के घूंघट को टार के आपने पी के मन को जीतवे को उपाय करना चाहिए। ब्रजभाषा कवीन ने नारीन के गुणन को जांच के बिनकी उत्तमा मध्यमा और अधमा नाम ते तीन कोटि बताई है। जो आपने पति को अपराध जान के हूं बा के प्रति हित करे बाकु उत्तमा, पति के हित करवे पे हित और अहित करवे पे अहित करे बाकु मध्यमा, और पति के हित करवे पे उ सदा अनहित करे बा नायका को अधमा कहो जाए। कवि देव की वाणी में उत्तमा नायका की वाणी सुनो।
1: सुनाओ।
0: केसर सो उबटो सब अंग बड़े मुक्तान सो मांग संभारी, चार सो चंपक हार हिये और ओछे ओरोजन की छवि न्यारी, हाथ सो हाथ गहे कवि देव सो साथ तिहारे नाथ निहारी, हा हा हमारी सो सांची कहो वे कौन ती छोहर छी हर बारी। ब्रजभाषा कवीन ने अवस्थानुसार नायकान के 10 भेद औरव करे। ये स्वाधीन पतिका, बासक सज्जा, उत्कंठता, अभिसारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रवत्स प्रियसी, प्रोषित पतिका और आगम पतिका नामंते जानी जाए। बुद्ध जनन ने बतायो है कि सांची प्रीत की परीक्षा तो नायक नायिका के वियोग के समय हो।
1: और का?
0: नायिका पति के प्रेम को याद कर कर के विवल हो जाए, केल कुंजन को देख के तो शीश धुनियो ही बापे बने। आओ ऐसी प्रोषित पतिका नायिका के प्रेम को सांचो चित्र देखें, जाकू मुसलमान कवि आलम ने रचपच के तैयार कियो है।
1: कैसे कियो है?
0: जाथल कीने बेहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करे, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे, आलम जौन से कुंजन में करी केल तहां अवशीष धुन्यो करे, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अव कान कहानी सुन्यो करे।
1: वाह वाह वाह।
0: नायक के सांचे प्रेम में पगी बातें प्रतिपल मिलवे कु आतुर, बिरहिन नायिका के दुखन को कछु पार नाए, पे बाकी प्रीत कबहू तो रंग लावेगी, कबहू तो बाके पी लौट के बाकी सुध लेंगे, लियो इतकू तो बाके कानन में पी के आयवे को संदेशो सुनाई पर्यो, बितकू बाको हियो हरसते हुलसवे लगो, आंगन बैठी सुन्यो पिए आवन, चित्त झकोरन में लरक्यो परे, देव जु घूंघट के पटहू में समात न फूलो हियो भर क्यों परे, नैनन ते सुख के असुआ मनो भौर सरोजन ते सर क्यों परे, मंद हसे दुत दंत लसे मुख सुंदर दाड़िम सो दर क्यों परे। पी के आयवे पे तन और मन पे पड़े प्रभाव को एक ही साथ देखवो और देख के श्रोतान को दर्शाए वो को हांसी ठट्टा नाए। इन ग्रंथन में ब्रजभाषा कवीन ने अपनी समूची प्रतिभा, बेजोड़ कल्पना शक्ति, सुहृदता, सूक्ष्मदर्शिता बरती है, ताते या प्रसंग को पढ़ के अथवा सुन के सदाई असीम सुख की प्राप्ति होए। जा साहित्य की रचना को जन्म ब्रजभाषा में सूरदास और नंददास जैसे बेजोड़ कवीन के हाथन भयो होए, और जाके विकास में कहा हिंदू कहा मुसलमान सगरे ब्रजभाषा कवीन ने योग दियो होए, बामे भला कौन काव्य रसिक को हृदय नाय रमेगो। जो को रसिक ब्रजभाषा काव्य को अनूठो रसपान करवो चाहे तो बाकू नायिका भेद संबंधी अनेक ग्रंथन को आश्रय लेनो ही पड़ेगो। इतकु तो अनोखे रस को पान करवो और बितकु इन ग्रंथन में भांत भांत की नारीन की प्रकृति को पतो चलवो, जाते ग्रस्त जीवन के समय समय पे हैवेवारी कटुता को मिटवो संभव है जाए। या तरिया हमारी जान में तो नायिका भेद को पढ़वैया हो या सुनवैया, बाकी दोनों हाथन लड्डू ही लड्डू है।
2: ब्रजवार्ता के अंतर्गत अभी आपने सुनो ब्रज भाषा काव्य में नायिका भेद। वार्ताकार थे दाऊ दयाल गुप्ता। और आओ अब आपको सुनवा में लोकगीत। पहलू लोकगीत गाए रही हैं आशु रावत।

0: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशू में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन

0: मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
1: हमारे गाँव में पहले पानी की बहुत शादी होती थी, जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं।
0: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
2: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया, जब भी बारिश होती है के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
0: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
4: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
5: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि

0: ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी 7ों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P Fitch AD

0: बी और ओईसीडी ने भारत की 2026-27 की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है, बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks including regional rural banks to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. A report.
3: The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants traveling across multiple states, districts and villages. During the journey, the Seva Yatris have engaged with local communities and participated in service-oriented activities. These include cleanliness drives and interactions with beneficiaries and residents, as well as activities at schools, hospitals, nursing homes and other communities. Locations. The journey is scheduled to continue until October 7. Harshita Ojha, Akashwani News, Delhi.
2: The Delhi Cabinet has approved the Durga e-auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. More details in this report.
4: This scheme was approved in the

0: Renu Kataria.
1: Thank you, Sarabjit. The Asian Age leads with PM Chair's key government meet discusses 2047 roadmap reforms. Taking note of the late arrival and an early end, monsoon departs from Delhi in earliest withdrawal in 24 years, notes the Hindustan Times. The Hindu mentions India-EU to sign trade deal on December 16. The Asian Age reports Xi to kick off US visit with rare plainside welcome from Trump. The Financial Express takes note S&P, Fitch, ADB, OECD upbeat on FY27 growth. India growth outlook gets global upgrade. And finally, words long used in Caribbean, Bermuda now part of Oxford Dictionary, says the Times of India. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshabina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है, श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 24 सितंबर 2026 को मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारा टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप कमर एवं रीढ़ की हड्डी की समस्या जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे के जोड़ में नस का दबा होना, साइटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द आदि से ग्रस्त हैं तो समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज गुरुवार 24 सितंबर, समय होगा मध्याह्न 12 बजे का। सूचना समाप्त हुई।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

इंदिवर के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी उषा खन्ना ने, आवाज थी आशा भोसले और साथियों की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में, फिल्म का नाम है एयर लिफ्ट।

0: कुमार के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी अमाल मलिक ने। आवाजें थी अरिजीत सिंह, अमाल मलिक और तुलसी कुमार की। फिल्म का नाम था एयरलिफ्ट। गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जीत फिल्म से, गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

समीर के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी नदीम शवर ने, आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की, फिल्म का नाम था जीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर को। फिल्म का नाम था दम लगा के हैशा। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला में शायर। शायर हैं डॉक्टर सईद अहमद सईद।
1: अजीजम सामईन हजरात, कला में शायर में मैं डॉक्टर सईद अहमद सईद हाजिर हूँ। जैसा कि आज सारी दुनिया में जंगो जदाल दिखाई दे रहा है, हर तरफ परेशानी दिखाई दे रही है, इस जंग जदाल से मुतासिर होकर नज़्म जंग है नफ़रत जंग बला है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाइए। अर्ज किया है, जंग है नफ़रत जंग बला है, जंग है नफ़रत जंग बला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जंग है नफ़रत जंग बला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अमन मोहब्बत और वफा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जंग है नफ़रत जंग बला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अमन मोहब्बत अमन वफा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हीरो सीमा नागासाकी से आती हैं आवाज़ें, हीरो सीमा नागासाकी से आती हैं आवाज़ें, जंग तबाही और कज़ा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हिरोशिमा नागासाकी से आती हैं आवाज़ें, जंग तबाही और कज़ा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अमन से आती है खुशहाली, अमन मसाइल का हल है, तमाम दुनिया की समस्याओं का समाधान जंग नहीं, जंग नहीं हो सकता। अर्ज किया है कि अमन से आती है खुशहाली, अमन मसाइल का हल है, जंग तो खुद ही एक मसला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अमन से आती है खुशहाली, खुशहाली अमन से आती है खुशहाली, अमन मसाइल का हल है, जंग तो खुद ही एक मसला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और किताबों में ये हमने कहीं पढ़ा है कि इस दुनिया में इतना हथियार एटॉमिक जमा है कि इस दुनिया को आग का गोला बनाया जा सकता है। आज वही देखने को मिल रहा है। अर्ज करता हूं कि आग का गोला बन सकती है ये सारी दुनिया लोगों, आग का गोला बन सकती है ये सारी दुनिया लोगों, दुनिया में इतना असला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। आग का गोला, आग का गोला बन सकती है ये सारी दुनिया लोगों, दुनिया में इतना असला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। आज के इन खूनी दंगों और अगली पिछली जंगों में, आज के इन खूनी दंगों और अगली पिछली जंगों में, खून बहेगा खून बहा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। आज के इन खूनी दंगों और अगली पिछली जंगों में, खून बहेगा खून बहा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच।

सुनाइए। अर्ज करता हूं कि ताकत पे इतराने वाला ये कानून जमाने का, ताकत पे इतराने वाला ये कानून जमाने का, अंधा गूंगा और बहरा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। ताकत पे इतराने वाला ये कानून जमाने का, अंधा गूंगा और बहरा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अर्थ किया है कि हम तुमको भड़काने वाले चंद सियासी जहनों से, तवज्जो चाहूंगा सामईन हजरत गौर फरमाएं, कि हम तुमको भड़काने वाले चंद सियासी जहनों से, हम तुम दोनों को खतरा है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। इस गजल का आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि इन आतंकी तूफानों से अमने आलम का परचम नहीं झुकेगा, नहीं झुका है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जंग नहीं है, जंग नहीं है, जंग नहीं है हल मसलों का, मैं भी सोचूं तू भी सोच। सामईन हजरात, आज हर इंसान सारी दुनिया में मायूस परेशान, जंगो जदाल की जो नौबत है इससे दिल मुस्तरिब है, परेशान है। शायर भी पुरसुकून नहीं रह सकता, शायर के दिल से तासुरात निकलते हैं। अर्ज किया है कि मायूस न हो दिल ऐशे जहां आलाम में ढलते रहते हैं, मायूस न हो दिल ऐशे जहां आलाम में ढलते रहते हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया के हालात बदलते रहते हैं। मायूस न हो, मायूस न हो दिल ऐशे जहां आलाम में ढलते रहते हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया के हालात बदलते रहते हैं। बदमुलाजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि गुलशन पे शबाब आता है मगर, गुलशन पे शबाब आता है मगर लुट जाता है ये कज़ाकों से, गुलशन पे शबाब आता है मगर लुट जाता है ये कज़ाकों से। कज़ाक बमानी लुटेरे जो तहजीब और तमद्दुन सारी दुनिया के अमन को भी डाका मारते हैं, वो कज़ाक लुटेरे, कज़ाक माने लुटेरे। अर्ज किया है कि गुलशन पे शबाब आता है मगर लुट जाता है ये कज़ाकों से, कांटे भी निकलते हैं हमदम कलियों के तले कुछ शाखों से, गुलशन पे शबाब आता है मगर लुट जाता है ये कज़ाकों से, कांटे भी निकलते हैं हमदम कलियों के तले कुछ शाखों से, और गुलबादे खिजां के कदमों से, गुलबादे खिजां के कदमों से गुलशन में कुचलते रहते हैं, गुलबादे खिजां के कदमों से गुलशन में कुचलते रहते हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया के हालात बदलते रहते हैं। अर्ज किया है शहनाई बजी थी कल जिस जा, शहनाई बजी बजी थी कल जिस जा, अब आज उसी जा मातम है, शहनाई बजी थी कल जिस जा, अब आज उसी जा मातम है, कल गुलशन में गुल हंसते थे और आज ये गिरिया शबनम है। शहनाई बजी थी कल जिस जा, अब आज उसी जा मातम है, कल गुलशन में गुल हंसते थे और आज ये गिरियां शबनम है, फिर उनकी शिकायत क्या जब खुद, फिर उनकी शिकायत क्या जब खुद दिन रात बदलते रहते हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, मायूस न हो दिल ऐशे जहां आलाम में ढलते रहते हैं। और इस नज़्म का आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइए।

है तवज्जो का तालिब हूँ। हम दर्द जो कल तक थे मेरे, वो आज बदल बैठे हैं नजर। हम दर्द जो कल तक थे मेरे, वो आज बदल बैठे हैं नजर। इस दौर की फितरत का आलम, पल भर में इधर पल भर में उधर। हम दर्द जो कल तक थे मेरे, वो आज बदल बैठे हैं नजर। इस दौर की फितरत का आलम, पल भर में इधर पल भर में उधर। इंसान ही इंसानों से अब चाल ये चलते रहते हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया के हालात बदलते रहते हैं। मायूस न हो दिल, ऐशे जहां आलाम में ढलते रहते हैं। इस एक नज्म और इस गज़ल के बाद चंद मिसरे और अर्ज करता हूँ कतात की शक्ल में, तवज्जो का तालिब हूँ। अर्ज किया है कि बहुत ही बेमुरव्वत और बड़े ना आशना निकले। दूसरा रंग है ये मेरी शायरी का। बहुत ही बेमुरव्वत और बड़े ना आशना निकले। वफा की तुमसे थी उम्मीद, लेकिन बेवफा निकले। बहुत ही बेमुरव्वत और बड़े ना आशना निकले। वफा की तुमसे थी उम्मीद, लेकिन बेवफा निकले। जुबां मेरी न खुलवाओ, मुझे खामोश रहने दो। जुबां मेरी न खुलवाओ, मुझे खामोश रहने दो। जुबां मेरी न खुलवाओ, मुझे खामोश रहने दो। खुदा जाने मैं क्या कह दूँ, जुबां से मेरी क्या निकले। खुदा जाने मैं क्या कह दूँ, जुबां से मेरी क्या निकले। बहुत ही बेमुरव्वत और बड़े ना आशना निकले। वफा की तुमसे थी उम्मीद, लेकिन बेवफा निकले। जुबां मेरी ना खुलवाओ, मुझे खामोश रहने दो। मुझे खामोश रहने दो। खुदा जाने मैं क्या कह दूँ, जुबां से मेरी क्या निकले। हजरात, इस एक नज़्म एक गज़ल और कते के बाद चंद मिसरे और हाजिर खिदमतें, तवज्जो का तालिब हूँ। अर्ज करता हूँ, हर नफस आप ही से डरता है। हर नफस आप ही से डरता है, आग की रोशनी से डरता है। हर नफस आप ही से डरता है, आग की रोशनी से डरता है। डूब मरने की बात है लोगों, आदमी आदमी से डरता है। आदमी आदमी से डरता है, हर नफस आप ही से डरता है, आग की रोशनी से डरता है। डूब मरने की बात है लोगों, आदमी आदमी से डरता है। इसी ख्याल को इस तरह पेश किया है कि अब न शहता से ना हैवान से डर लगता है। अब न शैतान से ना हैवान से डर लगता है, अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। अब न शैतान से ना हैवान से डर लगता है, अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। और मैंने लोगों से कहा अपना गरीबा देखो, मैंने लोगों से कहा अपना गरीबा देखो, डर के बोले कि गरीबान से डर लगता है। अब न शैतान से न हैवान से डर लगता है, अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। और आखिरी कथा चाल लेने हाजिर खिदमतें, समाप्त फरमाए कि जिंदगी ऐसी बना तू ए गुलामे जिंदगी। जिंदगी ऐसी बना तू ए गुलामे जिंदगी, और तू मिटे तो मिट ना पाए तेरा नामे जिंदगी। जिंदगी ऐसी बना तू ए गुलामे जिंदगी, तू मिटे तो मिट ना पाए तेरा नामे जिंदगी। जिंदगी एक रोज
बंस।

0: सकती है तेरी जाविदा, जिंदगी एक रोज बन सकती है तेरी जाविदा, माइले जद्दोजहद कर हो मकामे जिंदगी, और जिंदगी ऐसी बना तू ए गुलामे जिंदगी, तू मिटे तू मिट ना पाए तेरे नामे जिंदगी। शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कलामे शायर। शायर थे डॉक्टर सईद अहमद सईद।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्र का।
1: गत माह 31 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जिला पंचायत भवन सभागार प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत सप्ताह समापन समारोह 2026 संपन्न हुआ। समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, संस्कृत के विद्वानों, शिक्षकों तथा संस्कृत प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि संस्कृत के ज्ञान से हमें अपने देश के समृद्ध विरासत सहज ही प्राप्त हो जाती है। आज विश्व के अनेक प्रख्यात विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अध्ययन एवं शोध का कार्य हो रहा है। ऐसे में भारत में भी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रसार के लिए विशिष्ट प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसी माह 2 सितंबर को नगर निगम सभागार में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महापौर उमेश चंद्र, गणेश केसरवानी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और आउटसोर्स कर्मचारियों को किट व स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर महापौर उमेश चंद्र, गणेश केसरवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए उनके दैनिक जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही उनके लिए कई सामाजिक सुरक्षाओं की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का नगर निगम सभागार में सजीव प्रसारण किया गया, जिसे वहां उपस्थित लोगों के द्वारा देखा व सुना गया। उत्तर प्रदेश ने आलू के गिरते भाव और बढ़ती लागत के बीच किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राहत योजना लागू की है। इसके तहत किसानों को उनके भंडारित आलू पर प्रति क्विंटल 100 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम के मुताबिक इस योजना के तहत किसानों को उनके कोल्ड स्टोर में भंडारित आलू के भंडारण शुल्क पर प्रति क्विंटल 100 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल आलू यानी 400 पैकेट इस पर अनुदान का लाभ उठा सकता है, जिससे उसे सीधे तौर पर अधिकतम 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के किसानों की ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 UPITS 2026 के अंतर्गत प्रयागराज मंडल में मंडल स्तर

0: क्रेडिट कैंप ऋण मेला का आयोजन सितंबर के प्रथम सप्ताह सरस सभागार विकास भवन प्रयागराज में किया गया। अभियान के अंतर्गत मंडल के प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर जनपदों में बैंकों द्वारा कुल 281 करोड़ के कृषि ऋण एवं 295 करोड़ के MSME ऋण अर्थात कुल 576 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से ऋण वितरित स्वीकृत के चेक के साथ साथ टूल किट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जिला विकास अधिकारी GP कुशवाहा, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मवीर रघुवंशी, संयुक्त आयुक्त उद्योग अजय चौरसिया प्रयागराज मंडल, DDM नाबार्ड शोभना सिंह, उपायुक्त NRLM समा सिंह, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी सहित चारों जनपदों के अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि, MSME एवं स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देना, पात्र लाभार्थियों को बैंकिंग ऋण सुविधाओं से जोड़ना तथा वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना रहा। अभियान के माध्यम से मंडल में 576 करोड़ का ऋण वितरण कर कृषि एवं उद्यमिता गतिविधियों को गति प्रदान करने के साथ साथ रोजगार एवं आजीविका सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। प्रयागराज के मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश M की अध्यक्षता में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या के साथ स्मार्ट सिटी मिशन, कुंभ मेला एवं प्राधिकरण की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई तथा महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी मिशन एवं कुंभ मेला के अंतर्गत हेल्थ क्लब एवं कल्चरल कॉम्प्लेक्स के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने गुणवत्ता एवं पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
2: संत कबीर नगर में सेवा संकल्प अभियान के तहत थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना समाधान दिवस में जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से कोतवाली खलीलाबाद में फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। DM ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार अधिकारी मौके का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों का आपसी समन्वय से निस्तारण करने पर जोर दिया। इस दौरान शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निस्तारित मामलों का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर SDM हृदयराम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संत कबीर नगर में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने विधायक धनगटागढ़ चंद चौहान के साथ मतराहा, बहरा डांडी और ढोल बजा तटबंध का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तटबंधों की लगातार निगरानी और बारिश से हुए रेनकट्स को तत्काल भरने के निर्देश दिए। सीयर कला में कटान से विद्युत पोल गिरने की आशंका पर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने को कहा। बाढ़ प्रभावित गांवों में चिकित्सा शिविर लगाने, आवश्यक छिड़काव और पशुओं का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। ढोलबजा में आवागमन के लिए 2 के स्थान पर 4 नावें लगाने को कहा। अधिकारियों को आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम के लिए किसानों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के तहत 50 किसान और 10 अधिकारी कर्मचारी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। किसानों को श्री अन्य फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी तकनीक जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को जिले के अन्य किसानों के साथ साझा करें और श्री अन्न उत्पादन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार मौजूद रहे। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक, पाकशाला, अस्पताल, महिला बैरक, कार्यालय और परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई व्यवस्था भी परखी। DMSP ने जेल कर्मियों को निर्देश दिया कि कारागार में किसी भी प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न होने पाए और सभी कार्य नियमानुसार किए जाएं। परिसर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संत कबीर नगर जिले की महुली पुलिस ने प्रगति फिनसर्व कंपनी के करीब 90 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में 4 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर धनराशि की हेरा फेरी की गई। संत कबीर नगर में महिला

0: छात्राओं की सुरक्षा को लेकर संत कबीर नगर पुलिस ने 2 दिवसीय ऑपरेशन मजनू अभियान चलाया। स्कूल कॉलेजों शिक्षण संस्थानों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चेकिंग की गई। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान 226 मंचलों से माफीनामा भरवाया गया, 123 वाहनों का चालान कर 1,25,000 रुपये सम्मन शुल्क वसूला गया, जबकि 5 दोपहिया वाहन सीज किए गए। 7 लोगों का VNS की धाराओं में चालान हुआ, एक के खिलाफ धारा 296 VNS में मुकदमा दर्ज और 12 लोगों का धारा 355 VNS में चालान किया गया। पुलिस ने अभिभावकों को नाबालिगों को वाहन न देने की अपील भी की। संत कबीर नगर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने पुलिस कार्यालय में IGRS, CCTNS और CM डैशबोर्ड पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्त पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जुलाई 2026 में IGRS पोर्टल पर शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में संत कबीर नगर ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं CM डैशबोर्ड में जिले को प्रदेश में 5वां स्थान मिला। CCTNS के कार्यों में जनपद ने प्रदेश, जोन और रेंज स्तर पर प्रथम रैंक हासिल की। SP ने सम्मानित कर्मियों की मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना करते हुए तकनीकी आधारित समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। 747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आइए सुनते हैं,
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा, जिसमें आज का विषय है जल और वायु प्रदूषण अधिनियम। आलेख और वाचन है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का।

भारतीय दर्शन के अनुसार जल व वायु हमारे पंचभूतों पृथ्वी जल आग आकाश एवं वायु के अभिन्न एवं अति महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वास्तव में जल व वायु के बिना जीवन का अस्तित्व असंभव है। जल की अधिकता एवं सहजता से प्राप्ति के कारण हम सोचते हैं कि जल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और हम उसके प्रति और उसके खर्च के प्रति लापरवाह होते चले गए, लेकिन हमारी ये धारणा नितांत गलत है। पीने योग्य पानी के स्रोत एवं उसकी मात्रा पूर्व निर्धारित है। विभिन्न सभ्यताओं ने जल के प्रति बहुत ही आदर एवं सम्मान का दृष्टिकोण अपनाया है। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ एवं पवित्र कार्य में जल से ही आचमन किया जाता है। मुस्लिम समाज काबे के जल को अति पवित्र एवं रोगनाशक मानता है। ईसाई धर्म में जल से ही ईसाई बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जल विभिन्न स्रोतों तथा भूमिगत झील नदी वायुमंडलीय जल आदि से मानव समुदाय के लिए सुलभ हो पाता है। औद्योगिकरण नगरीकरण एवं मानव जनसंख्या के कारण जल की मांग में भारी वृद्धि होती गई। जल के प्रति मानव के लापरवाह एवं संवेदनशील व्यवहार के कारण जल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। हालांकि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, परंतु जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषणों का जल में आवश्यकता से अधिक जमा हो जाता है तो जल की सहन शक्ति एवं स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है एवं जल प्रदूषित हो जाता है, जो एक बहुत खतरनाक स्थिति हमारे सामने है। जल के प्रदूषण का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। भारत में जल प्रदूषण के निवारण हेतु जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया गया एवं समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का प्रमुख उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना है। इसके अलावा जल की स्वास्थ्य प्रदता बनाए रखना एवं पूर्वावस्था में लाना भी इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य है। इन प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना की गई है एवं इन निवारक संस्थाओं को इस हेतु समुचित शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इस अधिनियम में औद्योगिक बहिस्त्रावों के जल में विसर्जन पर कड़ी निगरानी, जल स्रोतों में हो रहे प्रदूषण का सर्वेक्षण, प्रदूषित जल के उपचार हेतु विधियों का विकास, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अनुसंधान एवं प्रदूषण के बारे में जन चेतना के विकास से संबंधित

0: विस्तृत प्रावधान किए गए। अब हम बात करें वायु प्रदूषण की एवं इसके नियंत्रण की। वास्तव में वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। यह विभिन्न गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इनके अलावा भी बहुत सी गैसें वायुमंडल में सम्मिलित हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य खाना व जल के बिना कुछ समय तक जी सकता है, लेकिन वायु के बिना शायद कुछ मिनट भी उसका जीवन संभव नहीं है। प्राकृतिक स्रोतों से भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जैसे ज्वालामुखी, मानव व पौधों का उत्सर्जन आदि, लेकिन प्रकृति इस प्रदूषण को आत्मसात कर लेती है। लेकिन औद्योगिक वाहन व अन्य लापरवाही एवं बिना सोचे समझे वाले विकास के कारण विकिरण आदि के प्रदूषण को प्रकृति आत्मसात नहीं कर पाती है एवं उसके दुष्परिणाम मानव स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक साबित होते हैं। प्रदूषण के खतरों से जनमानस को सचेत करना भी इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य है। यद्यपि जल एवं वायु से संबंधित इन अधिनियमों ने अपना असर दिखाया, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियों का आभास हमारी संसद को हुआ। उनके निराकरण हेतु भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। पर्यावरण की रक्षा हेतु सरकारी प्रयासों के साथ साथ हमारे उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है एवं बहुत से क्रांतिकारी निर्णयों के सहायता से पर्यावरण सुधार आंदोलन को बल प्रदान किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी तौर पर और न्यायालय के द्वारा पर्यावरण को बचाने हेतु बहुत से कारगर कदम उठाए गए हैं, लेकिन आज आवश्यकता है हम सबको इस आंदोलन में अपनी आहुति देने की। और हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को नकारा तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, जिसमें आज का विषय था जल और वायु प्रदूषण अधिनियम। आलेख और वाचन था डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 24 सितंबर मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप कमर एवं रीढ़ की हड्डी की समस्या जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे के जोड़ में नस का दबा होना, साइटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द आदि के समाधान के लिए पूछे सवाल डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज गुरुवार मध्याह्न 12 बजे। सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको सुनवाते हैं चंद गैर फिल्मी गजलें। फनकारा हैं मल्लिका पुखराज।

अभी आप सुन रहे थे मल्लिका पुखराज की गई चंद गैर फिल्मी गजलें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

बड़े दिल वाला। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत रचना थी आर डी बर्मन की। अगला गीत मुकेश की आवाज में, देवर फिल्म से।

बेवफा सनम। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की, शब्द रचना थी योगेश की और संगीत रचना थी निखिल विनय की।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को फिल्म दोस्ती में गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने।

साहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी रवि ने, आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था आज और कल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में। समीर के इन बोलों को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मृग तृष्णा फिल्म से, गाया है मोहम्मद रफी ने।

मन चली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना गोलमाल फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था गुलजार ने।

घर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

पत्थर के सनम, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज थी मुकेश की। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 24 सितंबर यानी कि आज मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप कमर एवं रीढ़ की हड्डी की समस्या जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे के जोड़ में नस का दबा होना, साइटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द आदि से ग्रस्त हैं तो समाधान के लिए पूछे सवाल डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज गुरुवार 24 सितंबर, समय मध्याह्न 12 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: 2 MHz पर दिन के 11 बजने को है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है देवराज कृष्ण दीक्षित की।
1: हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाश वाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में आपका।
2: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाराखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर जी, आज बहुत दिनों के बाद से फोन लगा सर जी।
1: जी जी वर्मा जी, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, कैसे हैं आप?
2: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आपकी याद आ रही थी और आज तो मैंने सोच लिया था कि भैया जब तक फोन नहीं लगेगा जब तक मैं आधे घंटे ट्राई करूंगा बिल्कुल, और कोशिश तो करता रहता हूँ, पर आज किस्मत अच्छी है, लक मेरा अच्छा है कि आपसे बात हो रही है सर।
1: अरे वाह वाह, प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी।
2: जी जी मिलती है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ किसी भी कार्य को करने के लिए आप अपनी तत्परता, मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे सर।
1: वर्मा जी, आज क्या फरमाइश है आपकी?
2: गाना है प्यार कभी गम नहीं करना, ऐसा गीत है सर।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी।
2: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार सर।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। देवराज जी, मैं ब्रज रेडियो सुनता, मैं एसके चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। मैं
0: कैसे हैं चतुर्वेदी जी?
1: ठीक हूँ, आप आनंद में होंगे।
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य कैसा है?
1: स्वास्थ्य ठीक है, धर्म गरम तो चलता है, सर्दी चल रही है, मौसम
0: जी।
1: खराब है,
0: और परिवार में सब बढ़िया हैं?
1: और परिवार में सब आनंद मंगल है।
0: बताइए, कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: एक वो गीत है ना, हम सफर मेरे हम सफर, तो
0: जी,
1: ये गाना आप सुनवा लीजिएगा।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी।
1: आपके लिए भी बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, श्री अरदास।
0: जय श्री कृष्ण।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका।
0: और सर कुशल हैं? सब ठीक है?
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं।
0: मैं बिलसोता में गांव कुआं से भजनलाल बोल रहा था सर।
1: भजनलाल जी, कैसे हाल चाल है?
0: ठीक है सर, आप तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुखार से पीड़ित हो गए थे।
1: जी जी, ये बदलता मौसम है, वायरल का असर होगा।
0: वायरल ही था। अब कोई एक गाना सुनवा दीजिए आज।
1: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं।
0: जन्म जन्म का साथ निभाने, सौ सौ बार जन्म लिए मैंने।
1: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाश, राम राम साहब।
0: राम राम जी,
1: मैं गया से बोल रहा हूँ, संजय। ठीक
0: कैसे हैं संजय जी?
1: है राहुल जी, तो
0: परिवार में कैसे हैं सब लोग?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: क्या कर रहे हैं आजकल संजय भाई?
1: बस नहीं कर रहे, घर पर ही पड़े रहना है। मेरी तीन आदमी है,
0: बताइए, फरमाइश क्या रहेगी आज आपकी?
1: राम तेरी गंगा मैली हो गई।
0: राम तेरी गंगा मैली हो गई,
1: हाँ, एक मेरा दोस्त है, गाँव है, गोविंदा सेठ जी, सोरे बारे।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ भैया नमस्कार।
0: नमस्कार भैया जी, स्वागत आपका।
1: योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: और मौसम कैसा है बेमेतरा में?
1: बहुत धूप खिला हुआ है, बाकी हवा काफी अच्छा,
0: जी,
1: एक
0: मौसम
1: सुखद
0: खुशनुमा
1: चल रहा।
0: है।
1: जी,
0: और परिवार में कैसे हैं सब?
1: सभी कुशल मंगल हैं।
0: बताइए, फरमाइश, क्या सुनवाए आपको?
1: फिल्म प्रेम गीत में एक प्यारा सा गजल है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। धन्यवाद।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल सिंह ग्राम मंडला बजाई राया आपसे बातें कर रहा हूँ जी।
0: स्वागत है नेत्रपाल जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: आप बताइए दीदी जी क्या बात है और आप सही हैं?
0: बिल्कुल सही है, आप कैसे हैं?
1: हाँ ठीक हूँ सर,
0: स्वास्थ्य अच्छा है?
1: स्वास्थ्य सही है सर।
0: जी, बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: फिल्म है चारों धाम,
0: जी
1: कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण और राम।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रपाल जी।
1: सर नमस्कार, राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम आपके बीच लेकर आए देवराज कृष्ण दीक्षित, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: नमस्कार।
2: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
3: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नया गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहां भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके। स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये

0: स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब। तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताजुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था
1: जी।
0: और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है। लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात शुरुआत की तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है वहां से शुरुआत हुई
1: जी। तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान

0: अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या आपने कोई खरीदा, कुछ छिलके निकले, तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गिला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाली जो कचरा प्रबंधन की 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा। जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग, चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहां तक वहां सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहां कैसे हुआ। वहां पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकालकर एकर्स जमीन निकाल के वहां पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहां प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहां एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है, जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहां की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन, वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूं, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूं, जो गुजरात से गवर्नेंस, और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ

0: डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेज होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा
1: जी।
0: भाई। आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है, ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है। इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
0: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा आरडब्ल्यूए की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए, और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में, और 2017 में नंबर एक पर आ गए, और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहां से कंपटीशन शुरू हुआ, तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया, तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए, और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे, फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरे बात पर अभी चले गए हैं, लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था, और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है, हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो सिक्स है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत के निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है, जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्राउट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे, और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की, घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है, वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है, तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना, और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी

0: चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे ये सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई। इसीलिए बहुत अचंभा की बात है और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहां प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ। वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया, लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होंगे कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचरे से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है,
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए जी, जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है, सफाई शिक्षा से आता है। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें 2-3 बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले हम, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी,
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं, और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है, उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया

0: जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सकें। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 158,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 131,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस है उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी,
0: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
2: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो उस चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
2: हाइजीन का कॉन्सेप्ट, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा, और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए, ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा, खाली एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
2: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए, स्पॉटलेस। जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जिससे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है, जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ

0: एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस
1: जी।
0: और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है। तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं
1: जी,
2: और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं
1: हाँ।
2: तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत
1: हाँ,
2: हो जाती है।
1: ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें भी, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिए मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि

0: मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करें, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है। तो यहां मुझे लगता है कि सरकार को यहां पर फोकस करना पड़ेगा। यहां दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किले को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
1: काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है। और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल किया जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
2: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज लगी बताई है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए?
1: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने, कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूं। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
2: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
0: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
2: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं, मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
1: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
2: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरतनाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: FM

102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे हमारे आज डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575, जी हाँ, मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, निवारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप कमर एवं रीढ़ की हड्डी की समस्या जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे जोड़ में नस का दबा होना, साइटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द आदि के समाधान के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का समय दिन में 12 बजे से आज सूचना समाप्त हुई।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर।
1: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।
2: श्रोताओं नमस्कार। जैसा आपको बताते रहे आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर का ये समय हो गया है, नंबर आपको बता दिए गए हैं। डॉक्टर सुनील गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, न्यूरो सर्जन, आप आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत।
3: धन्यवाद
2: जी। तो श्रोता हमसे जुड़े उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ कि जो कमर और पीठ का दर्द अक्सर 40 के बाद 50 के बाद लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई आज कमर दर्द कर रही है, आज हमारी पीठ दर्द कर रही है, तो कभी कभी तो समसामयिक हो गया कि भाई बुखार आ गया, कोई बीमारी है, लेकिन ओल्ड एज में अक्सर ये समस्या बनी रहती है। तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो कमर और पीठ का दर्द है किन किन कारणों से एक सामान्य व्यक्ति माने कि इनसे हो सकता है, सिर्फ ओल्ड जी नहीं, बीमारी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मुझे लगता है ऐसा कारण होंगे। तो एज ए न्यूरोसर्जन आप हमारे श्रोताओं को शुरुआत में बताइए क्या है ये कमर।
3: कमर का जो दर्द है जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट कमर दर्द या गर्दन में दर्द या बैक में दर्द या रीढ़ की हड्डी में दर्द इस तरीके के हमें आते हैं। तो इसके जो कारण होते हैं अगर हम उन पर गौर करें तो एक तो होता है जन्मजात कारण, कुछ कारण जन्म से होते हैं जिनको हम स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी की जो बनावट होती है जन्म से कुछ फॉल्टी होती है। और कुछ होते हैं जो कारण अक्वायर्ड होते हैं जन्म के बाद आते हैं, जिनमें होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, कोई चोट लग गई हो रीढ़ की हड्डी में पहले,

0: उसमें कोई स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ हो या कोई लिगामेंट में फ्रैक्चर हुआ हो, कोई टीयर हुआ हो। फिर तीसरा आता है डिस्क प्रोलैप्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है अडल्ट और मिड एज में
1: जी,
0: कि डिस्क स्लिप हो गई और वो नस को दबा रही है, उससे दर्द कमर में भी हो रहा है और पैर में भी जा रहा है, जिसे आम लोग सियाटिका का दर्द कहते हैं।
1: हाँ, कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरे दाएं में जा रहा है, बाएं में जा रहा है, तो वो ये है।
0: हाँ, वो भी इस तरीके से प्रेजेंट करता है। और कुछ होते हैं स्पाइनल ट्यूमर्स। स्पाइनल ट्यूमर्स कुछ बच्चों में भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम कंजेनाइटल ट्यूमर्स भी बोलते हैं, और कुछ अक्वायर्ड होते हैं, बाद में होते हैं जन्म के बाद।
1: तो जी, आपने कहा जन्मजात भी हो सकते हैं और बाद की लाइफ में भी हो सकते हैं। कई बार कोई चोट लग गई, फिसल गए, हमने नज़रअंदाज कर दिया वो चोट, अब बाद में जब ओल्ड एज हो रही तो निकल करके आ रहे हैं। अब इसमें जैसे बहुत सारे लोग तो जो काम इस तरह का कर रहे हैं, जैसे सिटिंग ही है, लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं, या वजन का काम कर रहे हैं, दिन में 50 बार वजन उठाना ही उठाना है, तो उन लोगों के ये समस्या क्या जल्दी हो सकती है क्या?
0: उनको बेसिकली जैसे अगर कंटिन्यूस सिटिंग कर रहे हैं और रॉन्ग पोस्चर में अगर हम बैठ रहे हैं
1: जी,
0: तो डिस्क डिजनरेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, डिस्क प्रोलैप्स होने की समस्या उनको ज़्यादा रहती है
1: जी।
0: या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जर्की रोड्स पर ड्राइव कर रहे हैं या झटके से कुछ उठा रहे हैं, तो उससे डिस्क स्लिप होने की संभावना ज़्यादा रहती है या स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है
1: जी जी। तो आपने रोड की बात की, जैसे रोड खराब है और हम बाइक से जा रहे हैं, तो अब शरीर संग दे रहा है आज सहन करके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चोट लग गई, आपने केयर ही नहीं की, कुछ एक दो दिन दर्द हुआ और वो बाद में फिर लंबा।
0: यस, ये भी होता है, उससे स्पाइन का डिजनरेशन ज्यादा होता है जर्की रोड पर ड्राइव करने से।
1: तो अब जैसे पता कैसे लगे कि ये समस्या स्पाइन की है? कई बार आदमी समझ नहीं पाता, सही जगह पहुंच नहीं पाता, डायग्नोस नहीं हो पाता, होता कुछ है और इलाज कुछ का चलता रहता है। ये चीज़ें मेडिकल के साथ बहुत हो रही है उसमें।
0: हाँ, तो उसी के लिए हम आपके यहाँ आके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, जो उसकी पैथोलॉजी को डायग्नोज कर सके कि वो कौन सी पैथोलॉजी है, कंजेनाइटल में आ रही है, एक्वायर्ड में आ रही है, जन्म जात है या जन्म के बाद हुई है, और जन्म के बाद हुई है तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक है या कोई ट्यूमर है या कोई डिस्क प्रोलैप्स है, कौन सी समस्या है।
1: जी जी। अब जैसे आप बाई बर्थ की कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जन्म लिया, वो तो छोटा है, समझ नहीं पा रहा, तो फिर अब पेरेंटिंग की बात है, पर जो लोग लुक आफ्टर करें, कब पता लग जाता है कि भाई ये जन्म जात हो सकती है?
0: कुछ समस्याएं जैसे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, वो उसको बाहर से पीछे पीठ पे कुछ हेयर्स होंगे, वो एक निशान है, या कोई फोड़ा होगा वो तो दिख जाएगा, तो वो समझ जाएंगे पेरेंट्स, तो आ जाएंगे
1: जी जी।
0: लेकिन जो ओकल्टा होता है स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा में, तो पीठ पे फोड़ा रहता है, तो वो तो दिख जाता है, वो तो आ जाते हैं,
1: कोई वार हो रहा है, समझ जाएंगे।
0: लेकिन जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है उसमें ये पता नहीं चल पाता है, बस उसमें एक बाहर निशान होता है, बाहर पीठ पे एक हेयर्स का गुच्छा जैसा होता है हल्का सा। तो कुछ जो पेरेंट्स हैं जो समझदार हैं, वो फिर आएंगे लेके स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, तब हम उसकी जांच करेंगे एमआरआई से, तो हमें अंदर की जो एबनॉर्मलिटी है वो पता चल जाएगी।
1: मतलब जागरूकता का विषय है। इसीलिए हम जो है जागरूकता ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जैसे कारण आपने बताए, इसमें लक्षण सिर्फ एक दर्द ही है, जैसे आपने कहा उभार भी हो सकता है, बाल भी हो सकते हैं, या कंटिन्यू दर्द हो रहा है?
0: उसके जो स्पाइनल पैथोलॉजीज होती हैं उनके बैक पेन एक लक्षण है, पैरों में सुनपन दूसरा लक्षण है, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल ना होना ये तीसरा और चौथा लक्षण है। यूजली जो सबसे कॉमन होता है वो बैक पेन होता है, जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, फिर दूसरा उनमें सुनपन रह सकता है पैरों और हाथों में, पैरों में
1: नस
0: दब रही है और सुनपन रह सकता है, और वीकनेस पैरालिसिस भी हो सकती है पैरों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जिस तरह का हमारा भारतीय समाज है उसमें हम देखते हैं कि हर व्यक्ति डॉक्टर रहता है, उसमें आप किसी कोई कुछ भी बात करें हम सलाह तुरंत दे देते हैं। चलिए दादी नानी का तो हम मान लेते हैं कि अनुभव से होगी, लेकिन आज तो हर व्यक्ति आपको सलाह दे के चला जाता, तो एक

0: अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ तक पहुँचना एक रोगों के निदान में और समाधान में कितनी इम्पोर्टेंस इस बात को मानते हैं कि एक सही समय पे व्यक्ति सही जगह पहुँच जाए और एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुँच जाए।
1: ये इसमें आपकी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाएं तो एटलीस्ट आपकी 50% समस्या तो वहीं पे ठीक हो जाती है। सही सलाह मिलना आज की डेट में बहुत ही
0: मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा।
1: मुश्किल।
0: जी, कई बार हम सलाह को मान भी लेते हैं, जैसे किसी ने कहा कि मेरे हुआ था यार, मैंने ये किया, अब वो आप वो समस्या आप उसकी क्या समस्या रही होगी किस ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, लेकिन वो मेरे लिए सुटेबल होगा ये जरूरी
1: ये
0: थोड़ी।
1: जरूरी नहीं है, वो एक्सपर्ट ही आपको बताएगा कि आप उनकी समस्या, स्पाइन की इतनी सारी पैथोलॉजीज हैं तो दो लोगों की समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
0: तो अब श्रोताओं आप पूछ सकते हैं, दो नंबर हमने आपको बताए थे, 0565-2530-135 और 94-122-25-575। आप फोन करिए और जो है हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। इसमें डॉक्टर साहब मैं अब ये जानना चाह रहा था कि जिन लोगों की लॉन्ग सिटिंग की बात आपने कही थी, जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आजकल AI जनरेटेड है, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, इस पर मैं आपसे जानूंगा बाद में। हेलो
2: नमस्कार
0: नमस्ते भैया, नाम बताओ।
2: सर, राजेंद्र सिंह, जिला मथुरा, रामनगर जसौंदा से बोल रहा हूँ।
0: राजेंद्र सिंह जी ना,
2: गजेंद्र सिंह,
0: गजेंद्र सिंह, ठीक है, जसौंदा। तो आप तो जसौंदा में रहते हैं या खामनी, इसमें रामनगर में?
2: जसौंदा रामनगर में, रामनगर में,
0: रामनगर में, ठीक है। समस्या डॉक्टर साहब से पूछिए।
2: सर ये मेरी मिसेज जो है वो रात को जैसे सोती है, शाम को अच्छी सोती है, 3-4 बजे के करीब उनकी कमर में इतना बड़ा पेन होता है कि खड़ा होने में उनके आंसू आ जाते हैं।
1: अच्छा, वो पेन कमर में ही होता है या वो पैर में भी आता है गजेंद्र जी?
2: कमर में ही होता है और बहुत ज्यादा होता है। पहले इनके इंजेक्शन लगे थे, ऑपरेशन से बच्चे हुए तब इनके।
1: अच्छा, वो इंजेक्शन कब लगे थे?
2: 20 साल के करीब हो गई,
0: डिलीवरी के टाइम।
1: अच्छा,
2: हुई थी, ऑपरेशन से 3 बच्चे हुए थे।
1: अच्छा, और दर्द कब से हो रहा है?
2: दर्द ऐसे कोई 6 महीने हो गए।
1: 10-6 महीने। कोई चोट तो नहीं लगी थी उनको?
2: नहीं डॉक्टर साहब, कोई चोट नहीं लगी।
1: अच्छा, और दर्द कमर में ही रहता है, पैर में नहीं आता है?
2: दिन में नॉर्मल रहता है लेकिन रात को ही उठने में दिक्कत होती है।
1: अच्छा, दिन में पैर में भी रहता है दर्द?
2: नहीं, रात पैरों में नहीं रहता, कमर में ही रहता है।
1: दिन में भी और रात में भी?
2: नहीं, दिन में तो ठीक रहती है।
1: अच्छा,
2: लेकिन जब सुबह 3-4 बजे करीब उठती है तब ज्यादा।
0: मतलब एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि जब ठीक से सो जाती है, नींद पूरी हो जाती है, जब सुबह उठती है तब इनको महसूस होता है,
2: तब होता है।
1: हाँ, तो इनको हमें स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या लग रही है, तो आप सिम्स आकाश में आ जाइए, इनकी हम जांच करके देख लेंगे, MRI करके कि क्या करना है, तो जो भी पैथोलॉजी होगी उसका उपचार करेंगे फिर।
2: ठीक है
0: गजेंद्र जी, तो आप दिखा लीजिए, क्योंकि ये तो अवेयरनेस का ये समस्या आपकी है, लेकिन वो समस्या एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल के माध्यम से ही है, लेकिन घबराने की तो कोई बात,
1: घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, इसके पूरे सॉल्यूशन है हमारे
0: जी,
1: पास।
0: जी जी जी जी। एक और श्रोता जुड़े। हेलो,
3: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्ते भैया, नाम बताओ।
3: मैं जितेंद्र दोसारसिया, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़, UP से।
0: अच्छा, ठीक है जितेंद्र जी, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आप पूछिए क्या समस्या आपकी।
3: डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार जितेंद्र जी।
3: सर जी ये बताइए, पहली मेरी एक जिज्ञासा है छोटी सी, कि यूं बोलते हैं डिलीवरी के टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो बाद में परेशान करता है कि लोग बाद में बोलते हैं कि दर्द होता रहता है?
1: नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता, वो परेशान नहीं करता, ये भ्रांति है।
3: अच्छा, हाँ ये क्लियर हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे सर किसी को पैरालिसिस होता है, क्या स्पाइन से कोई संबंधित है उसका?
1: हाँ, पैरालिसिस स्पाइन की समस्या की वजह से भी हो सकता है या ब्रेन में परेशानी हो तो भी हो सकता है, तो अब हमें ये जांच के देखना है कि किस वजह से पैरालिसिस हुआ है। कुछ पैरालिसिस अगर हुआ है और अगर आप समय पे आ गए हैं तो पूरा उपचार उसका उपलब्ध है।
3: हाँ, और एक और सवाल सर मेरा लास्ट
0: पूछो,
3: ये है कि जैसे अब किसी की रीढ़ की स्पाइन में चोट लग गई, अलग हो गया रीढ़ की हड्डी,
1: हाँ,
3: क्या वो दोबारा क्योर हो सकती है?
1: हाँ, स्पाइन फ्रैक्चर है, अब ये किस ग्रेड का फ्रैक्चर है उस पर डिपेंड करता है और कितना डैमेज हुआ है।
3: हाँ
0: ठीक है,
3: ठीक है सर, नमस्कार,
0: नमस्ते।

0: भैया जितेंद्र जी, डॉक्टर साहब, एक प्रकाश जैन जी 55 साल उम्र नांदेड़ से जुड़ रहे हैं, हमारे ऐप के माध्यम से प्रसारण सुन रहे हैं इस समय। लिखते हैं कि कमर दर्द होता है तो उम्र से है या कमजोरी से है, ये थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं सलाह के तौर पे।
1: अच्छा, कमर का दर्द सिर्फ कमर में ही है या पैर में भी जाता है? देखो, कमर का दर्द है अगर ओल्ड एज में है तो ओल्ड एज में यूजुअली ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से भी पेन होता है। और यदि वो पेन कमर में भी है और पैर में भी जा रहा है, रेडिएटिंग पेन है, तो हो सकता है वो सियाटिका की प्रॉब्लम हो, डिस्क प्रोलैप्स हो या कोई स्पाइनल ट्यूमर हो, उसकी हमें जाँच करके उस तरीके से उपचार करना होता है। अगर सिर्फ वो ऑस्टियोपोरोटिक पेन है तो हमें सिर्फ दवाइयों से ही इलाज करना है। यदि वो सियाटिका की प्रॉब्लम है और कोई स्पाइनल ट्यूमर है तो हम उसमें एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप से सर्जरी करते हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है।
0: आप दिखा सकते हैं प्रकाश जी,
1: आकाश में आके सिम्स में दिखा सकते हैं।
0: ये निहारिका जी हैं, उम्र इनकी 35 साल, ये भोपाल से लिख रही हैं। लगातार खड़े होकर काम करने से कमर दर्द असहनीय होता है, न सुबह सोकर उठते ही एड़ियों में दर्द रहता है, कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले रही हूँ। ये 35 साल की है सर। और घरेलू उपाय क्या अपना सकती हूँ? कमर से पैर की ओर जाता है जो, और भूलने की भी दिक्कत बता रही है थोड़ा सा।
1: हाँ देखिए निहारिका जी, आपको कमर में दर्द है और वो पैर में जा रहा है, तो ऐसा जो दर्द है उसको हमें वर्कअप करने की ज़रूरत है। ये स्पाइनल स्टेनोसिस भी हो सकती है, लंबर डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकती है, डिजेनरेटिव स्पाइन भी इस एज में देखने को मिलता है, और इसमें नसें दबी हुई हो सकती हैं आपकी। तो इसमें हम इनिशियली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, अगर उससे आराम नहीं मिलता है 6 वीक में तो हम इसके लिए एडवांस एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं।
0: जी जी डॉक्टर साहब, श्रोता जुड़ने से पहले एक चीज़ मैं जान लेता हूँ कि आजकल ओवरवेट की समस्या बहुत है, बहुत सारे लोग बल्कि हो जाते हैं, चाहे वो उनके व्यवहारगत हो, जीवन शैली हो या फिर किसी और कारण से। अगर वेट बढ़ रहा है, हमारी उम्र और हमारी हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वो भी कारण बन सकता है?
1: यस,
0: बैक
1: यस जी, जिनका जो ओवरवेट होते हैं उसमें स्पाइनल डिजनरेशन काफ़ी फास्ट होता है, तो उसमें स्पाइन की समस्या नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा देखने को मिलती है, और उसमें डिस्क डिजनरेशन और बोन डिजनरेशन, स्पाइनल बोन डिजनरेशन ज़्यादा होता है।
0: तो मतलब ओवरवेट भी एक समस्या इसकी हो सकती है। इसमें जैसे बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर साहब ऐसी, जैसे अपन इसकी थायराइड की बात करें, अपने डायबिटीज़ की बात करें, वहाँ लंबे समय तक दवाइयाँ चलती रहती हैं, शरीर की इम्यूनिटी भी जाती है, कमज़ोर हो जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: उन लोगों के लिए जैसे डायबिटीज़ है, इनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इनको डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट को कंट्रोल रखना है, तो इससे स्पाइन की हेल्थ इनकी बेटर रहेगी।
0: जी जी जी, एक प्रश्न कर रहे हैं सहारनपुर से नारंग जी। आप लिखते हैं कि मेरी L5-3 और 51 शायद, ये एक और लिखा रहे हैं, डिस्क है, कई सालों से दर्द बना रहता है, ये अपने आप ठीक होगा या सर्जरी से? कैसे मैं चलता फिरता रहूं ज़्यादा, ऐसा लिखा है उन्होंने।
1: अच्छा, आपकी जो L5-S1 डिस्क में प्रोलैप्स है जिसकी वजह से आपको बैक में पेन है और पैर में भी आता है, देखिए स्पाइनल डिस्क की जो पैथोलॉजी है उसको हम ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4। अगर 1 और 2 ग्रेड का प्रोलैप्स है तो रेगुलर एक्सरसाइज और कंजर्वेटिव दवाइयों से ही आप हेल्दी रह सकते हैं, अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा।
0: जी,
1: अगर Grade 3 या 4 का प्रोलैप्स है तो हम एंडोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, उससे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं।
0: जी जी, बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल भी होता है, मैं बाद में पूछूंगा। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हेलो हेलो, संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसमें जैसे गर्दन का भी दर्द है, वो भी कई बार नीचे को जा रहा है, सर्वाइकल पेन की हम बात करते हैं, तो वो भी?
1: हाँ, गर्दन का दर्द भी बेसिकली स्पाइन की ही प्रॉब्लम होती है, और उसमें भी डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डिस्क।

0: की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है गर्दन में दर्द होता है और वो हाथ में जाता है, उसमें भी जो पहले हल्की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम दवाओं से और कॉलर लगा के और मेडिसिन से और रेगुलर एक्सरसाइज से ही कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर समस्या ज्यादा हो जाती है उन केसेज में हम सर्जरी करते हैं।
1: एक श्रोता जुड़ रहे हैं, हेलो नमस्ते, थोड़ा आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए।
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही तो बोलिए, थोड़ा तो जोर से बोलिए। हेलो, नहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है इसमें। तो डॉक्टर साहब, जैसे पोस्चर की बात हम कर रहे थे, लोगों की कुछ जैसे कुर्सी पर बैठे तो वो बैठते ही इतने आराम में आ जाते हैं कि वो आगे खिसक जाते हैं, कुर्सी को आधा बिस्तर बना लेते हैं। तो ये जो जीवन शैलियाँ हैं, हम थोड़ा सा आराम तलबी की तरफ जा रहे हैं, या घर में है तो फिर बिस्तर पर ही लेट रहेंगे, कई बार गर्दन बहुत ऊंची करके लेट रहते, तो ये चीजें भी क्या,
0: ये चीजें भी
1: मायने रखते
0: हैं? यस, स्पाइनल डिजनरेशन में ये चीजें भी मैटर करती हैं।
1: मैटर करती हैं, जिन लोगों की बैठे रहने की वो है, वो क्या करें बीच बीच में, थोड़ा
0: बीच बीच में एक दो घंटे में उठ के आप 10-15 मिनट वॉक करें तो ठीक रहता है।
1: ठीक रहता है, मतलब काम कितना भी हो लेकिन आप उसको अपने स्वास्थ्य और शरीर को दांव पे नहीं लगा सकते।
0: हाँ
1: जी जी जी। अब इसमें हमने रोड की बात की, बहुत सारे लोग बाइकर होते हैं या जिनका कंटिन्यू फील्ड का काम है, वो पूरे दिन, बहुत सारी आजकल तो कंपनी आ गई है, हम घर बैठे सामान भी मंगा लेते हैं, वो करते, तो जो कंटिन्यू वो कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा बताइए। एक श्रोता जुड़े, हेलो, हाँ संपर्क नहीं हो पा रहा इसमें। तो जिन लोगों को बाइक पे ही चलना है, फील्ड का काम है,
0: उनमें सर स्पाइनल डिजनरेशन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है,
1: मिल जाती है उसमें, तो फिर वो क्या करें सर उसमें?
0: उनको
1: काम तो है,
0: काम तो है, वो करना ही है।
1: हाँ।
0: उसमें बस यही है कि पोस्चर को अपना ठीक रखें।
3: हेलो,
1: हाँ जी, हेलो
3: हेलो, सिंह साहब को नमस्कार।
1: नमस्ते भैया, नाम बताओ।
3: मैं हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ, गाँव अड़िंग से।
1: अच्छा, हिम्मत सिंह
3: जी।
1: हाँ बोल, बताओ हिम्मत जी। अड़िंग
3: सर जी, हमारी मैडम है घरवाली, 60 साल की करीब उम्र है, उसके कोहनी में दर्द होता है।
1: कोहनी में दर्द हो रहा है?
3: नहीं जी।
0: अच्छा, कोहनी में दर्द किस, जो समस्या है या तो बोन से ही है, वो एल्बो में है ना, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का डोमेन होता है। बट अगर गर्दन से लेके हाथ में दर्द आ रहा है तो वो स्पाइन की समस्या हो सकती है। गर्दन से लेके हाथ में तो नहीं आता है दर्द?
3: नहीं सर, केवल कोहनी में होने लगा, वो भी अभी 4-6 दिन से बस।
0: अच्छा, केवल कोहनी में ही होता है, तो उसका बेसिकली एल्बो ज्वाइंट में ही कोई प्रॉब्लम होगा, या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, 60 साल की उम्र है, या कोई टेनिस एल्बो हो सकती है, तो उसका दवाओं से ही उपचार संभव है। और यदि फिर भी दवाओं से आराम नहीं मिलता है तो एक एक्सरे करके देख लेंगे कि वहाँ कोई फ्रैक्चर या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है।
1: आके दिखा लीजिए,
0: आप आकर सिम्स में आके दिखा लें।
3: अच्छा सर, ओके सर,
1: ठीक है। जी जी, डॉक्टर साहब, आजकल जैसे वायरल बुखार की हम बात करते हैं, बुखार आता है चला जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि यार अब 20 दिन हो गए, बॉडी पेन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें, तो क्या व्यक्तियों को लगना चाहिए कि
0: वो
1: पोस्ट इफेक्ट रहते हैं?
0: वो आफ्टर इफेक्ट रहते हैं, थोड़ा माइल्ड या रहता है, मसल पेन होता है जो वायरल, पोस्ट वायरल,
1: तो उसमें क्या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, आप
0: एक्सरसाइज से और गुड न्यूट्रिशन से वो ठीक हो जाएगा,
1: वो ठीक हो जाता उसमें। है उसमें चलते चलते एक ये आ रहा है प्रश्न, पूछा है राधा चतुर्वेदी, 45 साल उम्र है, जगह तो नहीं बताई, नीचे बैठने में घुटनों में दर्द रहता है और कई बार चिक चली जाती है, सो के उठते हैं तो सुबह कमर घर कर जाती है, झुका नहीं जाता, 2-3 दिन तक जो है ये सब रहता है इसमें।
0: राधा जी, ये जो आपकी जो नीचे बैठने से जो चिक चली जाती है, ये स्पाइन की प्रॉब्लम है, यूजुअली लोग इसी तरह से बोलते हैं, तो हो सकता है आपकी डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो और उसी से इस तरीके का जो सिम्टम आप बता रही हैं वो देखने को मिलता है। तो आप एक बार आकर सिम्स हॉस्पिटल में आ जाएं, हम आपको जाँच कर लेंगे कि उसमें डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसी हिसाब से हम आपका फर्दर इलाज करेंगे।
1: जी जी, मतलब दिखाना है,
0: दिखाना अनिवार्य
1: बनता है। डॉक्टर साहब, इसमें लोग, मैं फिर क्योंकि अपने हर कार्यक्रम में मैं जरूर कहता हूँ, हेलो
4: नमस्कार,
1: नमस्ते भैया,
4: डॉक्टर साहब के लिए भी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: नाम बताओ
4: सर।
2: सर मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है, मैं ककरेटिया से बोल रहा हूँ, राया ककरेटिया।
1: अच्छा ठीक है, राया से।

0: बाउला
1: गढ़वाली के कमर में दर्द बना रहता है, मतलब पीठ में कोट पे लेके और कमर तक वैसे बना रहता है, गैस ही बनती है कुछ, रात के समय पे सोते समय पे ज्यादा होता है।
2: अच्छा,
1: और काम धाम जब करती रहती है चलती फिरती तो कम होता है।
0: तो काम, उम्र कितनी हो गई?
1: उम्र होगी साहब मतलब 60 के लगभग रहेगी।
0: 60 के लगभग हो गई तो काम करते रहिए, फिर क्या परेशानी?
2: अच्छा,
0: शरीर मानता है डॉक्टर साहब,
1: फिर भी बता रहे हैं। सोते समय पे फिर एक सम जगके ना ही एकदम चला नहीं जाता है, कभी कभी पैरों में बता दीजिएगा खेरे पैर की तरफ चला गया, पैर ऐसा हुआ करे।
2: अच्छा, ये दर्द
1: हो रहा है,
2: ये दर्द सिर्फ,
1: हाँ कमर फटी जा रही है मेरी, पीठ पीछे से पीठ जो है।
2: अच्छा, और काम करती हैं तो ठीक हो जाता है?
1: काम करती हैं तो वो फिर लमा हो जाता है, तो फिर नहीं होता है।
2: हाँ देखिए ऐसा है, और वो पैर में नहीं आता है, दर्द सिर्फ पीठ में ही रहता है,
1: बाएं पैर में चला जाता है, कभी कभी बाएं पैर में भी कहती है पैर चलने में परेशान कर रहा है।
2: हाँ तो ये सियाटिका की समस्या हो सकती है, हो सकता है उनकी डिस्क प्रोलैप्स हो या कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा, हम जांच करेंगे उनकी, है ना? तो इसके अच्छा, पूरा अच्छा। उपचार है, 100% ठीक हो जाते हैं ऐसे मरीज।
1: अच्छा अच्छा, मैंने एक बार वहाँ राया हॉस्पिटल में दिखाई थी सरकारी में अपने में, तो उन्होंने एक गोली लिख दी थी, वो गैस से जो है उससे अच्छा। कुछ राहत मिली थी।
2: अच्छा ठीक है, आप उसे लेते रहिए जब तक, और फिर आप यहाँ हमें आके जांच करवा लीजिए, फिर हम बताएंगे।
0: एक बार एक्सरे MRI जो भी है, कम से कम निदान पहले होना चाहिए डॉक्टर साहब। निदान आप क्या मानते हैं कि एक अच्छा निदान एक अच्छा इलाज की पृष्ठभूमि बना सकता है?
2: यस, आपको सही स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना है। स्पाइन की जो भी पैथोलॉजी है आज उनके इतने एडवांस सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। पहले लोगों के मन में भ्रम रहता था कि स्पाइन का कुछ भी ऑपरेशन हुआ तो लकवा हो गया, ऐसा नहीं है। स्पाइन की जो भी समस्याएं हैं उनका 99.99% सेफ इलाज है। इनिशियली हम दवाइयों से और एक्सरसाइज से ही उनको करते हैं, और जिन पेशेंट्स को ज्यादा परेशानी होती है उनकी हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, एंडोस्कोप से और माइक्रोस्कोप से।
0: अब तो बहुत अंदर तक इतना मतलब एडवांस हो गई है साइंस कि हम हर चीज को देख ले रहे
2: हैं। हम लोग अपनी उनसे हमें हर चीज पैथोलॉजी अलग दिखाई देती है, नस अलग दिखाई देती है, बीमारी अलग दिखाई देती है।
0: एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो
3: जी,
0: नमस्ते।
3: सर मैं वृंदा बोल रही हूँ,
0: वृंदा बोल रही हूँ वृंदावन से। बताइए वृंदा जी।
3: सर ये मेरी नानी के जो घुटना होता है उसमें पूंछ नहीं मरती बैठने में।
0: अच्छा, तो नानी तो फिर ओल्ड एज होंगी, 60 से ऊपर?
3: नहीं, हाँ नहीं, समथिंग 50 मान लो आप।
0: 50 मान लेते हैं तो।
2: अच्छा, क्या नहीं मरती है
0: ये जो कूट, मतलब ऐसे?
2: अच्छा, पालथी बना के नहीं बैठ पाती है
3: जी?
2: अच्छा अच्छा, क्या परेशानी होती है पालथी बनाने में?
3: क्या होती है आपकी? तो ये बोलती है दर्द होता है।
2: कमर में दर्द होता है कि घुटने में दर्द होता है?
3: घुटने में दर्द होता है।
2: अच्छा, घुटने में दर्द होता है।
0: ऊकड़ टाइप के बैठ जाते हैं गांव में, आप समझ रहे हैं?
2: हाँ,
0: अच्छा, मोड़ के।
2: अच्छा अच्छा, उसके लिए आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना होगा, ये घुटने की समस्या है ना?
0: इसका स्पाइन से नहीं है, लेकिन अच्छे ऑर्थो सर्जन से आप मिला लीजिए, हो सकता है घुटनों में परेशानी हो, एक्सरे से पता लग जाएगा उसमें। डॉक्टर साहब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि भाई समस्याएं छोटी हो या बड़ी हो, निदान बहुत तो जल्दी हो जाना चाहिए। कई बार दुख के साथ रहने की आप आदत न डालें दर्द के साथ।
2: साइंस चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि आकाश एम्स विश्व स्तरीय सुविधा है आपके मथुरा में। जो इलाज पहले अमेरिका में मिला करता था, जो इलाज दिल्ली के बड़े सेंटर्स पे मिला करता था, वैसे जो विश्व स्तरीय इलाज हैं रीढ़ की हड्डी के, वो आपके घर में उपलब्ध हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या है तो आप उससे परामर्श लें और आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। उस समस्या से न तो डरने की जरूरत है, ना ही खर्च से घबराने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं और जाना है।
0: व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि अभी तो मेरे दर्द है और चेक करा लूंगा तो पता नहीं क्या निकल आएगा।
2: वो थोड़ा
0: वो जो डर है आम आदमी का कि भाई हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये तो कुछ भी बता देते हैं, ये तो बहुत बता देते हैं, ये तो लंबा इलाज कर लेते हैं अपना, तो मतलब इस तरह के जो प्रश्न है। थोड़ा सा मैं चलते चलते साइकोलॉजिकली कहूँगा कि चीज लंबे समय में बहुत बिगड़ जाए उससे बेहतर है कि हम
2: आपको जल्दी से ही पहले से ही उसका संज्ञान लेना चाहिए।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे कमर और पीठ के दर्द में। बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बताई कि ये कमर का और पीठ का दर्द, चाहे L4 हो, चाहे L5 हो, चाहे S1 हो,

0: सर्वाइकल का हो, स्पाइन का हो, ट्यूमर तक का, आपने डॉक्टर साहब कह रहे
1: यस
0: कि
1: करते
0: स्पाइन
1: हैं,
0: में
1: आप
0: ट्यूमर भी
1: ट्यूमर
0: हो
1: भी होते हैं,
0: जाए,
1: स्पाइनल ट्यूमर भी
0: हाँ
1: होते
0: वो भी इलाज है। तो सबका इलाज है, बशर्ते आप समय रहते एक अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास पहुंच जाएं। डरिए नहीं, अपने समाधान कराइए। और कहते हैं कि बचाव इलाज से ज़्यादा बेहतर है, तो बचाव यही है कि निदान कम से कम हम कर लें कि ये समस्या जो हमारे पास है वो उसका क्या कारण हो सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता साहब, जो न्यूरो सर्जन वरिष्ठ आकाश एम्स हॉस्पिटल में विराजते, वो जानकारी दी। और निश्चित तौर पर अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं और अपनाते हैं तो एक बेहतर जीवन जीने की हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसी शुभकामनाएं दे सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहें?
1: आपने मुझे यहाँ बुलाया और लोगों को जागरूक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए ठीक है डॉक्टर, नमस्ते। श्रोता बंधु, आप अगले हफ्ते फिर इसी समय एक अच्छी डॉक्टर के साथ हम आके फिर काउंसलिंग करेंगे। ये काउंसलिंग है दरअसल, ये इलाज नहीं है, इसको इलाज मान के नहीं बैठी। इलाज आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, डॉक्टर की परामर्श से मिलेगा। तो आप आइए और उसका जो बेहतर इलाज कराइए। डॉक्टर साहब आप जुड़े, इसके लिए आपका एक बार धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं विजेंद्र गोला, आप सुनेंगे इनसे लावनी।

से सौ कोटि ने दुख गिरधारी के खटकत सदा घटके पट में द्रग चंचल कृष्ण मुरारी के खटकत सदा घटके पट में द्रग चंचल कृष्ण मुरारी के।

कटे पल पल कल्प समान सखी सुमरन चित से हितकारी के। कटे पल पल कल्प समान सखी सुमरन चित से हितकारी के। नैनन ते नीर बहे टप टप नैन

हरदम प्रसवान दुलारी के बसे द्वारका जाए कृष्ण हरि निज पूजे चरण खरारी के। नाभा में मीठे बोल सकी

बिन श्याम कोयलिया कारी के खटकत सदा घटके पट में द्रग चंचल कृष्ण।

अकुलात में रात गई सबरी मुरझाए गए फूल क्यारी के। उकुलात में रात गई सबरी मुरझाए गए फूल क्यारी के। मूर्ति बसी चित प्यारे की, मूर्ति बसी चित प्यारे की, मूर्ति बसी चित प्यारे की। चित बनी चौगनी चारी के, कोई देव

के मन मोहन मोह लियो जवसों, मन मोहन मोह लियो जवसों। पसे कुबरी कंठ कुठारी के खटकत सदा घटके पट में द्रग चंचल कृष्ण मुरारी के, खटकत सदा घटके पट में द्रग चंचल कृष्ण मुरारी के। कोई ऐसो यत

पाए सकी, कोई ऐसो यतन बताए सकी, कोई ऐसो यतन बताए सकी। मिले दर्शन कुंज बिहारी के, सब त्रास मिटे तन की मन की, लगे कंठ से राधा प्यारी के। सब त्रास मिटे तन की मन की, लगे कंठ से राधा प्यारी के। कहे चुन्नी हुलासी की पक्ष करो, कहे चुन्नी हुलासी की पक्ष करो, कहे चुन्नी हुलासी की पक्ष करो। हम भिक्षुक दया तुम्हारी के, छिदा और बद्री भक्त तेरे, सुन छोटे से मंत्र अगारी के। छिदा और बद्री भक्त तेरे, सुन छोटे से मंत्र अगारी के। मिल गए कृष्ण जब वृंदावन,

कटे कोटिन कष्ट दुखारी के खटकत है सदा खटके पट में द्रग चंचल कृष्ण मुरारी के खटकत है सदा घटके पट में द्रग चंचल कृष्ण।

ना कोई भक्तन के कष्ट हरतौ, ना कोई भक्तन के कष्ट हरतौ, ना कोई भक्तन के कष्ट हरतौ। जो जन्म जसुदा

后走，那老大后的那拉粗刀也那么猛狠，给身那后走。那你嘿沙格里面故意发抖，那你嘿沙格里面故意。

बट पैन रत कू कर तो ना बंसी बट पैन रत कू कर तो श्याम ये नद नदन ना हो तो ना अपनी माया जगत में रचतो तो दुख के सागर भजन ना हो तो ना नागिन होती न श्याम हो तो नाग काली न थन ना हो तो ना अपनी माया जगत में रचतो ना अपनी माया जगत में रचतो ना आप पृथ्वी पे जन्म धरतो ना आप पृथ्वी पे जन्म धरतो

0: ना मुरली होती ना नाच होतो तो गोपियन मन ठगन ना होतो। ना मुरली होती ना नाच होतो तो गोपियन मन ठगन ना होतो। ना मथुरा होती ना गोकुल होतो, ना मथुरा होती ना गोकुल होतो। तो श्याम सुंदर नदन ना होतो, न जातो मथुरा से कृष्ण गोकुल तो देव की दुख हरण ना होतो। न जातो मथुरा से कृष्ण गोकुल तो देव की दुख हरण ना होतो। न मथुरा होती ना गोकुल होतो, न मथुरा होती ना गोकुल होतो। तो श्याम ये नद नदन ना होतो, न जातो मथुरा से छोड़ गोकुल तो श्याम ये नद नदन ना होतो। नशा अली मग बता तो हमको, नशा अली मग बता तो हमको, नशा अली मग बता तो हमको। तो नाम पूरब दक्षिण ना होतो, न कलगी होती न तुर्रा होतो तो गोपी चुन्नी कथन ना होतो।
1: अभी आप सुन रहे थे विजेंद्र गोला से लावनी। इसी के साथ आज का ब्रज लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही

0: ही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री

0: के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में मैंने सुनेगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेके आएंगी आपके बीच दीप्ति शर्मा, जिसमें आज चर्चा रहेगी विश्व समुद्री दिवस और आहार में प्रोटीन को स्थान दें, इस विषय पर रहेगी आज की ये चर्चा। साथ ही पूजा से आप सुनेंगी वार्ता क्रम में, पहनावा क्रम में ये वार्ता, भारतीय महिला प्रधान में साड़ी का महत्व। वार्ताकार होंगी पूजा। दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और दिन में 2 आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और हिंदी समाचार सुने जा सकेंगे दिन में 2:15 पर। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। संध्या 4 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा विश्व समुद्री दिवस और सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। इस विषय पर यह चर्चा मार्गदर्शन क्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। आज का विषय कानून के क्षेत्र में कैरियर और आज के विशेषज्ञ होंगे कपिल बंसल, आपसे बातचीत करेंगे राजेश शर्मा, साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज सुनेंगे आप देश हमारो क्रम में श्रद्धा और भक्ति को शक्ति स्थल नगरकोट धाम देवी मंदिर। इस पर आलेख रहेगा रुद्र कृष्ण सिंह का।

भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा संध्या 6:30 पर। संध्या 6:50 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे श्याम सुहानी। जी हाँ, संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्याम सुहानी। श्रोता करेंगे हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412225575 और सुनेंगे अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात्रि 9:45 पर इनसाइट्स। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रामनारायण अग्रवाल की लिखी रासलीला नित्य रास, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की रहेगी।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज की विदुषी रहेंगी प्रवीण सुल्ताना। आप सुनेंगे इनसे ठुमरी गायन, जो राग पहाड़ी में निबद्ध रहेगा। साथ ही सुनेंगे आप प्रेम निवास गुप्ता का बांसुरी वादन, जो राग कहरवा में निबद्ध रहेगा। विदुषी राजलक्ष्मी का गायन सुगम संगीत में सुनेंगे आप इनसे भजन। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देशगान, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। मैंने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, कार्यक्रम लेके आई हैं आपके बीच दीप्ति शर्मा।

वक्त ने सिखाया है बदलना भी जरूरी है, हर मोड़ पर खुद को संभालना भी जरूरी है। जो बीत गया उसे मुस्कुरा कर जाने दो, आने वाले कल को सजाना भी जरूरी है। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। तो बहनों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वनिता लोक कार्यक्रम में सबसे पहले हमारा कार्यक्रम शुरू होता है एक नई जानकारी के साथ। तो बहनों, हमारा देश अनेकता में एकता और साथ ही विविधताओं का देश है। यहाँ हर दिन कुछ नया हमें याद दिलाता है। इसी प्रकार आज का दिन भी, यानी 24 सितंबर के दिन को भी हम विश्व समुद्री दिवस के रूप में याद करते हैं। ये दिन प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समुद्री परिवहन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। समुद्र और महासागरों की सुरक्षा पर ध्यान देना है। जहाजों

और समुद्री यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। समुद्री प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में समुद्री क्षेत्र की भूमिका को समझाना भी है। समुद्र, जिसे हम अक्सर दूर तक फैला हुआ विस्तार समझते हैं, वास्तव में ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इसी समुद्र के रास्ते जहाज एक देश से दूसरे देश तक खाद्यान्न, ईंधन, दवाइयाँ, कच्चा माल और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान पहुँचाते हैं। इसी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए और समुद्री क्षेत्र से जुड़े विषयों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने विषय रखा है, फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस पावरिंग मैरिटाइम एक्सीलेंस, अर्थात नीति से व्यवहार तक समुद्री उत्कृष्टता को गति देना। बहनों, इस विषय का संदेश बहुत स्पष्ट है। सिर्फ नियम और नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन्हें जमीन पर, बंदरगाहों पर और समुद्र में प्रभावी ढंग से लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि समुद्र केवल व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन की अमूल्य धरोहर भी है। इसे सुरक्षित और स्वच्छ रखें। तो बहनों, ये तो हम सभी समझ ही गए हैं कि हमारा जीवन भी समुद्र के व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी और हमारा ये संदेश पसंद आया होगा। और कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

0: बहनों, भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अत्यंत सुंदर और विशिष्ट प्रतीक है साड़ी। ये केवल पहनावा नहीं बल्कि भारतीय नारी की पहचान, गरिमा, सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में साड़ी पहनने के तरीके, कपड़े, रंग और बुनाई की अपनी अलग पहचान है। जैसे कि बनारसी, कांजीवरम, तांत की साड़ियाँ, अनेकों प्रकार की साड़ियाँ हमें जो है बाज़ार में उपलब्ध होती हैं और हम अपनी अपनी पसंद की ज़रूर खरीदारी भी करते हैं। तो इनके माध्यम से स्थानीय कला और कारीगरों की परंपरा भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। साड़ी की खासियत ये है कि इसे दैनिक जीवन से लेकर त्योहारों, विवाह, औपचारिक अवसर और अनेकों उत्सवों में हम पहन सकते हैं। ये अलग अलग रूपों में भी पहनी जाती हैं। आधुनिक दौर में भी साड़ी ने अपना महत्व बनाए रखा है। नए डिज़ाइन कपड़े पहनने के आधुनिक अंदाज के साथ ये बदलते समय के अनुरूप ढल रही हैं। तो बहनों, इसी विषय पर हम आपको और अधिक जानकारी दिलवाते हैं वार्ता के माध्यम से। भारतीय महिला परिधान में साड़ी का महत्व जानकारी दे रही हैं पूजा।
1: बहनों, साड़ी भारतीय उपमहाद्वीप में स्त्रियों को प्रमुख बाह्य पहनावा है। भारत में इसे प्राचीन समय से ही स्त्रियों द्वारा विशेष रूप से पसंद किया जाता रहा है। यह हमारे विरासत की निशानी है। यह किसी भी नारी की सादगी और शालीनता की परिचायक भी होती है। साड़ियों में जो कशीदाकारी की जाती है उसका अपना एक इतिहास है। यह इतिहास 3,500 साल पुराना है। गांव के गांव पीढ़ियों से इस काम में जुटे हैं। इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है। काम करने की बुनकरों की अपनी एक शैली है और उसी शैली के तहत डिजाइन बनाई जाती है। जिन देशों में यह शैली पहुंची, वहां की कला में साम्यता दिखाई देने लगती है। भले ही इन साड़ियों को पहनने वाली स्त्रियां धर्म और आस्था पर अपनी अलग राय रखती हों, किंतु साड़ियों में उकेरी गई कला आस्था का प्रमाण अवश्य देती है। यजुर्वेद में सबसे पहले साड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की संहिता के अनुसार यज्ञ या हवन के समय पत्नी को इसे पहनने का विधान है और विधान के इसी क्रम से ही यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनती चली।

चली गई। कालांतर से निरंतर इस पर कई प्रयोग हुए हैं। पौराणिक ग्रंथ महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग है, जब क्रोध में आकर दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को जीतकर उसकी अस्मिता को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उसकी रक्षा की। इस कथा के माध्यम से यह संकेत भी दिया गया है कि यह केवल पहनावा ही नहीं है बल्कि यह एक आत्म कवच भी है। दूसरी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व की मूर्तियों में पुरुषों और स्त्रियों के शरीर के ऊपरी भाग को अनावृत दर्शाया गया है। ये कमर के इर्द गिर्द साड़ी इस प्रकार लपेटे हुए हैं कि पैरों के बीच सामने वाले भाग में चुन्नटें बन जाती हैं। इसमें 12वीं सदी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। भारत के उत्तरी और मध्य भाग को जीतने के बाद मुस्लिमों ने जोर दिया कि शरीर को पूरी तरह से ढका जाए। हिंदू महिलाएं साड़ी को एक छोटे से अंग वस्त्र जिसे सामान्यतः ब्लाउज तथा लहंगे जिसे बोलचाल की भाषा में पेटीकोट कहते हैं के साथ पहनती है, जिसमें इसको खोसकर कमर से पैर तक एक लंबा घेरा बना लिया जाता है। महाराष्ट्र में अक्सर 9 गज की साड़ी लांगदार बांधी जाती है। साड़ी में प्रयोग होने वाले रंगों के माध्यम से स्त्री अपने मन के भावों को व्यक्त करती है। क्योंकि साड़ी का धर्म के साथ विशेष जुड़ाव रहा है, इसलिए बहुत सारे धार्मिक संकेत चिन्ह और धार्मिक परंपरागत कला का समावेश इसमें होता रहा है। लोक कलाकार जिन्होंने समाज की रूढ़ियों की वजह से धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने कला का विस्तार करते हुए गंगा यमुना संस्कृति का प्रयोग साड़ियों को डिजाइन करते समय किया और आज पीढ़ी दर पीढ़ी यह कला अपनी विरासत नई पीढ़ी को सौंपती हुई आगे बढ़ रही है। इसीलिए साड़ियों में हिंदू धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का स्पष्ट भाव देखा जा सकता है। जिन जिन देशों में धर्मानुयायी गए वहाँ की कला में कई धार्मिक चिन्ह दिखाई देने लगे, फिर चाहे इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, कलाकारी का अद्भुत साम्य यहाँ देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में जो साड़ियाँ बनाई जाती है उनके मोटिफ आध्यात्मिक हैं। आज भारत सहित अनेकों देशों में साड़ी महिलाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से पहनी जाती है। इसको भिन्न भिन्न प्रकार से पहनने की कई शैलियाँ आज मौजूद है। ऐसा जरूरी नहीं है कि साड़ी पहनने के जिस प्रकार को सबसे अधिक पसंद किया जाता है उस प्रकार से ही हमें पहने। इसे पहनने के भी कई तरीके हैं। स्त्रियां अपनी लंबाई, कद काठी और मौके के अनुसार साड़ी पहनने का प्रकार चुन सकती है, जैसे फ्री पल्लू साड़ी, पिनअप साड़ी, उल्टा पल्लू, सीधा पल्लू, लहंगा शैली, मुमताज शैली और बंगाली शैली की साड़ियों को अपनी पसंद के अनुसार पहना जा सकता है। भौगोलिक स्थिति, पारंपरिक मूल्यों और रुचियों के अनुसार बाजारों में साड़ियों की असंख्य किस्में उपलब्ध है। अलग अलग शैली की साड़ियों में कांजीवरम, बनारसी, पटोला और हकोबा साड़ी मुख्य है। मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, मधुबनी छपाई, असम की मूंगा रेशम, उड़ीसा की बोमकई, राजस्थान की बंदेज, गुजरात की गठोड़ा, पटोला, बिहार की तसर, काटा, छत्तीसगढ़ी कोसा रेशम, दिल्ली की रेशमी साड़ियाँ, झारखंडी कोसा रेशम, महाराष्ट्र की पैथानी, तमिलनाडु की कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ, उत्तर प्रदेश की तांची, जामदानी, जामवर एवं पश्चिम बंगाल की बालूचरी एवं कांथा टंगेल आदि प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी एक विशेष प्रकार की साड़ी है जिसे विवाह आदि शुभ अवसर पर हिंदू स्त्रियाँ पहनती हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और संत रविदास नगर जिले में बनारसी साड़ियां बनाई जाती है। इसका कच्चा माल बनारस से आता है। महाराष्ट्रीयन साड़ी, यह साड़ी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पहनी जाती है। महाराष्ट्र का पैठण सर इसके लिए प्रसिद्ध है। इसको बनाने की प्रेरणा अजंता की गुफा में की गई चित्रकारी से मिलती है। पैठण डिजाइन सह प्रदर्शनी केंद्र इस साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ रेडीमेड साड़ियाँ मिलती है और ऑर्डर पर भी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। पटोला साड़ी, पटोला साड़ी स्त्रियों द्वारा धारण की जाने वाली प्रमुख साड़ियों में से एक है। यह मुख्य रूप से हथकरघे से बनी होती है, यह दोनों ओर से बनाई जाती है। पटोला साड़ी में बहुत ही महीन काम किया जाता है। पूर्णतः रेशम से बनी इस साड़ी को वेजिटेबल डाई या कलर डाई किया जाता है। डबल इकट पटोला साड़ी के रूप में जानी जाने वाली बुनकरों की यह कला अब

0: लुप्त होने के कगार पर है। महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्त्रियों द्वारा प्रमुख रूप से पहनी जाती है। पहले केवल सूतिया साड़ियां ही बनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आता गया और उच्च गुणवत्ता वाली रेशमी साड़ियां आदि भी बनाई जाने लगी। गुजरात एवं भारत के अन्य शहरों से बुनकरों के परिवारों को उन्होंने यहाँ लाकर बसाया तथा उन्हें घर, व्यापार आदि की सुविधाएं प्रदान की। चंदेरी साड़ी। चंदेरी की विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियां आज भी हथकरघे पर बुनी जाती है। इन साड़ियों का अपना ही एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। पहले ये साड़ियाँ केवल राजघरानों की महिलाएं पहना करती थी, लेकिन अब यह आम लोगों तक भी पहुंच चुकी है। एक चंदेरी साड़ी को बनाने में साल भर का वक्त लगता है, इसलिए इसे बाहरी नजर से बचाने के लिए चंदेरी बनाने वाले कारीगर इसे बनाते समय हर मीटर पर काजल का टीका लगाते हैं। चंदेरी साड़ियों में पहले पुराने डिजाइन ही बनाए जाते थे, लेकिन अब इनकी डिजाइनों में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि ये दिखने में एलिगेंट तो होती है, साथ में बहुत हल्की भी होती है, इसीलिए महिलाएं इन्हें आसानी से पहन सकती है।
1: बहनों, अभी आपने सुना कि भारतीय महिला परिधान में साड़ी का महत्व, जानकारी दे रही थी पूजा। तो बहनों, पहनावा में साड़ी का अपना विशेष महत्व है ही, ये हम सभी जानते हैं। और सजना संवरना हर महिला को पसंद है। हर किसी से ज़्यादा सुंदर लगना, हर मौके पर कुछ अलग करना, ये सब महिलाओं की आदत होती है। तो बहनों, बिल्कुल सजिए संवरिए और बहुत सुंदर दिखिए और अपने आप को खुश रखिए। हो सकता है कोई आपको देखकर ये भी कहे कि तेरी आँखों में मैं लिख नहीं सकता, तेरी खूबसूरती के आगे कोई टिक नहीं सकता। तू चाहे तो मुझे मुफ्त में खरीद ले, कोई और चाहे तो मैं

बहनों, रोजाना की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में अपनी गतिविधियों के साथ साथ नियमित जीवन शैली और स्वस्थ संतुलित आहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने दिन को योग, व्यायाम, ध्यान, अर्चन, वंदन के साथ शुरू करके आहार पर भी ध्यान देना जरूरी है। शरीर को ऊर्जा आहार के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, दही, मेवे आदि शामिल होते हैं। तो आहार में हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसलिए अपने दैनिक आहार में पर्याप्त प्रोटीन को शामिल करें। दाल, राजमा, चना, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, मूंगफली, बादाम, मेवे और अंकुरित अनाज के द्वारा हम पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य रूप से काम करता है। शरीर में एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है। पेट भरा हुआ महसूस होता है और बच्चों, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए विशेष रूप से जरूरी होता है। तो उम्र बढ़ने पर पर्याप्त प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। एक पंक्ति में अगर हम समझें तो संतुलित आहार में प्रोटीन को दें स्थान, स्वस्थ शरीर और मजबूत जीवन की बने पहचान। तो आप अपनी उम्र और ज़रूरत के अनुसार अपना आहार लें, साथ में विहार भी करें, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें और निरोगी रहें। तो बहनों, वनिता लोक कार्यक्रम में उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और इसके साथ ही चलते चलते सुन लेते हैं एक गीत।

तो बहनों, आज का वनितालोक कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि घर को व्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। तो बहनों, गैस का चूल्हा, जिस पर कि रोजाना के तेल मसाले इनके दाग जम जाते हैं, उन्हें साफ़ करने की कोशिश करें। अगर नहीं साफ़ होते हैं तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड मिलाकर कपड़े से पोंछने पर दाग आसानी से निकल जाते हैं और रसोई की सफाई भी इसी प्रकार हो जाती है, क्योंकि साफ़ सफाई का विशेष महत्व है और स्थान भी है। फ्रिज की ताजगी भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज में खाने की चीज़ों को ढककर रखें, खराब या पुरानी चीज़ों को समय समय पर निकालते रहें। फ्रिज में तेज़ गंध वाली चीज़ों को एयर टाइट डिब्बे में रखने से दूसरी चीज़ों में गंध कम फैलती है। और समय समय पर अपने कपड़ों को धूप दिखाएं और उन्हें साफ तरीके से अच्छी तरह से तह लगाकर अलमारी में रखें, जिससे कि आपका घर व्यवस्थित और सुंदर दिखेगा। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ अनुमति दीजिए दीप्ति शर्मा को। नमस्कार।

मैंने सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेके आई आपके बीच दीप्ति शर्मा, FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन।

मन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत फिल्म खुदा गवाह से। आवाज है इस गीत में मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म खुदा गवाह में अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज़ कविता कृष्णमूर्ति को, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत तो प्यारीलाल का था, और आइए सुने कार्यक्रम में का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को लिया हमने फिल्म बचपन से, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को फिल्म बचपन में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, दिन में 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी, हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा विश्व समुद्री दिवस और चर्चा रहेगी सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम विषय पर। साथ ही मार्गदर्शन क्रम में आज कानून के क्षेत्र में कैरियर, इस पर आज के विशेषज्ञ होंगे कपिल बंसल, आपसे बातचीत करेंगे राजेश शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, उसके बाद हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे।

0: He said a limited ceasefire would not end the war, but could ease some pressure caused by the conflict and potentially provide a starting point for broader talks. The United States and China have agreed to extend their trade war truce by 2 months, giving both sides more time to work towards a potentially broader economic agreement. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said the arrangement known as the Busan Agreement will now be extended until January the 10th. The original truce was due to expire on November the 10th, following a deal reached by U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping in South Korea last October. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The government has reduced the basic customs duty, BCD, on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers, mitigating inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. Defending champions India have stormed into the men's Kabaddi semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Parmo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storm into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे।

0: लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
0: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
2: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
3: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
1: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं
3: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओं, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा

0: प्रोत्साहन का कारण होते हैं।
1: जी।
0: पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: जी।
0: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
1: श्रोताओं, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
0: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
1: जी।
0: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
1: लेकिन श्रोताओं, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
0: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी।
1: जी।
0: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
1: बिल्कुल।
0: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
1: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
0: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
1: जी।
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा।
1: जी।
0: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
1: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
0: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओं, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
1: जी।
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
1: जी।
0: यही तो है नवाचार।
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
0: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
1: जी।
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
1: बिल्कुल।
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
1: जी। आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो वो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
0: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा दो की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि

0: हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए, सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
5: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
2: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
5: अच्छा,
2: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
5: अच्छा,
2: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
3: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
2: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
3: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया।

0: और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा,
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह।
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने

0: ने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था।
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
2: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया, और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारी प्रथम सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी दूसरी सभा में 3:58 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: टू सोल्जर्स के आज के खास एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो। कारगिल की बुलंदियों पर लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज भी भारत की विजयी शौर्य गाथा के रूप में याद करती है। हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य, निष्ठा और उनके अमूल्य बलिदान की कहानी। संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे खास मेहमान कारगिल युद्ध के एक ऐसे योद्धा, एक डैरिंग सोल्जर हैं जिन्होंने 25 साल तक इंडियन आर्मी आर्टिलरी में अपनी सेवाएं दी। वो हेलीकॉप्टर पायलट रहे और अनगिनत मिशंस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, देश और साथी जवानों की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभाला। ऑफसेट पॉलिसी 2006 के रचनाकार रहे। उन्होंने नेक्स्टर फ्रांस और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जय हिंद। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटीफुल शो टुडे।
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो सर, हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा। इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था, तो आपकी शुरुआत ही, आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा। आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट्स और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं, तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की, हम बच्चों के ऊपर बिल्कुल ऑनेस्ट शुरू से सिखाया है कि आप सिंसियर रहो लाइफ के अंदर, ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ सीधी लाइन में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था। तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर। हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहाँ भी काम किया काफ़ी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो हम कर सकते थे माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें।
0: जी सर, हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई तो क्या पहले से ही कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है, और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है? कैसी हुई शुरुआत, आपने आई में ज्वाइन किया?
1: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना, सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना, कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज़ की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये एनवायरनमेंट विजावी आउटसाइड जो मैं देखता था। जैसे जो मुझे तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी, पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर रही है। फिर मैंने आर्मी के दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहाँ पर हमसे चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है, तो मैंने आर्टिलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूँ। फ्लाइंग मेरा संभव पैशन था और सिर्फ आर्टिलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टिलरी चुना।
0: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है, तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
1: मैं फ्लाइंग पे आने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्लाइंग से आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया, 92 मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में। उसमें मुझे मौका मिला काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने में, चाहे आप पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए, तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज़्यादा मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था। पर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले, फ्लाइंग में फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशन पे, आगरा, नासिक, कई जगह पर फ्लाइंग करता रहा मैं। बाद में मेरे को 2 साल मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करने का। सियाचिन ग्लेशियर का फ्लाइंग का मतलब है ये मोस्ट हॉस्पिटेबल टेरेन इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर, जहां टेम्परेचर होता

0: है -50 से -60 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की बात करो तो, वहां की फ्लाई मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी जो थे वो चीता हेलीकॉप्टर थे
1: जी.
0: जो हमारे कुछ शुरू शुरू में एक्सीडेंट भी थे, हमारे से पहले एक्सीडेंट्स भी होते थे, तो फ्रेंच वालों को बुलाया गया था कि यहाँ पर आपके एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं. कहते हैं ये जो आप हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा रहे हो इस जगह के लिए नहीं बना है ये. पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर्स हमारे आर्मी के भी और एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे. और सुबह से लेकर शाम तक जो हमने काम किया 2 साल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर. कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन रिलेशन में थी, मेरे को लगता था मैंने जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है.
1: जी सर, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पर और ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना, और जिस तरीके के जो खतरनाक एरियाज़ में, और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊंची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीज़ें, और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था. तो जैसा कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे, तो वही चीज़ मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज़ थी जो आप, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश, वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे. तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं. हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, नंबर है 9868107070. और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के. और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर.

0: 102.6 एशिया नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह की टेरेन में इनको मौका मिला काम करने का, वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे इस शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर, हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था, हेलीकॉप्टर पायलट जब आप बने और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक मतलब बहुत टफ कहा जाए टेरेन होती है, कैसे रहा? मतलब शुरुआत तो जाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे, डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था
0: जी,
1: तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाइंग के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे, मतलब उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
0: सर, ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग, उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
1: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
0: अच्छा,
1: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था, जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी बाकी काम के लिए भेज दिया गया।
0: तो
1: पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
0: सर, आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
1: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60 मैंने इसलिए बोला, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहां पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आप ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पे अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
0: तो सर, उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
1: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में, सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं, जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों के नीचे लेके आनी, मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम, तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30 to 5:30 हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी, 11-12 के बाद हर रोज, और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2, P3। अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। तो हेलीकॉप्टर पायलट का ये पूरा मिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
0: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके?
1: एब्सोल्युटली।
0: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
1: तो बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग करना है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे आप अगर सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये

0: सकते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे,
1: ओके
0: किस ताकि जो पायलट ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाड्रन में कहीं कोई वो होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: क्रैश होता है,
1: जी
0: तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के लिए।
1: क्या बात है सर, ये
0: ये
1: चीज
0: ट्रेनिंग
1: पहली
0: का
1: बार।
0: तरीका है।
1: जी
0: तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहाँ सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है
1: जी
0: उसके उसको राशन कैसे पहुंचाना है। तो बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है।
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी तो सर, ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
0: ऐसा है, जब हम लैंड करने जाते थे तो जो जो 17,000 फीट 18,000 फीट पे,
1: जी
0: जहाँ हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है।
1: जी जी आपने
0: आप
1: बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर
0: इनकार कर देता है फ्लाइंग की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर।
1: अच्छा,
0: उनके बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करे हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तो एच क्या करते हैं बाहर निकल के, एच को पेंट तो है नहीं, कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर आ सके। हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी। तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रेवास होती है।
1: मतलब
0: तो एक बार आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो एयर बस्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता,
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो खतरा
0: एब्सोल्युटली
1: उसका सामना भी करना है और
0: हाँ,
1: मिशन भी पूरा करना है, और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है।
0: कुछ सेकंड मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते।
1: अच्छा,
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअलिटी को नीचे आना, एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में, कुछ सेकंड्स भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था। तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड्स, मे बी अप टू अ मिनट और टू, तो
1: मतलब
0: हमको इमीडिएटली वापस
1: ये, ये, ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है।
0: हाँ,
1: और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है, और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना।
0: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स में होते थे। मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो, थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है।
1: तो सर, ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था, कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी गहरी दरारें जो
0: क्रेवास,
1: उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं।
0: बिल्कुल।
1: तो दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
0: एयरबस्ट एम्यूनिशन
1: है, कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
0: एब्सोल्युटली एवरी डे।
1: सर, ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से, चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ, स्कैरी और प्योरली मैं कहूँ सेटिस्फाइंग जोश और जुनून, देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था, मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा अगर कैरियर रहा
1: जी,
0: है ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में, सबसे ज्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला, फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
1: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश से जुनून से भरा हुआ। सर, आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं।
1: क्या बात,
0: कभी भी नहीं।
1: तो सर, ये जो आपकी बात है, ये जो डेयरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बात सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो ये जो
0: सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये मैं नहीं हूँ, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बारी ट्रेनिंग में एक बार मेंटल हमारे को ना फिजिकली टफ तो जितना होना होना है, हमारे को मेंटली बहुत टफ बनाया जाता है। अब कोई भी ऑफिसर मेरे को, तो मैं तो फॉर्चुनेट था, मैं वहां पर था, मेरी जगह और भी भाई पायलट है मेरे फ्रेंड, जिनको सीएचए में नहीं फ्लाइंग करने का मौका मिला।
1: अच्छा,
0: वो भी अगर मेरी जगह होते तो वही करते जो मैंने किया।
1: क्या बात है सर, मतलब सबकी एक ही मेंटालिटी होती है, एक सोच। और सर, जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से देश सेवा से भरपूर, और जो एक होता है ना कि अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए आप, तो जनता से भी आप कुछ, जैसे एक एक सोल्जर है तो वो चाहता है कि उसको भी तो वो अप्रिसिएशन और वो जो है ना वो प्यार मिलना चाहिए।
0: देखो, मिलता है। अब आप जब जनता देखती है कि हमारे जनता को कब पता चलता है, जब से कारगिल जैसी लड़ाई होती है
1: जी,
0: जैसे सिंधूर जैसी लड़ाई होती है, ऑप्शन दूर होता है, तब उनको लगता है कि कुछ हो रहा है आर्मी के अंदर। उसके

0: अलावा तो जनता सोचती है अभी फौज आर्मी वहां बैठी है, अपना काम कर रही है, अपनी तनख्वाह ले रही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं तभी हम आराम से बैठते हैं।
1: और जैसे आपने कहा कि वो पूरा डेडिकेशन उनका होता है और सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत। तो सर हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं।
0: आपकी मर्जी, आपकी
1: सर। मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है सर यश शिंदे, मुंबई से इन्होंने मैसेज किया है।
0: इसके अलावा
1: जय हिंद सर जी, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से। इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: ऐसा है, हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते हैं। जो हम यूज करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम रात को फ्लाइंग नहीं करते, पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
1: अच्छा,
0: 3 दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को, क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिर जाए, इसलिए रात को वैसे ही फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है, मिशन होता है, तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन पाए,
1: ट्रेनिंग है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग करना मुश्किल हो जाता है।
1: जी ये है सर, जय हिंद। मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है, जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर। जय हिंद सर, इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा
0: सर। थैंक यू वेरी मच सौम्या,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने।
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम। आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है। जय हिंद। ग्राम गेंडा खाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार।
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का, गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली AIR 102.6, सल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर।
0: थैंक यू वेरी मच सर जी।
1: और ये है विकास थापर सर, DLF 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको, वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ DLF 2 फॉर मेनी इयर्स, ही इज आल्सो प्रेजिडेंट ऑफ आर RWA DLF 2।
0: थैंक यू वेरी विकास जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी जी,
0: तो ये थैंक यू विकास जी।
1: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये है प्रवीण जी।
0: प्रवीण जी, ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, और टेस्ट पे आप क्लियर हो जाते हैं। जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाता है।
1: सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमें जैसे इन लोगों ने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहां से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए
0: ये आर्मी पायलट की बात कर रहा हूं,
1: आर्मी पायलट की। जी जी जी, एयरफोर्स की नहीं,
0: नहीं नहीं, आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स, एयरफोर्स का अलग,
1: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है।
0: जी जी,
1: तो सर सभी को IMS ही होना
0: पड़ता? नहीं ऐसा नहीं, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है, उससे पहले NDA होता है, कोई NDA के बाद हम 3 आर्म्स में चले जाते हैं, कोई नेवी चला जाता है, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी में चला जाता है।
1: राइट सर।
0: मैंने चूज किया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में किया था।
1: जी,
0: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो, अगर एयरफोर्स में, अगर NDA में जाते हो तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हैं तो चले जाएंगे।
1: राइट सर। सर एक मैसेज और है ये, और जय हिंद सर मेरे पास, अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था, नाम लिखा था, जगह नहीं लिखी थी, उन्होंने दोबारा मैसेज किया।
0: थैंक यू वेरी मच
1: जी। और त्रिचुरापल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है, आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का, और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी के साथ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए ये एक्साइटिंग ट्रैक का भी सिलसिला रहेगा जारी, आप हैं शाहिद के साथ।

0: 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ आप सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको पुकारना चाहूं, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था, वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जब हेलीकॉप्टर पायलट के करियर के बारे में बात करी तो वो अपने आप में बहुत ही डायरिंग और अमेजिंग था, तो जब शहीद जो हो जाते हैं हमारे सिपाही तो उनको
1: मैं बल्कि बताऊं, अच्छा आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब एक बार

0: ऐसा इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जब हम उड़ा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में, तो हमें पता चला एक गन पोजीशन थी जिस पे एवलॉन्च आ गया था, तो वहां के 14 सोल्जर्स उनके वो उनके नीचे दब उसमें चपेट में आ गए। तो हमको बोला गया कि वहां पर जाइए और उनको लेके आइए नीचे, उनके बॉटल रिमेन्स को। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ के अंदर जब हम हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे हमारे उधर, तो वहां पर जब ये लोग थे और पूरा बर्फ के नीचे से लोग निकाल के रखे हुए थे साइड पे उन्होंने उसके ऊपर, तो उनको हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर की वाटर ड्रमेन से मैंने पिछले हेलीकॉप्टर में अपने डाली, हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली, तो हेलीकॉप्टर को हम नीचे लेके आते हैं। हमारा एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि वाटर ड्रमेन फैमिली तक पहुंचे ताकि उनके अच्छे से लास्ट राइड्स हो सके। जब मैं पहली बार मॉर्टल रिमेन्स लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात की है ना, मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में, और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के मॉर्टल रिमेन्स पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था। जब हम लैंड कर रहे थे जहां पर, पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स जेसीओस खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट मॉर्टल रिमेन्स। एक एक करके हम सब मॉर्टल रिमेन्स को नीचे लेके आए, फिर वहां से आगे Mi-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी मॉर्टल रिमेन्स ये फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत हार्ट
1: टचिंग। आपके साथी सिपाही जवान जब वो शहीद हो गए, तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
0: एब्सोल्युटली
1: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी।
0: हाँ जी,
1: और शहीद हुए। सर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने ही हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझे हम के कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
0: शायद मैं जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था, मुझे पता है ज्यादा हम लोग के पास टाइम अभी नहीं है, बेशक आधे घंटे से ज्यादा। कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है
1: जी।
0: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इस कारगिल का ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और ये इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है। हम सियाचिन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाई, डॉक्टर्स बैठे, तो हम कारगिल में हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी। मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब धोखा दिया इंडिया को, अगस्त 1908 की बात कर रहा हूँ, कारगिल 99 की बात आपको याद होगा, 98 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जब इंडियन आर्मी अब हम नीचे उतर आए, वो लोग पीछे चले गए, हमारे आने के बाद वो लोग वापस आए अपने एरिया से, हमारे एरिया में आके हमारी हिल्स पूरी, उन्होंने हिल्स कैप्चर कर ली थी। तो वो जब कैप्चर कर ली, तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, अगर आपका नाम याद हो, कैप्टन सौरभ कालिया
1: जी।
0: ये सौरभ कालिया अपने 4 जाट के थे, 5 जवानों के साथ पहले पेट्रोल के लिए जा रहे थे, तो उनको कैप्चर किया था, उनको टॉर्चर करके डेथ किया, मतलब मारे गए थे बेचारे। और सेक्टर्स में भी हमको बाकी जो गडरियाज वगैरह, उन्होंने बताया कि आपकी तो पूरी दूसरी तरफ की आर्मी बैठी हुई है, ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आनी शुरू हुई। तब हमें पता चला मार्च 1999 में कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे एरिया में बैठे हैं। तो हमको बोला गया कि हमारी यूनिट, हमारे कर्नल गुप्ता हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनका 2IC था, हमको बोला गया कि आप अपने यूनिट लेके पहले बोफोर्स रेजिमेंट आप कारगिल में जाइए। हमारी 6 गन्स सियाचिन में ऑलरेडी फायर कर रही थी, 6 गन्स कारगिल में ऑलरेडी थी रेजिमेंट हेडक्वार्टर, प्लस 6 गनों को और बोला गया आप जल्दी से जाइए। पहली बोफोर्स रेजिमेंट थी हमने जो क्रॉस किया
1: जी। तो कारगिल युद्ध के योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, 1999 में जब कारगिल में तोपों ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, उस समय आप अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड थे सर, राइट?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप।
0: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9200 गोले फायर किए थे हमने। हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफोर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी। जैसे मैंने आपको बताया, 6 गने हमारी सियाचिन में थी और 6 गने कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल 2 साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किया, ये रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में नहीं किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती, हम पास में बैठे होते तो

0: भैरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ। आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे,
1: एग्जैक्टली
0: उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स द
1: बिल्कुल
0: एंड जाके। तो
1: बिल्कुल।
0: हमने लगातार फायरिंग किया।
1: तो वो सर जो मोमेंट्स रहे हैं वो भी अपने आप में, जैसे आपने बताया कि वो आपके सामने सब कुछ हो रहा था, वो वॉर जोन में जब आप थे, तो वो जो कारगिल का जो एक्सपीरियंस आपका था उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ जो सिचुएशंस थी वो क्या थी उस वॉर जोन में? और एक चीज़ और भी थी जो मैं जानना चाहता था आपसे, मैंने जो आपसे पूछूंगा कि व्हाट वर दी रेड हिल्स, रेड हिल्स क्या हैं?
0: मैं
1: जी
0: बताता हूँ आपको।
1: जी
0: ऐसा है कि आप जल्दी से संक्षेप में बताता हूँ। तो हमने कारगिल क्रॉस किया था इन मंथ ऑफ मई, जबकि पूरी जुजीला पास 15-15-16 फीट बर्फ थी।
1: ओके
0: हमको बोला गया था अभी निकलो वहां से, बॉर्डर रोडवेज काट रही थी बर्फ और हमारी गने आगे जा रही थी। फर्स्ट रेजिमेंट टू गेट इन
1: अच्छा
0: टू द कारगिल। जब
1: राइट
0: हम द्रास पे पहुंचे तो वहां पर कमांडर उस एरिया के आके आपको बताया, ये तो सब एरियाज में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं।
1: ओके
0: हम लोग सब हैरान हो गए। उन्होंने हमको मैप दिखाया तो सब हिल्स के ऊपर, हमारी जो हिल्स है इंडिया के हिल्स के ऊपर, पाकिस्तानी आके बैठे हुए थे। तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था वो।
1: अच्छा
0: हमारे डॉक्टर क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं,
1: वो
0: टाइगर
1: ऑक्यूपाइड
0: होल
1: हुए।
0: हो या 5.1 5140 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो उनको निकाला और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे हमारी बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स बैठे हैं,
1: जी
0: तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारी एरिया से। सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है
1: तो
0: इनको।
1: इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
0: हमारी
1: इसलिए उनको
0: हिल्स
1: रेड हिल्स का नाम दिया गया।
0: मैंने रेड हिट्स का नाम दी थी। मैंने बोला है कि उनको
1: अच्छा
0: पूरा रेड मार्क था मैप के
1: ओके
0: अंदर,
1: एनिमी
0: पूरा एरिया पूरा हिल्स रेड मार्क थे। रेड मार्क्स मीन एनिमी और
1: ऑक्यूपाइड
0: ब्लू मीन्स हम। अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है। दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग
1: जी।
0: रेड।
1: सर वहां के कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
0: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारे रोड्स को देखती थी, मतलब
1: अच्छा
0: रोड देख रही थी, और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए। उन गन्स को बिना आवाज किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। और मतलब
1: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता था।
0: होता था, वो फायर करते थे,
1: अच्छा
0: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ। रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, या तो छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी रोड पे,
1: बिल्कुल
0: इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं। मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था, पर हर बंदे में इतना जज्बा था। और हमको बोला गया कि जैसे पता चला ज्यादा बुरा हाल है तो आप आगे चलिए, और वो फोर्स की यूनिट और आ रही है, हमारे बाद 9 यूनिट और आई। तो ग्रेजुअली हम लोग आगे आगे ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो गया। तो उन्हीं दिनों में हमारे को पता चला इस जगह से बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमारी बोफर्स ने वहीं से दराज से एंगेज किया। तो पहले कुछ दिनों के अंदर 16 से 19 मई की बात है, हमने 17 पाकिस्तानी सोल्जर उन दिनों में मार दिए, उन दिनों में उनका कैजुअलिटीज कर दी।
1: अच्छा
0: और जहां से फायर आ रहा था मीडियम मशीन गन थी उसको भी उड़ा दिया। और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे करके तो बहुत सक्सेस
1: तो
0: मिली।
1: मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स जो जवान थे उनका जोश पूरी तरीके से हाई था और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकालें।
0: शायद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात की,
1: जी
0: ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
1: जी
0: इन्फेंट्री अटैक जाता था,
1: ओके
0: इन्फेंट्री अटैक जाता था, पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी। आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है तो इन्फेंट्री बटालियन को काम दिया जाता। तो वो हिल्स होती है ऊपर,
1: जी
0: जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना।
1: बिल्कुल
0: कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह।
1: बिल्कुल
0: हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को पूरा पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके।
1: ओके
0: हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे तब वो हमारे लोग अटैक करते थे। तो ऐसे होता था कि हर पता चलता आज यहाँ इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ क्या सक्सेस सिग्नल, हमारे जो लाइट जो वेट कर रहे थे कि
1: अच्छा
0: हमको सक्सेस मिला है कि नहीं।
1: जी
0: दिस वाज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे
1: एवरी डे। और सर ये लगातार बहुत दिन
0: ये लगातार चलता रहा, ये मतलब जून تک اینڈ تک چلتا رہا.
1: اور سر اس دوران جو فوجیوں کا جو منوبل تھا.

0: आपसे भाइयों का,
1: बहुत
0: मामों
1: हाई
0: का,
1: था,
0: बहुत
1: बहुत
0: हाई
1: हाई था,
0: था।
1: बहुत हाई
0: तो
1: था।
0: सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे? जैसे परिवार से तो बिल जाहिर याद आती है, तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे सर?
1: ऐसा है, हमारे को ना हफ्ते में एक बारी फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था। थोराया
0: अच्छा,
1: सेटेलाइट फोन है,
0: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता है।
1: स्पेशल। तो थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता है। आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बारी बात कर सकते हैं। हमारी फैमिली तो सारी बाप बाप वाइफ बच्चे सारे
0: जी जी
1: टीवी से जुड़े होते थे, शायद कुछ खबर आ जाए। तब
0: जी
1: मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में।
0: बिल्कुल
1: तो थोराया फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बारी बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे। वो सुन लेते थे, माँ बाप आवाज़ फैमिली
0: अच्छा
1: सुन लेते, को अच्छा
0: जी
1: लगता।
0: जी
1: इधर से चिट्ठियाँ इतनी आनी शुरू हो गई। शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है।
0: जी
1: पूरा देश, ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता है, ये टीवी की लड़ाई थी। टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई। तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए,
0: अच्छा
1: अच्छी अच्छी चीजें। पर उन्होंने क्या हुआ, सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया। जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का,
0: वहां पर
1: वहां पर
0: गिरफ्तार
1: चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर
0: जी।
1: उनको रोकना पड़ा।
0: अच्छा, तो सर ये फिर मोमेंट, मतलब जाहिर जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है, लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए
1: बहुत
0: परिवार से।
1: मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन।
0: जी,
1: मतलब हर छुट्टी तो सबकी कैंसिल
0: छुट्टी तो
1: थी।
0: कैंसिल
1: मैं
0: सबकी
1: आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है। एक
0: जी
1: हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे
0: जी
1: पास, कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, कि कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है, छुट्टी जाना। कहते सब मजाक कर रहे हैं तो छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में। कहते बहुत जरूरी बात है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई। कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया। चार पांच गया था 15 दिन के लिए।
0: अच्छा,
1: चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के
0: अरे
1: अंदर। हमने पूछा तुम वापस कैसे आ गया? कहता साहब मैं गांव पहुंचा, बहुत जूते पड़े मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे। कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा है देश और तुम घर में अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को हम संभालेंगे, तो वो अपना देश के लिए लड़।
0: क्या बात है सर, क्या बात है
1: और मेरे साथ हुआ शायद जी, मेरे साथ हुआ ऐसा। मिसिस चोना मेरे
0: जी
1: बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी,
0: जी
1: डीपीएस आर
0: जी
1: के पुरम की,
0: जी
1: उनकी मुझे चिट्ठी आई कि कर्नल साहब आप देश के लिए लड़िए, बच्चे मैं आपकी संभालूंगी।
0: क्या
1: मिसिस
0: बात
1: चोना
0: है
1: ने मेरे को चिट्ठी लिखा।
0: सर, ये है मतलब ये जो ना जज्बा
1: पूरा
0: देशवासियों
1: देश
0: का
1: आपके साथ
0: अपने
1: खड़ा था,
0: सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के
1: पूरा
0: साथ।
1: खड़ा होता है देश आपके साथ।
0: बिल्कुल सर, आपने बात की चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को, सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है या वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है? मुझे था ये जहन में कि मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: 1.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं। तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं? जाहिर है सब बहुत ही वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशन थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी
1: हैं। बिल्कुल है, मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उन्होंने का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर में। बटालिक सेक्टर के कमांडर थे, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया हमारी यूनिट में, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी। तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया। प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड्स भी मिले। एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है, उनको सेना मेडल मिला। एक मेजर दहिया, उस टाइम मेजर दहिया, बाद में कर्नल दहिया, उनको और एक सी विजयन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले। मेजर झुलका मिला, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला। एक कैप्टन अतुल है, उनको GOC NC कमेंडेशन कार्ड मिला। हमारी खुद यूनिट को नदर कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला। तो हमारी काफ़ी यूनिट ने काफ़ी अचीवमेंट

0: बहुत अचीवमेंट,
1: बहुत अच्छा काम किया।
0: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने ये जो सर्विस दी अपनी एज एन हेलीकॉप्टर पायलट, और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन 5 साल और उससे ज्यादा, तो उसके बारे में थोड़ा सा
1: मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफ़ी अच्छे काम किया। मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया। DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर, बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद। प्लस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में था तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया। जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफ़ी काम किया। 5 साल का बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने उसके बाद फिर फॉरेन अपनी, क्योंकि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी, आर्मी छोड़ने की। अच्छा। दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे, तो मेरे को इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया। मैं जॉब शुरू किया।
0: आपने फिर सर आपने कोविड के दिनों में भी बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीजों में भी, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में? बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना हुआ था।
1: शायद मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जब मेरी जॉब खत्म करने के बाद मैं अपने, तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल मैंने नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए। समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे। मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए, तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला, जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की। फिर कोविड का टाइम आ गया। कोविड के टाइम पर ऐसा था जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे, वो पूरे दिल से, पूरे जोश से घर से निकलते थे। पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम लोग, किसी को तो आगे आना था, तो हमारे RW के सारे मेंबर्स सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, गेट्स को मैनेज करना किसी। और कोविड ऐसी चीज़ थी, आदमी हर बच्चा ये चाहता मेरे माँ बाप घर से ना निकले, माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी, तो हम लोगों को राशन पहुँचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन, जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी। हमारी कॉलोनी में हमारे RW ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्परेरी कैंप लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया, लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को, ओल्ड कपल को, किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन, खाना पीना, हम उनके घर में पहुंचाते थे, तो बहुत सेवा की। तो उससे क्या, मैं एक के बाद मैं 3 टाइम में RW में लगातार आता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे चाहते भी है कि मैं वापस आऊं। तो
0: सर उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
1: हाँ जी, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूं तो मैं जुड़ा हूं, जब चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला जाऊं।
0: लेकिन सर आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया, वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो, तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी। किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीजों के लिए, भले ही वो वॉर जोन में आप थे, तब आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स,
1: मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरे मतलब मेरी वाइफ रश्मि, मेरे 3 बच्चे लड़के हैं, मतलब 3 बच्चे हैं अंकित, शिवेन, और मेरी बेटी साहिबा है, और मेरी डॉटर रिलोदृषिका है। हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है उन लोगों।
0: बिल्कुल सर,
1: I'm quite a blessed man।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
1: Absolutely.
0: तो यहाँ पर सर मैं अभी, तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जरूर मैं आपसे शेयर करूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ये टेक्निकल ग्रेजुएट है, ये कहते हैं कि सर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट, विच ब्रांच ऑफ आर्मी कैन आई ज्वाइन?
1: He can join every branch. As an engineer, he can join as a technical. When okay. he comes, there's a special called technical branch in the army. He can apply for that. Okay. And as an engineer, he can join that technical branch.
0: Right, sir. और सर ये मैसेज है मंसूर अली का बीकानेर से, और ये आपको नमस्कार करें। नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी।
0: और ये है कर्नल रिंदा, इज वेरी हंबल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल, सल्यूट टू हिम, रिगार्ड्स। विनोद तायल है सर, ये डीएलएफ गुड़गांव से। प्लीज एयर दिस मैसेज ऑन योर FM। आई एम ऑनलाइन, थैंक्स।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: कर्नल नंदा, वाह वाह कर्नल नंदा, ग्रेट ऑफ यू।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: मल्टीपल मैसेजेस इन्होंने किए सर आपकी तारीफ में।
1: और ये है तारीफ क्या था, आपस का प्यार है सबका ही।
0: बिल्कुल सर। ये सर हैं डॉक्टर दीपक जोशी।

0: सर ये अच्छा, ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं। और ये है सर, नमस्कार, जय हिंद यशवंत, आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये।
1: हाँ जमशेद जी,
0: और सर ये है, हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सैल्यूट, और देश हित दशरथ ना रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है, बहुत प्यार से सैल्यूट करता हूँ मैं। कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद। तो सर
1: सरावत
0: ये
1: साहब, थैंक यू,
0: जी, ये आपको सैल्यूट करते हैं
1: थैंक यू
0: और
1: सर।
0: कहते हैं, सोल्जर भाइयों का हमारा सैल्यूट, हमारा भारत माँ के रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं, फिर इसके बाद समय बिल्कुल खत्म। मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत, रंजीत मस्ताना, रायबरेली। तो सर
1: थैंक
0: ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए, प्यार का इजहार है सर हमारे इस शो में। और हम आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर चलते
1: थैंक यू,
0: चलते।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, जोश से भरपूर हमारे सोल्जर हमारे साथ रहे सर, बहुत
1: थैंक
0: बहुत
1: यू गिविंग
0: धन्यवाद।
1: मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक। थैंक
0: थैंक
1: यू
0: यू सर,
1: मैम,
0: थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनवर की आवाज में जनता हवलदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह, संगीत राजेश रोशन का था। आइए अब सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में अमर प्रेम फिल्म का गीत, जिसे लिखा

सचिन देव बर्मन की आवाज में अमर प्रेम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत राहुल देव बर्मन का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म सौदागर से। आवाज मन्नर डे की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन के।

मन्नाडे की आवाज में सौदागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था रविंद्र जैन ने और संगीत भी इन्हीं ने तैयार किया था। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आदमी से। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार हैं शकील बदायबनी और संगीत नौशाद का है।

मोहम्मद रफी की आवाज में आदमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी की कलम से निकले हुए ये शब्द थे जिन्हें सुरबद्ध किया था नौशाद ने। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर से। आवाज लता मंगेशकर की है, गुलशन बावरा के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की बात तो एक ऐसे संसार की जो हमारे शहरों से दूर दिखाई देता है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है, समुद्र का संसार। आज 24 सितंबर को मनाया जा रहा है विश्व समुद्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के अनुसार इस वर्ष का विषय है फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस पावरिंग मैरिटाइम एक्सलेंस, अर्थात नीति से व्यवहार तक समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग समुद्र को शायद छुट्टियों, लहरों और समुद्र तट के खूबसूरत दृश्यों से जोड़ते हैं, लेकिन समुद्र इससे कहीं अधिक है। दुनिया के बड़े हिस्से का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। जहाज केवल सामान नहीं ले जाते, वे हमारे लिए ऊर्जा, खाद्य पदार्थ, कच्चा माल और रोजमर्रा की जरूरतों से

जुड़ी वस्तुओं को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं, और इस विशाल व्यवस्था के पीछे होते हैं समुद्री नाविक, बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारी, जहाजों के अधिकारी, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ और अनेक दूसरे कर्मी। विश्व समुद्री दिवस हमें ये याद दिलाता है कि समुद्री परिवहन सुरक्षित, संरक्षित, कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने चाहिए। आईएमओ का इस वर्ष का संदेश भी यही है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं, उन्हें जमीनी स्तर पर समुद्र में और रोजमर्रा के संचालन में प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। दोस्तों, समुद्र हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है, सहयोग का। समुद्र किसी एक देश की सीमा में बांधा नहीं है और न ही इसे बांधा जा सकता है। एक जहाज कई देशों के समुद्री क्षेत्रों और बंदरगाहों से होकर गुजर सकता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और व्यापार की सुचारू व्यवस्था के लिए देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। और आज जब हम विश्व समुद्री दिवस मना रहे हैं, तो समुद्र को केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार और मानव जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण संसार के रूप में भी समझें, क्योंकि समुद्र की सुरक्षा केवल समुद्र की सुरक्षा नहीं है, यह हमारी साझा दुनिया की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है।

0: डेली सिक्स फिल्म से जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में ये कव्वाली आपने सुनी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मार्गदर्शन के क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक साक्षात्कार। विषय है कानून के क्षेत्र में करियर। कपिल बंसल से बातचीत कर रहे हैं राजेश शर्मा।
1: युवा साथियों, जैसा कि एक आम युवा के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, इंटर क्लासेस करने के बाद एक ऐसी स्थिति हमारे सामने होती है जब बहुत से क्षेत्र हमारे आगे होते हैं और हमें चुनाव करना होता है कि हम ऐसी कौन सी शिक्षा या ऐसा कौन सा कोर्स लें जो हमें आगे रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। ऐसा ही एक क्षेत्र है विधि शिक्षा। जी हां, विधि शिक्षा यानी कि लॉ की पढ़ाई, इसमें रोजगार के कौन कौन से अवसर हमारे युवा साथियों को मिल सकते हैं, इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री कपिल बंसल जी को, जो प्रवक्ता हैं SHD लॉ कॉलेज मथुरा के। तो सबसे पहले कपिल बंसल जी, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो हमारे जो युवा साथी

0: इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बातचीत को सुन रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कानून के क्षेत्र में प्रवेश करने के तरीके क्या हैं।
1: सर्वप्रथम तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार
0: जी।
1: सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि प्रवेश पाने के जो तरीके हैं, दो प्रकार का प्रावधान जो है वो किया गया है। एक तो इंटर करने के पश्चात कोई भी विद्यार्थी अगर विधि की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो पंचवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रावधान यहां पर है। दूसरा, ग्रेजुएशन करने के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रावधान है। इसमें फायदा ये है कि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम का जो प्रोग्राम है उसमें एक वर्ष का फायदा, एक वर्ष का लाभ जो कि ग्रेजुएशन करने के पश्चात नहीं मिल पाता, वो विद्यार्थियों को मिल जाता है। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लाभ मिलता है आफ्टर 12th
0: जी,
1: वो लाभ जो है एक लॉ के क्षेत्र में 12th के बाद से ही एक विधि के विद्यार्थी को जानकारी हो जाती है विधि की, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो ग्रेजुएशन में जो चीज नहीं मिल पाती वो स्टार्टिंग से आफ्टर कंप्लीटिंग 12th वो जानकारी
0: अगर हम इसको जी सामान्य भाषा में कहें, जो बेसिक जो जानकारी है वो हमें आफ्टर इंटर मिल जाती है,
1: मिल जाती
0: बजाय स्नातक होने के बाद जी। ये तो रही बात हमारे प्रवेश के लिए एक सामान्य जानकारी। जो हमारे युवा साथी कोर्स कर लेते हैं तो उनको रोजगार के कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जो उन्हें मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं
1: कोर्स?
0: इसके लिए एक साथ ही बात है, जैसे कि हमने डिग्री ले ली जी, LLB की ली या डिग्री जो भी विधि की ली है, तो इसके लिए अवसर हमें कहाँ मिलेंगे और फिर इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, तो उसके बारे में जी।
1: सबसे पहले तो इसमें आफ्टर ये लॉ करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन करवाना बार काउंसिल में अनिवार्य होता है, जिसके पश्चात ही तदुपरांत आप एज एन एडवोकेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में वकालत का पेशा या व्यवसाय कर सकते हैं। उससे पहले आप एलिजिबल नहीं होते कोई भी व्यवसाय, वकालत के व्यवसाय से जुड़े जाने के लिए।
0: एक सामान्य जानकारी और ये लेना चाहेंगे, जैसा कि हम लोअर कोर्ट में भी देखते हैं, वहाँ अलग अलग कोर्ट होती हैं, दीवानी के अलग है, रेवेन्यू अलग है, फौजदारी के अलग है, तो उसके लिए भी कुछ अंतर होता है क्या इस तरह से विधि की शिक्षा लेने के बाद, कि क्या सब जगह हम कहीं भी बैठ सकते हैं एक जगह?
1: जी नहीं, फौजदारी में, दीवानी में और रेवेन्यू में तो सब समान है, लेकिन टैक्सेशन की अगर अपन बात करेंगे तो टैक्सेशन के लिए ये प्रावधान अलग से दिया गया है। उसमें जो स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग है, बाकी अगर आप दीवानी में या फौजदारी में या रेवेन्यू में वकालत पेशा करना चाहते हैं तो उसमें समानता है, रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है और उसके बाद किसी भी एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंबरशिप लेके आप अपनी वकालत पेशा शुरू
0: कर सकते हैं। और यदि एक डिग्री लेने वाला व्यक्ति, यानी कि जब विधि की डिग्री ली है, वो कोर्ट में बैठना नहीं चाहता है, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको ऐसे अवसर मिल सकते हैं कि वो इस पढ़ाई का, अपने अनुभव का, इस पढ़ाई का कुछ फायदा ले सकता हो?
1: जी बिल्कुल, शैक्षणिक क्षेत्र में भी सुनहरे अवसर हैं, लेकिन उसके लिए स्नातक, विधि स्नातक की डिग्री लेना ही पर्याप्त नहीं है, उस तदुपरांत LLM की
0: डिग्री लेना बहुत
1: ज्यादा अनिवार्य है। और साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रवक्ता पद के लिए अनिवार्य अर्हता निर्धारित की है, जो कि नेट या PhD या MPhil है, जिसको कि किया जाना अति आवश्यक है।
0: तो जब आपने चर्चा की कि LLM किया जाना जरूरी है कम से कम, तो LLM का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है?
1: LLM का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है
0: जी।
1: प्रथम वर्ष में सब जो विषय हैं वो सब समान होते हैं सभी के लिए, लेकिन द्वितीय वर्ष में आप किसी विशेष विषय पर विशेष योग्यता ले सकते हैं, जैसा कि अपराध शास्त्र है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, मर्केंटाइल लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं। ये विद्यार्थी के लिए एक अवसर है, वो अपने अनुसार चुन सकता है, जिस भी क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट हो वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है।
0: तो इसके साथ ही जब चर्चा की जा सकती है, तो हमारे युवा साथी इस क्षेत्र में उतरते हैं और विशेष योग्यता भी उन्होंने LLM के सेकंड ईयर में प्राप्त कर ली होती है, तो निजी क्षेत्र में यदि वो रहना चाहता है तो रोजगार के और कौन से ऐसे अवसर हैं जो उसे मिल सकते हैं?
1: जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं
0: जी
1: वो अपने देश में हैं, तो लीगल

0: एडवाइजर की एक ऐसी पोस्ट है जिससे कि एक विद्यार्थी जुड़ सकता है किसी भी विषय में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र में भी जाया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में इनका मुख्य कार्य जो होता है वो विधिक दस्तावेजों की संपुष्टि करना होता है
1: जी।
0: इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर बैंक आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करता है। इसी प्रकार विभिन्न कंपनी लीगल एडवाइजर्स की नियुक्ति करती है
1: जी। ये विभिन्न जो आपने, अगर हम इसको धाराएं कह दें, तो जो निजी क्षेत्रों में धाराएं बताई हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो विशेषता दक्षता हमें हासिल करनी, युवा साथियों को खासतौर से, जैसे कि क्या जरूरी, अच्छा होगा, सोने में सुहागा होगा यदि वो कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हो निजी क्षेत्र में खासतौर से, और क्या क्या ऐसी उसे हासिलात करनी चाहिए, क्या कहना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी कंपनी से जुड़ेंगे
1: जी,
0: तो विशेष योग्यता आपको कंपनी लॉ में प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो दूसरी चीज साइबर लॉ का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि इंटरनेट हैकिंग वगैरह के जो रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अगर एक विद्यार्थी LLB करता है तो उसमें एक संकुचित क्षेत्र में सब चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जिसमें कि वो स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं अपन, तो उसके लिए वो चीज आवश्यक है।
1: यदि वो किसी सरकारी प्रतिष्ठान में या सरकारी सेवा में अप्लाई कर सकता है तो वो कौन सा क्षेत्र हो सकता है?
0: भारतीय सेना में कमीशन्ड लॉ ऑफिसर का पद होता है
1: जी,
0: जिसकी अर्हता विधिक स्नातक होती है। इस प्रकार विधिक स्नातक भारतीय सेना में भी प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त कर देश सेवा कर सकता है।
1: ये तो खास तौर से रही हमारी वो सेवाएं, चाहे निजी क्षेत्र की हो या भारतीय सेना के रूप में, अभी हमने आपने जानकारी दी, बैंकिंग क्षेत्र में हो या लीगल एडवाइजर के भांति उसे कार्य करना हो। साथ ही यदि न्यायिक सेवाओं में वो प्रवेश पाना चाहे, किस तरह से प्रवेश पा सकता है?
0: पूर्व में तो देखिए इसके लिए प्रावधान अलग था, लेकिन अब जो है वो बात थोड़ी सी अलग हो गई है। पहले तो LLB करने के बाद जो एक्सपीरियंस था 2 साल का
1: जी,
0: वो लोक सेवा आयोग में न्यायिक सेवा के लिए आवश्यक था, लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी विद्यार्थी जो LLB अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुका है या परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुका है, वो विद्यार्थी विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित कराई जाने वाली न्यायिक सेवाओं की परीक्षा के लिए सक्षम हो जाता है
1: जी।
0: तो इसी प्रकार जो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग हैं वो पद आमंत्रित करते हैं। ये अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 चरणों में परीक्षाएं कराते हैं। राजस्थान प्रदेश है वो 2 चरण में कराता है। प्रथम चरण तो मेन्स एग्जाम का होता है और द्वितीय चरण साक्षात्कार का होता है।
1: खासतौर से PCS एग्जाम्स के जो एंट्रेंस देते हैं, PCS एग्जाम्स के लिए अपने आप को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी विधि का प्रयोग किया सकता है?
0: देखिए, जो अभी मैंने बात करी न्यायिक सेवा के लिए, वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है
1: जी,
0: जिसमें तो कि एक विधि का विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए सक्षम हो जाता है विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद। एक होता है PCS एग्जीक्यूटिव का। PCS एग्जीक्यूटिव में भी एक सब्जेक्ट विधि का चुना जा सकता है और उस विषय को चुनने के पश्चात PCS एग्जीक्यूटिव में भी सम्मिलित हुआ जा सकता है
1: जी। इसके अलावा और किस तरह से वो अपने को सोच सकता है कि वो और पद के लिए, किसी और ऐसा पद है जिसके लिए वो अपने को अप्लाई कर सकता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल। अभियोजन अधिकारी का भी ऐसा पद है जिसके लिए
1: वो अप्लाई कर सकता है।
0: तो
1: नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है?
0: वो भी सेम है, सिमिलर है एज न्यायिक सेवा में जाने के लिए। यहाँ पर भी राज्य जो है वो पदों को निर्देशित करता है राज्य लोक सेवा आयोग को, जैसा कि अपने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान दिया गया है धारा 25 में निर्देशित करने के लिए। निर्देशित करने के पश्चात लोक सेवा आयोग पद आमंत्रित करता है लोक अभियोजक के लिए और फिर कोई भी विद्यार्थी जाया जा सकता है।
1: तो बंसल साहब, आपने इतनी सारी जानकारी दी, साथ ही हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने जाना कि किस प्रकार विधि शिक्षा हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। निश्चित ही वो अपने कैरियर के चुनाव के लिए, वो विद्यार्थी खास तौर से जो हमारे विधि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो इससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। कपिल बंसल जी, आपने हमको और हमारे साथियों को इतनी सार्थक जानकारी दी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो आपने अभी सुना साक्षात्कार, कानून के क्षेत्र में करियर। विशेषज्ञ थे कपिल बंसल और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश शर्मा। दोस्तों, भारत अनेक धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और

संस्कृतियों वाला देश है। यही विविधता हमारी सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग आस्थाओं के लोग जब एक दूसरे के त्योहारों, परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करते हुए साथ रहते हैं तो समाज में विश्वास और सहयोग मजबूत होता है। लेकिन कभी कभी अफवाह, गलत सूचना, भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया पर बिना जांची सामग्री या किसी स्थानीय विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश तनाव को बढ़ा सकती है। ऐसे में सबसे पहले जरूरत है संयम और सत्यापन। कोई संदेश, वीडियो या पोस्ट हमें उत्तेजित करे तो उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय ये देखना जरूरी है कि उसकी विश्वसनीयता क्या है। किसी अपुष्ट सूचना को साझा करना स्थिति को और जटिल बना सकता है। भारत के गृह मंत्रालय ने सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए और इसे बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें सतर्कता, पूर्व तैयारी, समय पर कार्रवाई और प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत जैसे उपायों पर जोर दिया गया है। दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। समाज का प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान रखें, किसी धर्म या समुदाय के बारे में अपमानजनक टिप्पणी से बचें, अफवाहों को रोकें, विवाद की स्थिति में कानून को हाथ में लेने के बजाय संबंधित प्रशासन और पुलिस को सूचना दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी व्यक्ति की गलती को पूरे समुदाय से जोड़कर न रखें। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आप तक पहुंचा रहे हैं हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और हाशिम की आवाजों में, इनके साथ अल्ताफ की आवाज, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से।

हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी, हाशिम और अल्ताफ की आवाज़ों में गए आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के लिए सी कव्वाली के साथ ही युवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कल इसी वक्त फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी अरविंद को अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानु टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 का

0: में भारत एक स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे, क्षमा करें, ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे देश हमारों के क्रम में, श्रद्धा और भक्ति को शक्ति स्थल नगरकोट धाम देवी मंदिर। वाचन स्वर होंगे रुद्र कृष्ण सिंह। संध्या 6:30 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। संध्या 7:31 पर शाम सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज संध्या 6:50 पर किसानवाड़ी कार्यक्रम ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:35 पर फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड और रात्रि 9:45 पर इनसाइट से दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 10 बजे रासलीला प्रसारित की जाएगी। प्रसंग होगा नित्य रास, कुरुक्षेत्र में श्यामा श्याम मिलन। लेखक होंगे राम नारायण अग्रवाल और प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की रहेगी। रात्रि 10:30 पर उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी प्रवीण सुल्ताना का राग पहाड़ी पर आधारित ठुमरी गायन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे प्रेम निवास गुप्ता का राग कहरवा पर बांसुरी वादन। साथ ही आप सुनेंगे आरपी शास्त्री का वायलन वादन और विदुषी राज लक्ष्मी आर आहूजा का गायन।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान। रचना है डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त की, स्वर है शांति माथुर का।

11 बजे हिंदी समाचार, रात्रि 10:11:05 पर अंग्रेजी समाचार। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि

0: छोड़ मत पतवार नाविक रे। डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त की ये देशभक्ति परक रचना आपने सुनी शांति माथुर के स्वर में। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त संध्या के 6:15 हुए हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश हमारों के क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रद्धा और भक्ति को शक्ति स्थल नगरकोट धाम देवी मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं रुद्र कृष्ण सिंह।
1: भारतीय उपमहाद्वीप में 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें नगरकोट धाम में माता ब्रजेश्वरी देवी को मंदिर एक मशहूर शक्ति स्थल है। यहाँ हर वर्ष देश के कोने कोने से पर्यटक देवी जी के दर्शन के ताई आवे हैं। चैत्र और क्वार मास की नवदुर्गन में यहाँ लाखन की संख्या में तीर्थयात्री पधारे हैं, जे नगरकोटवारी देवी अपने भक्तन की खाली झोली भरने वारी है। जा कांगड़ा देवी के दर्शन भक्तगण नंगे पैर चल के करे हैं। जा कांगड़ा देवी धाम की कथा या प्रकारते है, देवी सती के आत्मदाह के बाद शंकर भगवान क्रोधित है गए। भगवान शंकर सती के स्थूल शरीर को लेके वियोग में ब्रह्मांड में विचरण करने लगी। भगवान विष्णु ने शंकर जी के क्रोध को शांत करने के ताई सुदर्शन चक्र ते सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जे अंग भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ सती के अंग सुदर्शन चक्र ते खटकर गिरे, विनकु 51 शक्तिपीठ कहो जाए है। इन स्थलन पे सती जी को वास मान्यो जाए है। जे 51 शक्तिपीठ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जे पवित्र शक्ति स्थल हैं। नगरकोट में सती वायवक्य स्थल गिनने ते जे स्थान शक्त केंद्र के रूप में मशहूर है। सती के प्रमुख अंग जहाँ जहाँ गिरे, विनको वर्णन जा प्रकार ते है। वृंदावन मथुरा में सती के बाल गिरे या कात्यायनी को मंदिर है। ज्वाला जी में सती की जीव गिरी या ज्वाला माई शक्तिपीठ है। या पर्वत ते निकलकर आग की लौ 24 घंटे जल रही है। जे लौ देवी के चमत्कार ते पर्वत में ते निकल रही है। न्या सालन ते अखंड ज्योति जल रही है। कलकत्ता में केस गिरे और चिंतपूरी में चरण गिरे, न्या चिंतपूरी शक्तिपीठ है। वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, जे एक पवित्र शक्तिपीठ है। नैना देवी में नैन गिरे और मनसा देवी में मस्तक गिरो, जे शक्तिपीठ है। वैष्णो देवी में सती की बाजू गिरी हती, वैष्णो देवी शक्तिपीठ है। नगरकोट जायवे वारे तीर्थयात्री इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करे हैं। जा नगरकोट मंदिर की एक पुरानी कथा जा प्रकार ते बताई जाए है। या सुशर्मा नाम को एक राजा राज्य करतो हतो। वह राजा ने अपने नाम पे नगर को नाम सुशर्मापुर रख लियो, जाको लेख महाभारत में मिले है। कोट को मतलब किलो होए है, जाको मतलब जा प्रकार ते है। वो नगर जहाँ किलो होए वो नगर कोट है। जे ब्रजेश्वरी देवी को मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा को मतलब कर्णगढ़ है। जे नगरकोट मंदिर कान पे बनो भयो है। जा कान की पौराणिक कथा जा प्रकार ते है। पौराणिक मतानुसार जे कान जालिंदर दैत्य को बतायो जाए है। यहाँ शिवालिक पहाड़ीन के बीच 12 योजन के क्षेत्र में जालिंदर पीठ फैले भयो है। जालिंदर पीठ की परिक्रमा में 64 पीठ और अनेक मंदिरों के दर्शन तीर्थयात्री करे हैं। जाकी परिक्रमा को फल चारों धामन की यात्रा ते कम नहीं है। जभी तो नगरकोट को मंदिर जालिंदर के

कान पे बन्यो भयो ए। नगरकोट जाय वे वारे तीर्थ यात्री पीले वस्त्र पहन के पीठ पे हल्दी को थापो लगाए के पथवारी तक जावे हैं। घर से निकलते समय माँ दुर्गा की पूजा करें हैं। अपने परिवारी जनों से मिलके पथवारी पूजन करें हैं। या तीर्थ यात्री के घर वारे वापस लौटने तक सुबह सुबह 4 बजे माता के गीत गाते भए पथवारी पे जल चढ़ावे हैं, प्रसाद बांटे हैं, बिनको मंगल की कामना देवी मैया ते करें हैं। तीर्थ यात्री यात्रा ते वापस है के देवी जी के रात जगावे हैं, जागरण करें, माता की प्रतिमा के आगे घी को दीपक जलावे हैं। देवी माता भक्तन की मनोकामना पूरी करे, मनोवांछित फल देवे। जा मंदिर की बहुत ऊंची चोटी बनी वही है, जा चोटी पे अनेक रंग बिरंगे ध्वज फहरा रहे हैं। जा देवी को चांदी को छत्र बने भयो है। जा देवी पे तीर्थयात्री माता जी के श्रृंगार को सामान सुपारी पान लौंग नारियल काजू टोकरी में रख के चढ़ावे हैं। पुजारी गण भक्तन को प्रसाद देवे हैं। वर्ष में 2 बार लोगों की झुंड के झुंड जन में बच्चे बूढ़े जवान अमीर गरीब सब के सब नंगे पैर पूजा दर्शन करके करने के ताई आवे हैं। या मंदिर के सुनहरी कलश दूर दूर तक दिखाई पड़े हैं। या मंदिर के परकोटे पे महावीर जी धानु भक्त भगवान शिव जी की प्रतिमाएं दीवाल पर खुदी भई हैं। जे प्रतिमाएं साकार बोलती भई सी प्रतीत हुए हैं। भैरव जी ने अपना सिर देवी के चरण में धर दियो। देवी ने 2 बार कट्यो सिर धानु भक्त को सिर जोड़ दियो। माँ देवी मैया ने धानु भक्त ते कही, अगर तुमने अपना सिर कट्यो काट के मेरे चरण में 3री बार रखियो तो मैं सिर को धड़ से नहीं जोड़ूंगी। धानु भक्त की मूर्ति पर कोटा में मंदिर में प्रवेश करते ही नजर पड़े। तभी तो देवी जी ने धानु भक्त ते कही, मेरे दर्शन ते पहले धानु भक्त के दर्शन तीर्थ यात्रियों के ताई होवेंगे। धानु भक्त आगरा के वैश्य थे। धानु जैसो भक्त आज तक नाय भयो है। भैरव जी की प्रतिमाएं मंदिर प्रांगण में बने मंदिर में हैं। परकोटे में तारा देवी को मंदिर बने भयो है। जा नगरकोट मंदिर के बनाने की कथा जा प्रकारती है। एक बार स्वप्न में पांडवों को देवी जी के दर्शन दिए। जे नगरकोट देवी को मंदिर पांडवों ने खुश है के बनवायो है। जे कथा महाभारत में लिखी भई है। मथुरा जिले के नरी सैमरी गांव में देवी जी की जात को क्वार और चैत्र मास में तीर्थयात्री जावे हैं। यहाँ देवी को मंदिर बन्यो भयो है। जा मंदिर की कथा धानु भक्त ते जुड़ी भई है। जा नगरकोट मंदिर ते थोड़ी दूर पे बाढ़ गंगा बह रही है। जा में पर्यटक स्नान करें हैं। जे बाढ़ गंगा पापों को दूर करने वाली है। जा जल को आचमन स्नान दर्शन सुखदायक है। जा नदी को जल शीतल और मन मोहक है। नगरकोट देवी के प्रांगण में एक तरफ बच्चों को मुंडन संस्कार होए है। माता जी के दर्शन से पुत्र प्राप्ति होए है। गरीब धनवान है जाए, रोगी निरोगी है जाए, संतान प्राप्ति होए है। न्या भक्तन के रहवे के ताई धर्मशालाएं बनी वही हैं। तीर्थयात्री बस करके ले जावे हैं। मथुरा आगरा अलीगढ़ ते रेल ते यात्रीगण दिल्ली जावे हैं। दिल्ली ते कई रेलगाड़ी पठानकोट तक सफ़र करें। दिल्ली ते हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू मेल पठानकोट पर तीर्थयात्रियों को उतारें। न्याते 2 घंटे में कांगड़ा मंदिर को रास्ता पूरा हुए है। पठानकोट ते रेल की छोटी लाइन कांगड़ा मंदिर स्टेशन तक जाए है। कांगड़ा मंदिर स्टेशन ते मंदिर नज़दीक है। पठानकोट ते तीर्थयात्री बसों ते टैक्सी ते और रेलगाड़ी ते कांगड़ा मंदिर तक को सफ़र करें। ज्वाला माई ते नगरकोट बसों से यात्री जाए हैं। जे नगरकोट को मंदिर श्रद्धा और भक्ति को केंद्र है।
नगरकोट देवी के।

0: दर्शन के बाद यात्री महादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र कुंड, बाबा वीरभद्र मंदिर और चक्रकुंड के दर्शन करे हैं। जे सभी मंदिर देवी मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जे नगरकोट की माता जी भक्तन की मनोकामना पूरी करे हैं। भक्तगण 9 दिन तक देवी माता को व्रत करे हैं। नवमी को माता जी की पूजा हुई है। कन्या लागुरन को प्रसाद दियो जाए है। नगरकोटवारी देवी में अपार शक्ति है। माता जी को सभी नतमस्तक हुए हैं। जे शक्तिपीठ मनोवांछित फल देवे बारी है।
1: अभी आप सुन रहे थे देश हमारों के क्रम में श्रद्धा और भक्ति को शक्ति स्थल नगरकोट धाम देवी मंदिर। वाचन स्वर थे रुद्र कृष्ण सिंह के। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये ब्रज लोकगीत।

विनोद चतुर्वेदी के स्वर में आपने ब्रजलोकतान सुनी। इसी के साथ ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और यशुदास के स्वरों में, अलग अलग फिल्म से ये भक्ति रचना। आइए अब सुनते हैं फिल्म अंकुश से पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के स्वरों में ये भक्ति रचना।

पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के स्वरों में अंकुश फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अभिलाष की ये भक्ति रचना, संगीत निर्देशन कुलदीप सिंह का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म जोगन से गीता रॉय के स्वर में ये भजन।

फिल्म जोगन से अभी आप सुन रहे थे गीता रॉय के स्वर में ये भजन। आइए अब सुनते हैं फिल्म गोपाल कृष्ण से रविंद्र जैन और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना।

रविंद्र जैन और साथियों के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण से ये भजन। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जय हिंद। हिमांशु भैया।
1: हाँ रामजीत भैया,
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में मेहनत तो करवे करी थे।
1: हाँ।
0: और साथ ही साथ जो उन आवे वाला अपन समय है,
1: हाँ।
0: वह बारे में सोची थे और कुछ रुपया पैसा जोड़ के राखी थे।
1: बिल्कुल भैया, और रुपया पैसा जोड़ के रखे चाहे अपन, बहुत सारे किसान पंच भाई जो है अपने बुढ़ापा तक का जब थोड़ा काम कम हो जाते हैं और रुपया काम तो उतने रहते हैं, तो वैसे समय में यहाँ कि कौने हिसाब से रुपया क्या बचत की जाए कि उस समय में यहाँ काम आवे।
0: बिल्कुल भैया, और यह बात जौन है आपन सरकारों सोचत है
1: हाँ
0: कि जौन हम पंच है हमार मान सम्मानो बना रहा है
1: बिल्कुल
0: और कौनो मेर का दिक्कत ना हुए,
1: बिल्कुल
0: यही वजह योजना चलाई रही है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यही मां का है भैया
1: हाँ
0: कि जौन पंच हैं अपने अपने उम्र के हिसाब से आपन अंश जौन है वही का लगावत है और सरकारों पैसा लगावत है। और फिर भैया जब हम पंच 60 साल के हो जाई थे तो फिर वो जैसे पेंशन होत है
1: हाँ
0: वही मेर हम पंचन का एक निर्धारित पैसा जौन है वो दियत है, जैसे हम पंच के जौन जिंदगी है वो आसान हो जात है।
1: बिल्कुल रामजीत भैया, ई योजना का लाभ जो है अपने हर किसान हर पंच बहन के यहाँ लेक चाहे।
0: हिमांशु भैया जौन अपने आसपास बदलाव हो रहा है
1: हाँ।
0: वही का हम पंच जानित है आज की खबरें में।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 160 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत कृषि में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजना के अंतर्गत 10,59,82,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। वहीं किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, बीज भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के बीजों सहित विभिन्न बीज आधारित मदों पर खर्च की जाएगी। सरकार के इस वित्तीय प्रावधान से प्रदेश में उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने और कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: हिमांशु भैया।
1: हाँ रामजीत भैया,
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती का काम काज तो करवे करी थे, साथ
1: हाँ।
0: साथ हम पंच बागो बगीचा लगाई थे
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: वही माँ कौनो मेर के अगर नुकसान हो जात है
1: हाँ।
0: तो आपन जो उन कमाई है वो कम हो जात है और
1: बिल्कुल।
0: कहूँ कीट पतंगा लाग गए तो कुछ कहन कनाई
1: अरे
0: है।
1: भैया कुछ पूछबे ना करो, जो है कीट पतंगन में यहाँ तो इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि कहो बढ़िया हरे भरे बिरवा पूरी पूरी बाग सूख जावे माँ। तो इसने संबंधित आज केरी बात में यहाँ बहुत बढ़िया भेंट वार्ता लेकर आए हैं आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन, और ऐसा बता रहे हैं डॉक्टर हरिशंकर सिंह भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आम की व्यावसायिक बागवानी आप कर रहे हैं वहां इस मौसम में हानिकारक कीटों के प्रबंधन के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें यानी आईपीएम कैसे अपनाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर एच एस सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय आम के जो फलदार वृक्ष हैं उनमें समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों।

0: आम के फल की तुड़ाई के बाद में कीट प्रबंधन के हिसाब से बहुत खास समय है। समन्वित कीट प्रबंधन की शुरुआत इसी समय से की जा सकती है। इसमें तीन चार कार्य हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। पहला, एक बगीचे की साफ सफाई और प्रूनिंग बहुत जरूरी है, जो कि पुरानी शाखाएं वगैरह हैं उनको काट करके निकाली जाएं और पत्तियों को हटाया जाए। इसके अलावा खेत की जुताई की जाए जिससे कि जमीन में छुपे हुए कीड़े मकोड़े सब मर जाएं। इसके अतिरिक्त बायोपेस्टिसाइड्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं,
1: यानी जैविक उपाय।
0: हाँ, जैविक उपाय जो है उनको भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे कि आम के पुराने पेड़ों के तने पर बहुत सारे हापर या फुदका बैठे हुए मिलेंगे, जो कि बारिश में उतर करके इस पर चले आते हैं और पूरी ठंडी इसी पर बैठे रहते हैं। जैसे ठंडी खत्म होगी और नई पत्तियां निकलना शुरू होंगी या जो है नए फूल आना शुरू होंगे, ये तने से उठ करके और धीरे धीरे फूल पर पहुंचना शुरू करेंगे। अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में हम आम के तनों के ऊपर ही जहां ये छुप कर बैठे होते हैं वहीं पर अगर दवा डालकर इनको मार दें तो इनकी संख्या इस समय बहुत कम होती है, क्योंकि खाते पीते कुछ नहीं है, बड़ी सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, तो इनके ऊपर दवा पड़ते हैं इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जो आप मैंगो लिफाफर की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन सितंबर का महीना चल रहा है
0: जी,
1: अभी भी आम के फलदार वृक्षों पर जाला कीट की समस्या है।
0: जी जी जी, ये बहुत समयानुकूल प्रश्न है आपका। जाला कीट हर वर्ष बहुत भयंकर रूप से आम के बगीचों में आता रहता है, और जो बगीचे बहुत ऊंचे हैं, पेड़ जहां पर बहुत ऊंचे हैं और छायादार हैं, वहां पर इस कीट का बहुत भयंकर प्रकोप होता है। परंतु पिछले वर्ष भी जो है इसका प्रकोप कम इसलिए हुआ क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, और इस बार भी इसका प्रकोप कम देखा जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है। जिन क्षेत्रों में इसका प्रकोप हो रहा है वहां पर ये ऊपर की पत्तियों को जोड़ करके आपस में चाट करके खा जाता है,
1: जाला बना लेता है,
0: झोपा बना लेता है, और एक एक झोपे में आठ आठ दस दस कीड़े बैठे रहते हैं। इनके व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि अगर इनके झोपे को या इनके झोंझ को आप छू लीजिए या किसी डंडे से खोद दीजिए तो ये तुरंत अपने झोंझ को छोड़ करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो अगर इनकी रोकथाम करना है, लंबी जो है लग्गी हो या डंडा हो जिसमें कोई चीज बांध करके अगर आप इसको जो है जरा झोंझ को इनको आप हिला दें,
1: तेज हंसिया हो,
0: हाँ हंसिया हो, उससे भी अगर किसी तरीके से उसको डिस्टर्ब कर दे, छेड़छाड़ कर दे, तो ये सारे कीड़े जमीन पर नीचे गिर पड़ते हैं, फिर ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं।
1: और कोई सुरक्षित रसायन?
0: हाँ, और अगर जो है नहीं जो है किसान भाई इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंचे पेड़ हैं, वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो दवा डालना एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो ऐसे में ब्यूवेरिया बैसियाना नाम की एक
1: जैविक
0: कीटनाशक, वो इस पर बहुत बढ़िया काम करती
1: है। जैविक कीटनाशक
0: है, जो कि चूंकि ये जो कीड़े रहते हैं झोंझ में रहते हैं वहां नमी बहुत रहती है, और नमी में ही ब्यूवेरिया बैसियाना बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर इसका छिड़काव कर ले जाएं तो बहुत अच्छा नियंत्रण होगा। अब मान लो ये नहीं मिल पा रही है, तो दूसरा तरीका ये है कि लैम्डा साई हेलोथ्रिन 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अन्यथा बहुत पुराने जमाने से किसान भाई क्विनल फास जो 1.5 ml दवा जो है मिला करके छिड़काव करते आए प्रति लीटर, और यह दवा समझिए कि जाला कीट के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है।
1: और जहां ब्यूवेरिया बैसियाना प्रयोग करना है तो माचिस की 1 डिबिया 1 लीटर पानी
0: के जी हाँ माचिस के, हाँ ठीक कह रहे हैं
1: डॉक्टर साहब। तना बेधक कीट की भी समस्या, जो ट्रंक बोरर है उसकी भी समस्या आम के बागों में बहुत ज्यादा आती है।
0: जी जी, ये ट्रंक बोरर मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि और जितने भी कीड़े लगते हैं ये कीड़े आम को सीजन के हिसाब से नुकसान पहुंचा देते हैं। कोई फूल खा लेता है, कोई पत्ती खा लेता है, कोई फल को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन आम का पौधा बचा रहता है। ट्रंक बोरर एक ऐसा कीड़ा है जो आम के वृक्ष को ही खत्म कर देता है
1: जी।
0: इसलिए इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ट्रंक बोरर बहुत खतरनाक कीड़ा, जिसको हम तना छेदक भी कहते हैं,
1: यानी तने में अगर लग गया तो पूरा पेड़ चाट,
0: हाँ पूरा पेड़ सूखने की संभावना हो जाती है। अच्छा, इसके साथ समस्या ये है कि ये अभी थोड़े दिन में इसकी अंडे देने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी ये निकला है, इसका जो प्रौढ़ है अभी निकला है और ये अभी अंडा देना शुरू कर देगा। कीड़ा धीरे धीरे करके अंदर घुस जाएगा और अगले साल तक उसी के अंदर खाता रहेगा, बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा।
1: और बुरादा निकलता रहेगा?
0: बुरादा नहीं, बुरादा शुरू में नहीं निकलता है। जब ये आपका जुलाई अगस्त का महीना आएगा, जब ये कीड़ा बहुत बड़ा हो जाता है
1: जी,
0: तब ढेर सारा जो है पानी निकालता है, बुरादा निकालता है, तब इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
1: तो इसका समन्वित प्रबंधन हो कैसे?
0: हाँ, समन्वित प्रबंधन का तरीका यह है कि जैसे इस समय अंडा दे रहा है ये, तो आम के वृक्ष के तने के ऊपर अगर संभव हो सके तो क्लोरोपाइरीफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से 1.5 मीटर तक केवल छिड़काव कर दें,
1: यानी जमीन की सतह से
0: 1.5 मीटर ऊपर केवल तने के ऊपर उस पर छिड़काव कर दे। जितनी नई इल्लिया या अंडे निकले होंगे वो सब मर जाएंगे। तो एक तो तरीका यह है। दूसरा, अब अगले सीजन में पता आप लगा पाएंगे कि ये अंदर घुसा है कि नहीं। तो इसके लिए किसान भाइयों को सलाह मैं देता हूं कि आप जून जुलाई के आसपास

0: अपने बगीचों का हर पेड़ का निरीक्षण निश्चित रूप से और नियमित रूप से करते रहे।
1: अगर पिछले साल घुसा है हाँ। और इस समय बुरादा निकल रहा है तो
0: हाँ, तो इस समय क्या कर सकते हैं, एक हंसिया ले लें, हंसिया से जो है जहाँ पर ये बुरादा निकल रहा है छाल उसके जो है हंसिये के नोक से छाल पर मारें तो छाल हट जाएगी क्योंकि ऊपर से एकदम कमजोर हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारा बुरादा भरा रहेगा, उसको साफ करके निकाल दें। उसमें देखेंगे तो एक छोटा सा छेद दिखाई पड़ता है, इसी छेद के अंदर एक घुसा रहता है
1: जी।
0: उसमें एक साइकिल की तीली या कोई चीज डाल करके अच्छी तरीके से उसको हिला दें और इसके बाद में अगर कीड़ा मर जाए तो मर जाए, ये एक अवसर की बात है, अगर नहीं मरता है तो उसमें कोई भी कीटनाशी, ये जो इंजेक्शन होता है जो आदमियों को सुई लगाई जाती है
1: जी, जी।
0: उसी में जो है पानी में हाँ सिरिंज उसमें जो है
1: दवा
0: भर करके और उसी छेद में मुंह लगाकर खूब तेजी से पिचकारी की तरह मार दें तो दवा अंदर तक घुस जाती है, उसके बाद वहीं बगल से गीली मिट्टी लेकर के उस छेद को अच्छी तरीके से बंद कर दें। इसके बाद में क्या करना होगा कि चूंकि आम के सतह के ऊपर से छाल हट जाती है तो बीमारियों को लगने की संभावना रहती है, तो अपनी जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है ये 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके उस पर छिड़काव कर दें तो जिससे कि बीमारी
1: या गाढ़ा लेप लगा
0: हाँ गाढ़ा लेप भी लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब कहीं कहीं सूट गाल सिला की भी समस्या आती है।
0: जी जी, ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, केवल जब फूल आने का समय होता है या फूल आने के थोड़ा दिन पहले फूल की जगह पर छोटी छोटी गांठें आम की टहनियों में बन जाती हैं और किसान भाई जान ही नहीं पाते कि हो क्या गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो अंडा देना का काम होता है ये जो है अगस्त और सितंबर में ही होता है,
1: अभी से
0: तो अगर इस कीड़े को रोकथाम करना है तो दवा डालने का समय केवल अगस्त और सितंबर ही है, अगर इस 2 महीने में चुक गए तो इस कीड़े को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर लगातार 2-3 साल तक किसी बगीचे में आप जो है 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में या 30 अगस्त के बीच में 2 बार स्प्रे आप कर चुके हैं तो 2-3 साल में वो खत्म हो जाता है, कीड़ा फिर नहीं आता है।
1: कौन सा सुरक्षित रसायन
0: सबसे बढ़िया दवा, चूंकि ये कीड़ा बहुत कोमल होता है और पत्ती के अंदर बैठा रहता है तो इसमें जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है जैसे इमिडाक्लोपिड ये 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से डालते
1: हैं, यानी 1 ml दवा 3 लीटर पानी के
0: जी जी जी, और इसी तरीके से एक थायमेथक सांप दवा आती है उसको भी जो है इसी दर से इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: यानी 1 ग्राम 3 लीटर पानी।
0: जी हाँ जी हाँ, इसका छिड़काव करें और 2 छिड़काव कर दें तो सूट गाल सिल्ला का नियंत्रण आराम से हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर किसान भाई नोट कर सकते हैं, 94-37-63-57-36 94-37-63-57-36 9437635736।
1: डॉक्टर हरिशंकर सिंह साहब आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमांशु भैया।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो हम पंचन के बातचीत तो भैया चला करी मूल तनी कुछ गीत गवनी हुई जाए।
4: बिल्कुल भैया, अब सुना जाए बहुत बढ़िया लोकगीत खेमटा।

0: रामजीत भैया,
1: हाँ हिमांशु भैया।
0: देखो अपन किसान भाई तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो उन तनुक अलग तरीके से ने जो है किसानी कह के बढ़िया मेहनत कह के जो है बहुत बढ़िया मुनाफा कमाते हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो वह मैं यहाँ आज के किसान हैं इंद्र प्रकाश सिंह भैया, और ये बता रहे हैं धान उत्पादन के बारे में यहाँ।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम ब्लॉक के जानीपुर गांव, जहां के नौवन्नी किसान इंद्र प्रकाश सिंह भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। इंद्र प्रकाश भैया नमस्कार।
3: जी प्रणाम।
2: इंद्र प्रकाश भैया, आप नौवन्नी खेती के लिए जाने जाते हैं, नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: मैं यूपी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, MSc AD हॉर्टिकल्चर से हूँ, 89 का पास आउट हूँ।
2: यानी लगभग 37 साल हो गया। तो खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: 2002 के बाद।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी है आपके पास?
3: मेरे पास करीब 9 एकड़ है।
2: तो 9 एकड़ में कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
3: वर्तमान समय में तो धान है 6 एकड़ पे, यमुना
2: तो कौन कौन सी वैरायटी आपके खेत में है इस समय?
3: गोल्ड है 5 एकड़, और 1 एकड़ जो है ये राजभोग है।
2: क्या खासियत महसूस कर रहे हैं दोनों वैरायटी जो आपके खेत में है इस समय?
3: जैसे जमुना गोल्ड जो है ये मोटा धान है और ये वेट ज्यादा पकड़ता है,
2: अच्छा वजन।
3: वजन। और राजभोग जैसे सुगंधित है और वो खाने के लिए है।
2: तो धान की रोपाई और उसके पहले नर्सरी से लेकर के धान की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम आप धान में कर रहे हैं?
3: देखिए, मैं जब धान लगाता हूँ तो निश्चित रूप से ये करता हूँ कि गेहूं की कटाई के बाद ढैंचे को लगाता हूं, और ढैंचा इस तरीके से मैं करता हूं कि 50 दिन का ढैंचा हो जाए तो 20 से 22 दिन का मेरी नर्सरी हो जाए।
2: अच्छा, तो उसके बाद पलटाई करते होंगे हरी खाद की।
3: उसको पलटने के बाद जो है तुरंत रुपाई कर देते हैं,
2: पूरा 6 एकड़ में?
3: 6 एकड़ पे।
2: तो आपने इस साल नर्सरी कब डाली और रोपाई कब की?
3: जैसे आमतौर पे हमारे क्षेत्र में जो है मध्य अप्रैल के बाद गेहूं कट जाता है,
2: जी
3: और अप्रैल लास्ट में जो है ये पानी चला करके ढैंचे की बुआई हो जाती है। जब ढैंचा मेरा औसतन 15 से 20 दिन का हो जाता है, उसके
2: जी
3: बाद नर्सरी पड़ जाती है, क्योंकि जो इसके नोड्यूल्स हैं
2: हाँ
3: जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उसमें पलटने के बाद जो है, जहां तक मेरा अनुभव है कि अगर ढैंचे के खेत में जब धान की रुपाई हम करते हैं
2: जी
3: तो 2-3 चीजें अपने आप हो जाती हैं।

0: पहला कि खरपतवार का नियंत्रण अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं एक लेयर बना लेती हैं, खरपतवार उगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या यूं कहें कि नगण्य हो जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमॉस्फेयर से किया रहता है वो मेरा धान जो है वो पा लेता है,
1: यानी खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है।
0: हाँ, और ये जल धारण क्षमता
1: बढ़ जाती है। फिर रोपाई कब करते हैं आप?
0: सपोज करिए कि अगर हम अप्रैल को हम डाले हैं ढेंचे को, तो नर्सरी मेरी पड़ेगी 20 मई को।
1: हाँ,
0: यही रेशियो रहता है।
1: तो इस समय आपकी फसल कैसी चल रही है?
0: अच्छी है।
1: फसल की भूख मिटाने के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद की मात्रा आप देते हैं, रासायनिक खाद या जीवाणु खाद?
0: जैसे हम नाइट्रोजन जो है करीब 100 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 80, और पोटास जो है 70 से 75 केजी।
1: यानी 2.5 एकड़ की मात्रा आप बता रहे हैं।
0: जी,
1: तो ये जो भी रासायनिक खाद की मात्रा है किस्तों में देते होंगे?
0: नहीं, जैसे फास्फोरस और पोटास तो सॉइल एप्लीकेशन में पड़ जाती है,
1: यानी रोपाई के पहले।
0: रुपाई के पहले, लेकिन नाइट्रोजन को हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं 3 दफा।
1: जी,
0: जैसे खरपतवार अगर आ गया मेरा 30 दिन बाद, खरपतवार का नियंत्रण करने के बाद जो भी 100 केजी नाइट्रोजन है मेरा, उसका 1/3 एक टॉप ड्रेसिंग।
1: जी,
0: फिर जो है 50 दिन पे एक टॉप ड्रेसिंग, और 60 दिन के बाद एक टॉप ड्रेसिंग।
1: यानी 3 किस्तों में नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं।
0: जी जी,
1: इस समय कोई हानिकारक कीट या बीमारी के लक्षण तो नहीं है? अगर है तो उनका प्रबंधन कैसे आप कर रहे हैं अपने खेत पर?
0: जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे जो है ये हरदा रोग लगता है।
1: जी,
0: लेकिन ये जो हरदा रोग है मेरा, उसका सॉइल ट्रीटमेंट पहले ही कर लिया जाता है।
1: क्या उपाय करते हैं?
0: जैसे हेक्साकोनाजोल का जो है
1: जी
0: लिक्विड, उसमें सीड में ये कर लेते हैं
1: हम, यानी बीज शोधन कर लेते हैं।
0: जी जी।
1: क्या खड़ी फसल में सुरक्षात्मक छिड़काव भी करते हैं?
0: सर, सबसे ये है कि अगर हरदा रोग लग गया आपका
1: जी
0: खेत में, तो वो जहां तक मेरा अनुभव है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको।
1: लेकिन सुरक्षात्मक अगर पहले ही छिड़काव कर दें तो
0: सीड ट्रीटमेंट ही उसका बेस्ट ये है।
1: क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार आप धान उत्पादन से जुड़े हैं, तो एकड़ पीछे कितना लागत गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं, और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: एक एकड़ में औसतन जो है आपका 25 क्विंटल हो जाएगा
1: पैदावार
0: हो जाएगा जमुना गोल्ड का।
1: और राजभोग का
0: वो कम होता है
1: लगभग,
0: अब उसको मान के चलिए कि एकड़ में वो 15 के ऊपर नहीं जाएगा।
1: लेकिन उसकी कीमत अधिक मिलेगी आपको?
0: हाँ, कीमत अच्छी मिल जाती है।
1: और लागत में भी अंतर होगा?
0: नहीं, लागत तो लगभग दोनों की बराबर ही आती है।
1: तो क्या आंकड़ा है आपका आय व्यय?
0: जैसे अगर उसको हम कैलकुलेट करें, 10 से 12 पड़ेगा एकड़ में।
1: 10 से 12 हजार?
0: हजार।
1: और अगर आप 25 कुंतल धान बेचते हैं
0: तो जैसे ये समर्थन मूल्य के हिसाब से दें तो 24 को वो मल्टीप्लाई कर दें 25 में,
1: यानी लगभग 60 हजार।
0: जी,
1: तो लगभग 40,000-50,000 की बचत हुई आपकी?
0: ना, बचत हो जाएगी।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 97-93-67-67-71 97-93-67-67-71 97-93-67-67-71
1: इंद्र प्रकाश सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप MSc कृषि की पढ़ाई करने के बाद लगभग 25 सालों से आप खेती से जुड़े, और इस समय आपके

0: खेत में 6 एकड़ धान की फसल अच्छी लहलहा रही है, आप खुशहाल हैं और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हर जो

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: देखो अपने खेती पाती में मौसम केयर जानकारी हो बहुत जरूरी रहा भैया।
7: बिल्कुल भैया,
6: तो अपने पंच भाई का मौसम केयर जानकारी बता दें जाए।
7: जो मौसम है वो है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से ने प्राप्त हुआ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ 24, 25, 26 यानी अगले 7 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान इस प्रकार है। कहीं कहीं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़े संभावना है। और अगले 7 दिनों में यहाँ मौसम संबंधी जो चेतावनी है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। तो भैया ऐसे समय में यहाँ खुद का, अपने घर परिवार के यहाँ और साथ में यहाँ अपने हरहा गोरुन के यहाँ सुरक्षित स्थान पर बांधे और उनका ध्यान रखें।
6: बिल्कुल भैया, यही के साथ है, अगर कोनो बात हम पंचन से कहे चाहें तो वकरी तय कागज कलम उठाए लिए और लिखें हमार पता, कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन नंबर 226001। जे पंच मेल भेजे चाहें वह मेल लिखें
7: फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com। तो भैया घड़ी सारा कह रही है, समय हो चुका है, तब तक के लिए ले लीजिए पंचन से ने आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख। मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी। रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का भूमि पूजन किया और भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ किया। ये परियोजना आगरा एक्सप्रेसवे के समीप 12,000 करोड़ रुपए से 10,680 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2,166 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 5 बहुमंजिला अपार्टमेंट का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वरुण विहार 6,500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित होगा, जहां 6 लाख से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा होगी। नैमिष नगर 4,100 एकड़ में विकसित होगा और 4 लाख से अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ को केवल महानगर और जनपद तक सीमित न रखकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में व्यवस्थित विकास किया जा रहा है। लखनऊ आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है।
1: ये आज की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को प्लांड वे में अर्बन डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड प्लान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक था। एक जगह पर सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। आज के समय में जब एजुकेशन के हब के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है, हेल्थ केयर के नए हब के रूप में लखनऊ को नई पहचान मिली है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक नए केंद्र के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। स्ट्रीट शो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ट्रेड शो में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोजन में 72 देशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 600 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट शो के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। करीब 400 सर्टिफाइड स्टार्टअप से शुरू हुआ यह सफर मार्च 2026 तक 2 लाख से अधिक सर्टिफाइड स्टार्टअप और 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश नए स्टार्टअप्स में दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
4: पिछले

0: दस वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले दस वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।
1: सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले मेरठ के स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि सरकार से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।
2: बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत काफी सारा सपोर्ट इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स के लिए डेवलप कराया है, वो स्टार्टअप का एक बोन है जो कि उसको आने वाले टाइम में काफी स्ट्रोंगर करेगा।
1: सरकार के प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में करीब 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से सामने आए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न 6 वर्षीय पाठ्यक्रमों और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई अन्य यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार में पंजीकृत स्लीपर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी और उसमें करीब 35 यात्री सवार थे। ग्रेटर नोएडा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि आग बस के इंजन से शुरू हुई और तेजी से बस के अन्य हिस्सों में फैल गई। बस के चालक और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। जेवर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
4: प्रारंभिक जांच में वो बस महोबा जा रही थी दिल्ली से और नेशनल परमिट की बस थी, बिहार में रजिस्टर्ड है। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, इमरजेंसी गेट नहीं खुला जिसके कारण सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका। इसकी जांच कराई जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। एशियाई खेल 2026 में अमेठी के सलमान खान ने रोइंग की पुरुष डबल्स स्कल्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। सलमान और सतनाम सिंह की जोड़ी फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेता चीन से 3.48 सेकेंड और रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान से 2.76 सेकेंड पीछे रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ प्रयास ने इस जोड़ी को पोडियम पर एक सुयोग्य स्थान दिलाया है। पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राजधानी लखनऊ, बलरामपुर, जौनपुर समेत कई अन्य जनपदों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण का करेंगे उद्घाटन। जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों

0: मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख, मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी, रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम सुहाने कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप अपनी फरमाइश व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं हम कि आपका संदेश इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए और आपकी फरमाइश हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत सारे संदेश लगातार हमें मिल रहे हैं, 7:15 से बहुत सारे संदेश आना शुरू हो गए हैं और अब तक आ रहे हैं। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम आपको एक अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं, जिससे कि आप इस कार्यक्रम से आज और आगे भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। काली टोपी लाल रुमाल फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

अभी आप सुन रहे थे काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गीत, जिसे गाया था हर्ष भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें अपनी फरमाइशें भेजी

उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला बाई, विकास सिंह ओम प्रकाश, शुभम अरुण विश्वकर्मा। गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और बिला दीपक, स्वाति जायसवाल और इनके परिवारीजन। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मर्रेकर। अमरावती से सईद, आसिफा, अंश, औरजा और अल्फिया। हासी से राज मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। बागपत से इलियास, मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी और जैत कुरैशी। नेहरू चौक पैंठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल सिया और सोमनाथ जाधव, इनके परिवारिकजन इनके साथ हैं। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर। एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, कुलफराज और मुस्कान। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद, उमेश राजेंद्र और प्रमिला बंचूर। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और रिश्ता। यवतमाल से रा पंजाब रामटेकी, यशोधरा रामटेकी, श्रव्या रामटेकी। बुलढाणा महाराष्ट्र से शब्बीर हुसैन शहजाद, मज्जू आयजा मुदस्तीर हुसैन। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय इनके साथ में सुन रहे हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, फिल्म का नाम है हमरा ही।

मोहम्मद रफी की आवाज में हमराही फिल्म का गीत आपने सुना। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। जलालाबाद वेस्ट से हमारे ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी निमित्त। और जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंचल भाटिया, सोनू पप्पी और तमन्ना भाटिया। रंगोली राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशा छीपा और पूजा परिहार। यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और प्रियांशी। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। झारखंड के श्रोता हैं गिरिडीह से, उन्होंने संदेश भेजा है। श्रोतागण हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज और चाहत। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर। हरियाणा के श्रोता हैं झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत, मयंक भाटिया। खंडवा मध्य प्रदेश से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी यादव, कामेश और भारती यादव। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति, कुंती साहू। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ निवान, शाइना शर्मा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का संदेश में मिला है। आइए सभी श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज गीता रॉय की है, फिल्म का नाम है जोगन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जोगन का गीत, आवाज गीता रॉय की थी।

जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे मोनिका रानू। समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री। डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी। चौखुंटी पुलनंदर शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शहनवाज सरफराज सुहान अर्जा नबान और इनके परिवारीजन।

रायपुर से नीलू मेघ, नीलम डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके परिवारिकजन। अमरावती महाराष्ट्र से है हर्ष रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा, रुचिका और इनके परिवारिकजन। दादरी गिर भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानुप्रकाश।

रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुरानी, प्रियाड़ी, पार्थ हागोड़े और इनके परिवारजन। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल। हैदराबाद से गोपाल नाई और रोमा माहेश्वरी जुड़े हैं। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पी आर जैन। कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेश नायक, गीता नायक, निहारिका और सुशांत नायक। सुरेश चौरसिया फरुखाबादी इनके साथ हैं। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान बाबू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकित जोशी, ध्रुव और लक्ष्मी, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी। जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। अग्निपथ अकोला महाराष्ट्र से मोहन नेवारे, पद्मा नेवारे और विशाल नेवारे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से करुणा शिवास, गुणवंत, आयुष, विवेक और आयुषी। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया और इब्राहिम सद्दाम। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है सड़क, समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत निर्देशन।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में सड़क फिल्म का गीत। गीतकार थे समीर, नदीम श्रवण का संगीत। और इसी के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी से मुझे यानी अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं ये वे।

0: विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के आठवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जनसेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
3: धन्यवाद।
2: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
3: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि एक गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसला खतौनी था उनके पास
2: जी,
3: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
2: जी,
3: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से SDM से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया, मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
2: जी,
3: उसमें 100% 100% सारे के सारे गाँव हमारे ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
2: जी।
3: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के, जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गाँव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
2: मिश्रा साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी

पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में लोगों की लाइफस्टाइल में।

0: गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है। गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहां पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गाँव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम की जो बुनियादी सुविधाएं गाँव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं नल के जल, जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खासतौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती हैं इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है, ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब जो सबसे निचले तबके पे जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गाँव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, ये मनरेगा के तौर पर एक योजना लाई गई।
1: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गांवों की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
2: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी, जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए, लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव-गांव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में, विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
1: पीड़ा में रहती थी,
2: पीड़ा में रहती थी। तो आप सोचिए कि उसको

0: करके ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे उसके बाद, अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजेस थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
1: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था। इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है। और गांव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है। इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गाँव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गाँव में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गाँव में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है। बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है, महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं। यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांव में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
1: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्त के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
3: देखिए, पानी पहुंचाना एक है लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जल, नल से जब पानी जाएगा टैंक पे चढ़ के वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा।

0: तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया तो एक पानी शुद्ध देकर के इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो, और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं, और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई, और हमें लगता है कि 70% से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी, उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी हुए, उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांवों की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है, वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं, देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा, तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियर चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है, तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आगे, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा देगी। अब सवाल है, बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के, गांव में कुछ 2-4 लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचा रहा, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है, तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा, मैंने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, देखे छोटे बच्चे थे हम डिबरी में पढ़ते थे
1: जी,
2: लालटेन में पढ़ते थे, अब लालटेन डिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था, जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव-गांव में घर-घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आओगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनसे पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं

0: आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0, 3.0, मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रिफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली से चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो। बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो पीएससी है वो गांव के पीएससी को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी, और ये हमारा जो लाभ मिला। और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी
0: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया। और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे। उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी। पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं। वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
1: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
2: देखिये, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं, तो वो अपनी साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है। जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी। आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। आज जो देखिए जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेंडी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये

0: ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, घरौनी कहते हैं घर से हो गया, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर लेते
1: हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हरे का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं, उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते हैं। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना है, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
2: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया। हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया, और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे, और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहां पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा, नेता होगा, वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
2: बिल्कुल,
1: PVTGs के लिए
0: नहीं, PVTG देखिए, इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे PVTG जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए, इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सैचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल नहीं जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी, तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता

0: भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
0: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट
0: विलेज पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उपयोग करते थे, जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है,
0: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन लाया कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीवुड अपॉर्चुनिटी हो, वहां टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहां पीने का पानी हो, वहां स्वास्थ्य का हर एक सारी सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हो, लद्दाख का हो, या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है उन सारे गांवों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
2: ये सारे गांव की सोच का, गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, अब उनके रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर, वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है, वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहाँ नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए, ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके, और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है। हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांवों में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्रा साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति, करजन सरगथिया और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था महबूब ने और संगीत तैयार किया था इस्माइल दरबार ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये आवाज आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। अलविदा फिल्म के लिए गीतकार हैं समीर और संगीत जतिन ललित।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब समाचार होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद।

0: जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
2: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
1: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
3: The character of war,
4: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
3: With the changing character of war.
1: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
5: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने

0: 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
3: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
5: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
4: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. एंड

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम दोनों फिल्म का गीत आपने सुना। गीतकार थे साहिर और संगीत जयदेव का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म अंगूर से आशा भोसले की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में अंगूर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने। आइए आप सुनते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में हमराज फिल्म का ये गीत।

0: महेंद्र कपूर और राघव भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे हमराज फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी की रचना थी, रवि का संगीत निर्देशन था। इसके साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, आभार, अभिनंदन महोदय। कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
3: नमस्कार
2: महोदय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कवच प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करता है।
3: साधारण तरीके से ट्रेनें चलती हैं
2: जी
3: तो उसमें ड्राइवर को सिग्नल देखना पड़ता है, और सिग्नल अगर हरा है तो वो चलता रहता है, अगर लाल है तो उसको ट्रेन रोकनी पड़ती है। लेकिन कई बार बारिश में, अंधड़ तूफान या कुछ घुमाई पर सिग्नल होते हैं या अन्य कई कारण होते हैं जिसमें कि, या कभी ड्राइवर भी ऐसी स्थिति में होता है कि मान लो उसको नींद लग गई तो वो सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में दो ट्रेनों के टकराव की संभावना बनी रहती है।
2: जी
3: ये एक हम बोलते हैं कैप बेस्ड सिग्नलिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली बात तो ये कि जो भी सिग्नल का वो है, वो ग्रीन है कि लाल है कि, उसके लिए ड्राइवर को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इंजन से वो चला रहा है उसके सामने जो डिस्प्ले रहता है उसमें उसको पता लग जाता है ये हरा है कि लाल है, कि उसकी सिग्नल की एस्पेक्ट बोलते हैं क्या है, एस्पेक्ट है, तो उसके हिसाब से उस ट्रेन की स्पीड निर्धारित करनी पड़ती है। और दूसरा स्टेप आता है कि उसने देख लिया कि मेरा लाल है, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक लगाना है, उसने ब्रेक नहीं

0: लगाया या उसने ब्रेक लगाने की कुछ की, कोई फेल हो गया ब्रेक, तो उस कंडीशन में जब दो गाड़ियां काफी नजदीक आ जाती हैं तो उनका ये स्वचालित प्रणाली से ये दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और वो एक दूरी पर आकर रुक जाएंगी और एक जो दुर्घटना होती है उससे वो बच जाएंगी। और इसका जो उपकरण होता है वो हर इंजन में, हर लेवल क्रॉसिंग में, हर रेलवे स्टेशन में रखा रहता है, और एक ऑप्टिक फाइबर एक होता है जिससे कि डाटा ट्रांसफर होता है, वो पूरे उस जिस क्षेत्र में इसका कवरेज होता है उसमें इसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो उसको पूरा सुरक्षित रूप से डाटा को भेजता है और संचालित करता है, और उसकी वजह से जो ट्रेनों की घटनाएं होती थी पहले, अब एक बार ये पूरा कवरेज हो जाएगा तो वो पुरानी बात हो जाएगी, फिर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
1: कवच 4.0 में नया क्या जोड़ा गया है जिससे सुरक्षा जाल को और मजबूती मिल सके?
0: इसमें कवच जो 4.0 है ये पुराने कवच के ऊपर एक स्टेप और आगे है। एक तो देखिए, ये आपको बताएं, ये एक बहुत ही सुरक्षा वाला वो है, उपकरण है, और इसमें एक SIL 4 बोलते हैं, एक जो सेफ्टी के कई मापदंड होते हैं, इसमें SIL 4.0 का जो मापदंड है वो सुनिश्चित किया गया है। और इसकी जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, जो एक उससे दूसरे इंजन को और एक स्टेशन से किसी आने वाली ट्रेन के इंजन को के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक सेफ्टी का एक हायर लेवल पे इसको ले जाता है, और जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी जो गति होती है, जो चाहे वो डाटा आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा हो, चाहे एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन के ऊपर जा रहा हो, या एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहा हो, डाटा का जो एक संचालन होता है उसका एक जो सुरक्षा का लेवल है वो एक स्तर और आगे बढ़ जाता है। और जो कुछ गैप्स रह जाते हैं थे पुराने जो कवच 3.0 के पहले वाले वर्जन में, वो कवच 4.0 में उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, अब ये पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली बन गई है।
1: दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर जो कवच 4.0 को 2633 किलोमीटर में चालू किया जा चुका है, तो इन मार्गों पर इसके संचालन से रेल यात्रियों को सुरक्षा और परिचालन के स्तर पर किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है?
0: आपसे मैंने बताया कि वो
1: जी
0: सुरक्षा तो बढ़ती ही है, इसके साथ इसमें एक डाटा भी एक हमको मिलता है ट्रेनों का। देखिए, अभी जैसे एक हमारा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गया है और हर जगह हम डिजिटल दुनिया का प्रयोग करते हैं, तो आप कवच को, जो कवर्ड एरिया है उसमें आप ये समझिए कि रेलवे भी डिजिटली कंट्रोल हो गई उस एरिया में। तो ये 2660 किलोमीटर का जो एरिया है ये अब डिजिटली कंट्रोल्ड है, आप किसी मनुष्य के एक्शन पे उसके ऊपर निर्भर नहीं है, आप उस पूरे सेक्शन में एक स्वचालित प्रणाली, जो कि मनुष्य की जो मानवीय गलती होती है उसके होने के पश्चात भी आपको दुर्घटना नहीं होने देगी, ये इसका एक उदाहरण है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रणाली है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, कि कोई भी नई आजकल जो तकनीक होती है
1: जी
0: उसका एक IP होता है, जो उसके मौलिक अधिकार किसके पास हैं। तो
1: जी
0: नॉर्मली जो ET, जो एक यूरोपियन प्रणाली थी, उसके मौलिक अधिकार उनके पास रहते हैं, वो लोग अपना डिजाइन नहीं देते। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भारत जैसे देश हैं उनको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उस प्रणाली को खरीदने के लिए। तो
1: जी
0: ये जो हमने स्वचालित प्रणाली स्वदेशी बनाई है उससे एक तो पैसा भी हमारा कम लगा है, कल हम इसको अपनी खुद की प्रणाली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आगे चल के जो इसका अगला वर्जन आएगा उसमें AI से भी लिंक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इतना ह्यूज डाटा
1: जी
0: जनरेट करेगा ये
1: जी
0: सिस्टम कि एक मनुष्य के लिए उसका एनालिसिस करना असंभव होगा। तो उसको एनालिसिस के लिए भी एक AI एजेंट लगेगा, उससे जो हमारे सेफ्टी के अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हर 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एक के बाद एक ट्रेन चला सकें। इससे हमारी जितनी ट्रेनें चलाने की क्षमता है किसी एक पर्टिकुलर रेल खंड की, उसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। अब आपको एक बता दूं कि 95% कोयला जो भी पावर हाउस से जाता है वो भारतीय रेल उसका वहन करती है, और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये कवच सिस्टम है,
1: जी
0: इसकी वजह से जो हमारी ट्रेनों की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है, और हमारी जो देश की जो एक इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा संबल मिला है।
1: आम जनता के आवाजाही और आवागमन मैं कहूँ तो उस पर कितना ये सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा?
0: आपने देखा होगा कि एक आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके पास कई ऑप्शन रहते हैं, वो रोड से भी जा सकता है, अपना हवाई जहाज से भी जा सकता है, शिपिंग से भी जा सकता है, कई तरह के उसको है। लेकिन ये माना गया है कि जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अपने आप में एक बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, आवागमन का। उसमें ये कवच भी आपने लगा दिया, तो कवच से उसको ऐसी एक सुरक्षा की एक शील्ड मिल गई है, जिससे कि यात्री जब ट्रेन के अंदर रहता है तो उसको, जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि ट्रेन का सफर बस के सफर के कंपेरिजन में ज्यादा आनंददायक होता है और आरामदायक होता है, और हवाई जहाज के कंपैरिजन में, एयर लाइंस के कंपैरिजन में हमारे जो रेट्स हैं वो भी बहुत

0: होते हैं, तो रेलवे में हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, रेलवे में कोई भी एक जिससे कि नई ट्रेनें चला पाए, आज ज्यादा ट्रेनें चला पाए,
1: जी
0: उसका फायदा आम जनता को मिलता है क्योंकि वही इस प्रणाली को सबसे ज्यादा यूज करती है और उसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कवच से, कवच लगाने के बाद नॉर्मल हमारी ट्रेनें चलती है 110 किलोमीटर पे, 110 या 130 पे, कहीं कहीं पर अधिकतर जगह 110 है, कहीं कुछ कुछ जगह 130 है, लेकिन एक बार आप कवच प्रणाली लगा देते हैं तो ये आपके लिए संभव हो तो हो पाता है कि आप अपनी ट्रेनों को 160 की गति पे चला सकें, 160 और उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो ट्रेनों की गति बढ़ जाती है कवच लगाने के बाद,
1: जी
0: उससे कितनी ट्रेनें आप निकाल सकते हैं एक समय में उसकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है, और वो भी एक सुरक्षा के साथ, ये नहीं कि आपने ट्रेनें बढ़ाई और सुरक्षा को एक तरफ दरकिनार कर दिया, आप इसमें ट्रेनों की गति बढ़ती है, आम आदमी गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचेगा,
1: जी
0: सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा और आरामदायक तरीके से पहुंचेगा।
1: यानी समय की भी बचत है, सुरक्षा भी है, और एक तरीके से कहें तो टेक्नोलॉजी में भी विस्तार है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दूर दराज के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को अगर हम देखें, उसे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा कवच से?
0: भारतीय रेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक हम जिसे आम भाषा में बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक चलता है, जिस लाइन से कोयले की ट्रेन गुजरती है उसी लाइन से मेल एक्सप्रेस की ट्रेन भी गुजरती है, उसी यात्री से यात्री गाड़ियां भी जाती हैं। हालांकि हमने एक पहल की है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है बिहार में सोनपुर तक और नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, तो उससे काफी फ्रेट जो हमारी मालगाड़ियां उनका वो उसमें चलाने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी जो नेटवर्क है उसमें मिक्स ट्रेन चलती है, उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर ट्रेन भी चलती है,
1: जी
0: और जैसे मैंने बताया कि जो मालगाड़ियां हैं उस पे हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो निर्भर करती है। अगर ज्यादा ट्रेनें चलेंगी, ज्यादा माल ढुलाई होगी तो कारखानों तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा, पावर हाउसेस में कोयला पहुंचेगा, और
1: जी
0: हमारे जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो उसमें हमको ज्यादा हम देश से निर्यात कर पाएंगे, जो आयातित चीजें उनको जल्दी तक खपा पाएंगे, तो उससे पूरी एक बहुत बड़ा पुश मिलता है पूरी इकोनॉमी को, जो कि कवच से संभव होगा। और एक जैसे मैंने बताई थी कि ये प्रणाली सबसे बड़ा खूबी ये है कि हमारी स्वदेशी है और
1: जी
0: इसकी वजह से हमारा खर्चा भी नहीं है, और जैसे आजकल के युग में देखा कि जब इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में तो कोई भी किसी का टेक्नोलॉजी बंद कर सकता है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमारा खुद का है और इसको हम दूसरे को बेच के पैसा भी कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और सुर्खियों में देखते हैं कि रेल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं पर धुंध लग जाने से, कोहरे की वजह से हो जाते हैं, जो कि कवच जैसी जो प्रणाली है वो बचाती है इस तरह के एक्सीडेंट होने से, और खास करके एक्यूरेसी, जैसा आपने मुझे बताया अभी कि एक्यूरेसी बढ़ाती है और स्पीडिंग जिससे बढ़ती है। तो ऐसे में अगर हम देखें किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उसमें भी थोड़े से जो रेट्स हैं वो कम होंगे?
0: अगर आप हमारा इतिहास निकालेंगी रेलवे का तो उसकी संख्या बहुत ही मेजर गिरावट आई है, उसमें उसके कई आधारभूत कारण हैं। हमने ट्रैक की क्वालिटी, अपने जो रोलिंग स्टॉक बोलते हैं जो डब्बे कोचेज उसकी क्वालिटी, और हमारी सिग्नलिंग प्रणाली, हमारी सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, हमारे जो चालक गण हैं उनके ऊपर एक निगरानी, उनकी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधित जो उपकरण हमने लगाए हैं उससे एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, और जो आज की तारीख में जो एक्सीडेंट्स हैं वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं अगर हम उसको पिछले कुछ पुराने वर्षों से उसकी तुलना करें तो।
1: लेकिन ये किस तरीके से रेलवे सुनिश्चित करेगा या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये छोटे छोटे जो शहर हैं उस तक भी ये सिस्टम उसी तरीके से पहुंच पाए, कनेक्टिविटी वैसी ही रहे?
0: देखिए मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बोला था कि ये जो कवच प्रणाली है
1: जी
0: ये अपना जहां भी कवच जाता है ये अपना खुद का ऑप्टिक फाइबर केबल लेके जाता है, और एक नहीं दो, तो एक पेयर जाता है, दो ऑप्टिक फाइबर केबल, उस चाहे वो कितना भी अंदरूनी गांव हो, कितना दूर दराज का इलाका हो, उस तक ये हमारे ऑप्टिक फाइबर केबल चलाए जाते हैं, और इसका हमारी जो आम जो नेटवर्क इशू है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, और ये हमारा कवच के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ये दो ऑप्टिक फाइबर केबल। उसके अलावा हर कुछ दूरी पे रेडियो टावर बनाए जाते हैं, हर स्टेशन के ऊपर एक रेडियो एंटेना रहता है, और हम अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि LTE और 5G में भी इसको ले जाएं, तो इसके लेकिन इसका जो भी नेटवर्क होगा वो हमारे बाकी जो हम आप और हम जिस मोबाइल फोन से बात करते हैं
1: जी
0: उसके ऊपर निर्भर नहीं है, ये इसका जो संचालन प्रणाली है वो अपने आप में एकदम अलग है, और वो जहां जाएगा वो अपना खुद का केबल लेके जाएगा, अपने खुद के रेडियो टावर्स लेके जाएंगे, अपने खुद के दूसरे उपकरण लेके जाएंगे, जिससे कि चाहे इलाका महानगर का हो चाहे दूर दराज का हो सुरक्षा का लेवल दोनों जगह बराबर होगा।
1: जी महोदय, देश भर में इस तकनीक को लागू करने में क्या आपकी नजर में कोई चुनौतियां भी हैं कि ये चुनौती आ सकती है?
0: चुनौतियां भी हैं क्योंकि इसमें चार दो चार चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि इसमें बजट का काफी खर्चा

0: आता है, 1 किलोमीटर करने में करीब करीब 50 लाख रुपए खर्चा आता है। एक जो हमारे इंजन में उपकरण में लगाया जाता है उसमें भी 50 लाख रुपए का उपकरण आता है। उसके अलावा जो कंपनियां, ये क्योंकि SIL 4 जो होता है, सुरक्षा का जो लेवल है 4 का, SIL 4 बोलते हैं उसको हमारी रेलवे की भाषा में, तो जिन कंपनीज के पास उसका उस लेवल की टेक्नोलॉजी है वही इसको लगा सकती हैं। और ऐसी कंपनी जो कि इसको लगा सकती हैं वो आज की तारीख दिन में सिर्फ 4 या 5 ही हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी जो जिनके पास ये तकनीकी है वो बढ़ेगी, उस दिशा में हमारा जो RDSO है, हमारी रेलवे बोर्ड है, हमारी मिनिस्ट्री है, ये काफी प्रयास कर रही हैं कि
1: जी
0: ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस काम के लिए सक्षम हो सकें। और एक बार उनका सक्षम जो सक्षमता का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे RDSO द्वारा दिया जाता है, और जैसे जैसे उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भी इस काम को कर सकती हैं और ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है वो भी बहुत तेज बढ़ेगी।
1: महोदय, रेलवे में जो रिफॉर्म्स चल रही हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कवच 4.0 किस तरीके से उसमें अपनी भागीदारी देता हुआ नजर आ रहा है?
0: कवच जो 4.0 है, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, और इसके साथ जो एक इकोसिस्टम बनेगा टेक्नोलॉजी का, जो कंपनियां इसको डेवलप कर पाएंगी, वो न सिर्फ कवच में अन्य जुड़ी, जैसे हमारी आगे चल के प्लानिंग है कि हमारा फ्रेट का सिस्टम है फ्वाइस बोलते हैं उसको, FOIS, ऐसी कोचिंग ट्रेन का सिस्टम COIS, क्वाइस है, तो ऐसे हमारे कई इसके अलावा पैरेलल में नेटवर्किंग चल रही है। तो हमारी ये 4.0 और उसके आगे के जो लेवल्स आएंगे, तो उसमें एक तो सुरक्षा तो मिलेगी मिलेगी, और उससे जो डाटा जनरेट होगा, अगर हम कोशिश रहेगी कि उसको हम अपने वॉइस प्रणाली और क्वाइस प्रणाली से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो यात्री ट्रेनें हैं, जो हमारी मालगाड़ियां हैं, उनके प्रचालन में भी एक अद्भुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और एक ओवरऑल रेलवे को एक मेजर पुश मिलेगा डिजिटलाइजेशन की डायरेक्शन में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है रास लीला। प्रसंग है नित्य रास, कुरुक्षेत्र में श्यामा श्याम मिलन। लेखक हैं राम नारायण अग्रवाल, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की है।

बंसी, अरे मेरी प्यारी बंसी, या समय तू कहाँ बज रही है? अरे बंसी, हमारे प्राण जीवन धन मनमोहन कहाँ है? बंसी तू सामरे के दर्शन कराए, बंसी उनके दर्शन को हमारे प्राण छटपटाए रहे हैं।

0: हे प्यारी, आप धीरज धरो। देखो, आज हमारे बाएं अंग फड़क रहे हैं।
1: यासो, ऐसो लगे है के प्यारी श्याम सुंदर को कोई शुभ संदेश शीघ्र ही आवेगो,
0: या वे स्वयं ही ब्रज पधारेंगे। आप चित्त शांत करके विश्राम कुंज में पधारो।

हे प्राण जीवन धन, आधी रात बीत रही है पर अबहू आप टकटकी लगाए या चंद्रमा को निहार रहे हो। रात्रि में आप न जाने क्यों इतने विवल है जाओ हो कि आपकी आखियन की नींद हूँ छू मंतर है जाए है। नाथ आज आप मोई

0: नाथ, आज आप मोहिया को कारण तो बताए दियो।
1: महारानी रुक्मणी, मैं तुमसे अपने मन की व्यथा की कथा कैसे कहूं? या द्वारिका की ऊंची ऊंची अटार कान ने मोय बंदी बना लियो है। मोय अपने प्यारे ब्रजवासिनी की बासल्य की मूर्ति माँ जशोदा की, प्यारे दंद बाबा की और प्रेम मूर्ति श्री राधा प्यारी की याद सता रही है।
0: नाथ, मैं आपसे एक बात पूछूं।
1: हाँ हाँ, अवश्य पूछो, अवश्य पूछो।

0: हे द्वारकाधीश, जब आप वनमाला धारण करके नंगे पायन ब्रज में गैया चराए बन बन डोले है, तो गोकुल की ब्रजवाला आपसो कितनी प्रीत करती।
1: आहा, रुक्मणी जी, वह निश्चल प्रीत को वर्णन जिभ्यासो करनो संभव नहीं है। तुम स्वयं ही ब्रज चल के मेरी जन्म भूमि के दर्शन करो तो आप प्रेम को प्रत्यक्ष अनुभव कर पाओगी।

0: हे नाथ, आपके वचनन को सुन के हमारो मन हो आपके प्यारे ब्रजवासीन और ब्रजधाम के दर्शनन को अकुलाए उठो है। यासु कृपा करके एक बेर हमें हो अपने बचपन के सखा सखीन के दर्शन कराए देओ।
1: प्रियतमे, जो आपको ऐसो ही विचार है, तो जल्दी ही सूर्य ग्रहण को पर्व आवे वारो है। मैं प्रातः काल ही राज्यसभा में विचार करके एक दूत ब्रज में भेज दंगो, तो सब ब्रजवासी ग्रहण स्नान के लिए कुरुक्षेत्र में आएंगे, वहीं हम सबको मिलन है जाएगो।
0: आप ऐसो ही बानी बनाओ प्राणनाथ, यासो एक पंथ द्वै काज सिद्ध है जामेंगे। हम हूँ आपकी मैया बाबा और आपकी राधा रानी से हूँ मिल लेंगे।
1: हाँ, मैं ऐसो ही करूँगा।

0: अरे मधुमंगल।
1: हाँ भैया।
0: अरे यार तू तो काम धंधे में लगे हो रे।
1: कहा काम
0: है? मालूम है कि ना मालूम कछु?
1: कछु ना मालूम।
0: अरे द्वारका दीस कन्हैया के यहाँ तो नौ तो आयो है।
1: नौ तो आयो है?
0: कुरुक्षेत्र में स्नान करबे के काजे तो देख।
1: हाँ
0: तू चल।
1: अच्छा
0: अपनी घरवारी में ले चलियो।
1: हाँ जरूर ले चलेंगे अपनी घरवारी।
0: एक बात और करियो।
1: हाँ
0: तो परिवार चौबे जी रेखा बिंतु कह दीजो।
1: हाँ हाँ
0: भैया कन्हैया ते मिलवे चलनो है और राधिका रानी के घर खबर कर दो।
1: हाँ हाँ कर देंगे। काउ सखिए भेज दऊ अभी।
0: हाँ
1: और का सखिए भेज दऊ वो खबर कर देंगी।
2: अरे ललता सखी श्याम सुंदर ते मिलवे चलनो है नंद बाबा बज यशोदा मैया के संग।
3: चलो राधे जी चलो।
0: चलो भैया चलो
1: चलो चलो चलो। अरे आ जा तू आ जा रे जरा
0: अपनी गाड़ी जो ले।
1: चलो चलो चलो।
0: ओ भैया ओ। अरे मधुमंगल।
1: हाँ भैया
0: अपनी बैजन की जोड़ी।
1: हाँ
0: और घोड़ी। अरे चल घोड़ी की चाल कैसी है तेरी दिखा तो सही।
1: देखना
0: बैठ जा बैठ। हाँ चलो भैया
1: चलो चलो चलो। हाँ भैया।

0: बुलराज महाराज की जय।
1: मधुमंगल।
2: हाँ भैया।
1: ये कन्हैया कैसे बैठो है?
2: हाँ भैया खूब अच्छा बैठो है।
1: संग में कौन है?

0: में कौन है?
1: रुक्मणी जी है।
0: रुक्मणी जी
1: कैसी
0: हैं।
1: लग रही
0: हाँ हाँ
1: है?
0: भैया, बड़ा आनंद आ रहा है।
2: आहा, रुक्मणी जी यहाँ। आज तो मेरी ये कुरुक्षेत्र की यात्रा सफल है गई। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की जय बोलते भाई आ रहे हैं। आहा, अरे भैया द्वारपालो यहाँ आओ। देखो तो सही, मेरे बाबा, मेरी मैया और मेरे प्रिय सखान को स्वागत करो। बाबा बाबा दंडो।
3: बोलो बाबा की जय।
4: बेटा खुश रहो। अरे बेटा, तुम सब मेरी जय मत बोलो, जय तो या कन्हैया की बोलो या कन्हैया की। जाके दर्शन के काजे मेरी छाती धधक रही है। आज या को हृदय ते लगाए के मेरी छाती शीतल है गई। मैं धन्य है गयो।
2: बाबा बाबा, मैं आपको अपराधी हूँ जो मैं आपको वृद्धावस्था में छोड़ करके चले गयो। मैं आपकी सेवा से वंचित है गयो बाबा, या द्वारका में बसनो पड़े हो। पर बाबा बाबा, आपके प्रेम और गैयान के खरक मेरे रोम रोम में रमे भए। बाबा मेरो शरीर अवश्य द्वारका में है, किंतु मेरो मन सदा ही ब्रज की निकुंजन में और नंद भवन में ही बस है। बाबा नंद भवन में ही बस है।
5: हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। द्वारका लीज राजा बन के चिकनी चुपरी बात करते करवे लग गए हो। खूब जाने, खूब सीख लिए इतनी विद्या। खूब जाने भैया, खूब जाने।
2: अरे भैया श्रीदामा, तुम सब तो ऐसे मत कहो। भैया मैं नंद बाबा की दुहाई करके कहूं कि मैं तुम सब मेरे जीवन प्राण हो। मैं तुम्हें कभी ना भुला सकूं।

0: ठीक है भैया, तो कुछ धन्य धन्य तो कुछ समझ गए भैया, समझ गए। बोलो नंद के लाल की जय।
1: आओ रुक्मणी जी, वो देखो मेरी यशोदा मैया ठाड़ी है। मैया मैया दंडवत, मैं आपको कन्हैया आपको दंडवत करूं हूं।
2: अरे कन्हैया।
1: मैया।
2: अरे मेरे हृदय दुलारे छोना, आ आने मेरे पास आ।
1: हाँ मैया मैं आ गया हूँ। मैया तुम कैसी हो?
2: अरे लाला, तेने तो अपनी या बूढ़ी मैया को बिल्कुल ही बिसराय दियो है। मैं तो तेरी बाट निहारते निहारते बड़ी ही व्याकुल है गई हूँ लाला। नेक आ नेक मेरे छाती ते लग जा बेटा, आ आ नेक मेरे ढींगा।
1: मैया मैया ये तू कैसे कह रही है? मैया मैं तेरी सुन कब हूँ, एक पल को हूँ नहीं भूलू हूँ, पर कहा करू माँ यहाँ आए के ऐसे प्रपंच में उरझ गए हूँ कि अब सुरझ नहीं जाए है। मैया तो को कहा पतो, मैया मैं यहाँ कितने कष्ट में हूँ तो मैं कैसे बताऊँ? मैया मैं को यहाँ बहुत दुख है।
2: अरे बेटा तू तो वहां राजा मनो बैठा है, फिर तो है दुख कैसा?
1: मैया यहाँ ब्रज और तेरे जैसे हृदय को प्रेम नहीं है। बंदी जन गावे जस बिरद सुना में भा,

उसी ये में हिलोर भरी झूले है। अरे माँ, राजाधिराज महाराज तो कहे सब ही महाराजा महाराज, महाराज।

0: मैया, भोर होते ही मुए यहां प्रतिदिन तेरो सद लोनी माखन और तेरो माखन को वह कटोरा बाकी याद मुकु सतावे है माँ।
1: अरे कन्हैया देख, मैं तेरे खाजे कमोरी भर के माखन लाई हूँ बेटा।
0: लाइए मैया।
1: हाँ
0: ला, ला मुकु खवा।
1: और तोए बेटा, मैं छक्के माखन खवाऊंगी, परंतु पहले पीछे के टोल में जाके वह बिचारी राधा की खबर ले ले।
0: राधा आई है माँ?
1: हाँ बेटा।
0: अच्छा मैया, तुम सब डेरा पे चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आऊ हूँ।

रुक्मणी जी, वो देखो सब सखी वृंदन के मध्य में जो नीले वस्त्र धारण करके, जो भोरी भोरी गोरी गोरी छवि बारी हैं, वो ही मेरी मन मोहनी राधा प्यारी है, राधा प्यारी है।

0: हे श्री राधे, हे श्री राधे, हे राधे,
1: हे श्री कृष्ण,
0: हे प्राणेश्वरी,
1: हे मेरे प्राण वल्लभ।
0: हे राधे, मन और प्राण एक होते भयहु, हमारे तुम्हारे तन के वियोग ने मुझे जो घोर कष्ट दियो है, वाय मैं तुम सो कैसे कहूं। ऐसो मुंह पे आपको कौन सो अपराध बन गयो, जो आपने मोह ब्रजते निकास दियो है।

0: इतने विवल और मत हो। हे मनमोहन, हम आपके प्रेम बारिद में कितनी असहाय बनी डूब रही हैं, ये आप स्वयं जानो हो।
1: हाँ हे श्री राधे, तुम वहां और मैं यहाँ, कर्तव्य के बंधन में बंधे या असह पीड़ा को झेल रहे हैं। हमारे सांचे निश्चल प्रेम की यही तो पहचान है राधे, यही पहचान है।
2: अभी आप सुन रहे थे रासलीला नित्य रास, कुरुक्षेत्र में श्यामा श्याम मिलन। लेखक थे रामनारायण अग्रवाल, प्रस्तुति थी हरिबाबू कौशिक की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहले विदुषी प्रवीण सुल्ताना का ठुमरी गायन। राग पहाड़ी पर आधारित है।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी प्रवीण सुल्ताना का ठुमरी वादन। ये ठुमरी गायन पहाड़ी राग पर आधारित था। अब लीजिए सुनिए प्रेम निवास गुप्ता का बांसुरी वादन। राग कहरवा पर आधारित है।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम निवास गुप्ता का बांसुरी वादन, राग था कहरवा। अब लीजिए सुनिए आरपी शास्त्री का वायलन वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक

0: मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल NS राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 trillion की अर्थव्यवस्था है और $30 trillion की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि MDR का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाज धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with resolve to build a developed India. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and nation interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organized by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The Minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontations and the security dilemma. Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above ₹2,000 is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the